मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 मई 2026। अभी प्रातः के 5:57 होने वाले हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
3: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि

0: वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। 6:05 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए अब जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

कुछ ही पलों में आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान का पाठ, उसके बाद खेती में आज मई माह के कृषि कार्य। 7 बजे से सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। 7:45 पर होगा सुगम संगीत। 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर अंग्रेजी में मॉर्निंग न्यूज़ समाचार दिल्ली से प्रसारित होंगे।

8:30 उदयपुर का दैनिक कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर आप सुनेंगे। 9:00 हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 9:10 से नमस्कार उदयपुर जारी रहेगा। 9:30 NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन पाएंगे। 10:00 से 11:00 तक फिल्म संगीत, 11:00 से 11:30 शास्त्रीय संगीत और 11:30 से 12:00 तक सुगम संगीत का आनंद आप ले पाएंगे। दोपहर 12:00 से 1:00 फिल्म संगीत और 1:00 से 1:05 तक हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिसे जयपुर अजमेर से रिले किया जाएगा। 1:05 पर आप सुनेंगे महिला श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम सहेलियारी बाड़ी। 1:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और उसके बाद विकास चर्चा। 2:00 समाचार आप सुन पाएंगे 2:15 और 2:30 पर आप सुनेंगे कृषि जगत। 3:00 हिंदी में समाचार। सांध्यकालीन सभा में आप 5:00 युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम सुनेंगे युवाणी। 6:00 हिंदी में समाचार दिल्ली से प्रसारित होंगे। 6:05 पर फिल्म संगीत। 6:30 हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, ये प्रसारित किए जाएंगे जयपुर अजमेर से।

शाम 7 बजे खेती और घर, 8 बजे फिल्म संगीत, शाम 8:45 पर समाचार संध्या हिंदी में और 9 बजे न्यूज़ एट 9 इंग्लिश में समाचार दिल्ली से प्रसारित होंगे। उसके बाद सुगम संगीत,

फिर नई फिल्मों के फिल्म संगीत, मनचाहे गीत रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे, 11 बजे हिंदी में समाचार, उसके बाद अंग्रेज़ी में समाचार आप सुन पाएंगे।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। 6:40 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान का पाठ। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

राजा जनक की नगरी देखने के क्रम में पुरवासियों के मन मोहते हुए श्रीराम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ नगर के पूर्व भाग में पहुंचते हैं, जहां धनुष यज्ञ की रंगभूमि की रचना की गई है। जनकपुर के बालकगण बड़े उत्साह तथा आदर के साथ दोनों भाइयों को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। श्रीराम ने अपनी मधुर मनोहर वाणी में अनुज लक्ष्मण को यज्ञ भूमि का परिचय दिया और दोनों भाई सारा कौतुक देख गुरु के पास लौट चले।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का पाठ। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। 6:50 हो रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का पाठ। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। 6:50 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं खेती में आज।
1: खेती में आज कार्यक्रम होने वाला अगले किसान भाई बहन ने नानू भाई रो राम राम सा देखो सा किसान भाया अणि कार्यक्रम में आज आपा जानकारी लाया हाँ कि कुष्मांड कुलरी जो सब्जियां हैं वहाँ ने कद्दू वर्गीय सब्जियां रे नामों भी जानियो जावे। अणि कुल में देखो लौकी है, कद्दू है, टिंडा है, करेला है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूजा है, ये सब आवे है। और कद्दू वर्गीय सब्जियां जो है वे विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन अणारो प्रमुख स्रोत भी मानी जावे है। अणि वर्गीय सब्जियां में देखो अणि टाइम पे आपा देखा तो नरेहारा जो कीट है भी पाया जावे है। तो कुष्मांड कुलरी सब्जियां में जो कीट नियंत्रण है वो कणी प्रकार कर सका यह बात आपा करा हाँ। जटे देखो आपा बात करा लाल मकड़ी या पचे बरूथीरी तो अंडी शिशु और व्यस्क की दो ही प्रकार की अवस्था जो है यह अपने पौधा ने हानि पहुँचावे है। ये मकड़ी पत्यारी निचली सतह पर लागे है और रस चूसने देखो नुकसान पहुँचावे। अणु पत्तियां पर सफेद धब्बा बन जावे जो बाद में भूरा रंगरा बह जावे और अपना वनाया लगा रेशमी जालू पत्तियां ने ढांक लेवे है। और हवारे चालवाओं देखो जमीन रे मिट्टी रे कण रे जाल पर लागने वनने सघन वणई देवे जणु की पत्तियां में प्रकाश री क्रिया निभे और वणु प्रभावित वही ने पत्तियां जो है वे गिर जावे और फूल और फल दो ही कम लागे है तथा उत्पादन में भी देखो कमी देखी जावे। तो अंडे नियंत्रण रे वाते देखो किसान भाई जो है इथियान 50 EC 0.6 मिलीलीटर या पचे प्रोपार जाइट 57 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी री दर में गोल वणे छिड़काव करे तो लाल मकड़ी या पचे जो बरूथी है वंडो नियंत्रण कर सके। जटे देखो अपा फल मक्खी री अगर आपा बात करा तो यह प्रौढ़ तथा लट दोईरी अवस्था में देखो पौधा ने अधिक नुकसान पहुँचावे। प्रौढ़ मक्खी अपना अंड निपेक्ष री मदद हूँ फला में छेद करने गुदा में अंडा दे देवे तथा बाणे आवा में अणा छेद में एक लसदार पदार्थ वापस बंद कर दे। अंडाओं 3-5 दिन में लट जो है वह वन ने फूला रहे अंदर ही अंदर खाते रहे जणु की अपना फल जो है भी सड़वा लागे और गिर जावे है। अंडे नियंत्रण रे वाते जो काणा फल है वणा ने तोड़ने भूमि में गहरा गाड़ ने नष्ट कर देना चाहे और मेलेथियन 50 EC या पचे डाइमिथ्योएट 30 EC 1 मिलीलीटर और प्रति लीटर पानी री दरु गोल करने छिड़काव करनो है। जटापा लाल भ्रंग री अगर आप बात करो तो लट और भ्रंग दो ही अवस्था में देखो पौधा ने नुकसान पहुँचावे। भ्रंग पौधा री पत्यारी शिरा रे बीच में भाग ने खाई ने वणा ने छोटा छोटा छेद कर देवे और अनेक कीट रो प्रकोप जो है अधिक वे है। अंडी सुंडिया जमीन रे अंदर रहे और पौधा ने तना ने जड़ाऊं खाती जावे जो कि अपनी फसल ने नुकसान पहुंचावे। लाल भ्रंग रे नियंत्रण रे वाते एसीफेट 75 SP 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी री दरु गोल वणेन छिड़काव करा और हर 15 दिन रे अंतराल पर अन्न दोहरावा तो अणि कीटरी रोकथाम आपा कर सका। जट आपा बात कर रहा कुष्मांड कुलरी सब्जियां या पचे कद्दू वर्गीय सब्जियां री तो वन में अगर आपने समन्वित कीट प्रबंधन करनो है जट पोषक तत्व प्रबंधन री अगर आपा बात करा तो खेत री तैयारी री समय जो 25 टन या प्रति हेक्टेयर री दरु जो है अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर या कंपोस्ट री खाद देखो अपने मिट्टी में मिलाई देनी है। रोपाई पहला लगभग 150 किलोग्राम नाइट्रोजन 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश और नाइट्रोजन री आधी मात्रा अंतिम जुताई री टाइम मिट्टी में मिलाई देनी है। बाकी आधी नाइट्रोजन री मात्रा जो है वह अपने फूल आवा पे प्रयोग करनी चाहे। जटे खरपतवार नियंत्रण री अगर आप बात करा तो अंडे वाते पेंडीमिथिलिन स्टाम जो है 3 लीटर प्रति हेक्टेयर दरु पौध रोपाई रे पहला प्रयोग करनी है। अणि बात रो ध्यान रखनो कि छिड़काव पहला जमीन में नमी वेणी चावे। निराई गुड़ाई द्वारा भी खेत में देखो खरपतवार नियंत्रण करनो संभव है और रोपाई रे पहला पौधा री जड़ा में कॉन्फिडोर कीटनाशक द्वारा 1 लीटर पानी में गोल बनाई ने वणा ने उपचारित

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 7 बज चुके हैं, आइए अब सुनते हैं सदाबहार नगमे।

किशन कन्हैया मूवी से मनहर उदास और साधना सरगम की आवाज़ में अभी यह नगमा आपने सुना। अगला नगमा है मन्ना डे की आवाज़ में, फिल्म का नाम है सीमा।

सत्यम शिवम सुंदरम पिक्चर का शीर्षक गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, और इसे संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अगला नगमा है फिल्म मुगले आजम से, नौशाद का संगीत और लता मंगेशकर के बोल।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी नगमा आपने सुना फिल्म गोपी से, और संगीत किया था कल्याण जी आनंद जी ने। अगला नगमा जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है फिल्म गीत गाता चल से, और आवाज़ें हैं जसपाल सिंह और आरती मुखर्जी, और संगीत है रविंद्र जैन का।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम
2: और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी आपके नाम?
3: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
1: क्या
3: आरबीआई कहता है।
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए। ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
5: बिजली का बिल किराना स्कूल फीस सब हो गया।
6: बन गया बजट?
5: हाँ 5,000 बच गए।
6: तो नई साड़ी ले ले
5: ना। पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं पहले बजट बनाओ फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
6: बढ़िया जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

अभी आप सुन रहे थे सदाबहार नगमे। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। 7:45 हो चुके हैं, आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार प्रभात और 8:15 पर अंग्रेजी में मॉर्निंग न्यूज़ हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में RG कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से EFTA कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क,

0: और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ विपक्षी बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
2: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
6: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन

0: और अनैतिक रूप से रोक रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत, सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें, जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी है। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत 100 अरब डॉलर अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi calls for 100 billion

0: ठोकरों से डरकर जो बैठ गया राहों में, मंजिल कभी नहीं आती उसकी निगाहों में। मत सोचो कितना बाकी है, बस आगे बढ़ते जाओ, हर मुश्किल के पत्थर को हिम्मत से हटाते जाओ। इन्हीं पंक्तियों के साथ आगाज करते हैं उदयपुर के दैनिक और आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर का। और आज के इस अंक में मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमित और मेरे साथ हैं
1: कविता। और अमित, कविता का भी यही कहना है कि पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव थॉट्स को कभी आने ही ना दिया जाए, मतलब ये है कि हम उन्हें अपनी ज़िंदगी पर हावी नहीं होने दें।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने। और इसी के साथ हम बता दें कि आज के नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम में हम आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं।
1: बिल्कुल, और आज का जो नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम होता है मंगलवार का, उसको हम कहते हैं कम्युनिटी कनेक्ट ट्यूसडे। तो आज बहुत कुछ है आपके लिए हमारे इस पैकेज में, नमस्कार उदयपुर के पैकेज में। उसमें है आज एक बहुत ही खास दिन और वो है विश्व फेयर प्ले डे।
0: जी बिल्कुल,
1: ये स्पोर्ट्स से संबंधित होता है, इसके बारे में हम हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताएंगे।
0: बिल्कुल, और उसी के साथ में पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी की जयंती है, उनके कामों पर, उनकी जीवनी पर भी बात करेंगे। और साथ ही पुण्यतिथि पर हम याद करेंगे प्रसिद्ध साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी को।
1: बिल्कुल, और हम इसमें समावेश भी कर लेंगे हमारे उदयपुर शहर की जो स्थानीय खबरें होती है, जिससे कि हम आपको अपडेट करेंगे। और IPL की तो बातें होगी ही। और जब दूसरा सेगमेंट हमारा शुरू होगा सोशल पल्स का, उसमें आज हम बात करेंगे जो कि अभी हमारे राजस्थान में एक नया नवाचार आया है, और वो है कि राजस्थानी भाषा का विद्यालयों में लेना और उससे सामाजिक बदलाव क्या होगा।
0: बिल्कुल, और अगले सेगमेंट अवेयरनेस में हम बात करेंगे साइबर बुलिंग और उससे बचाव के बारे में।
1: और जाते जाते अंत में
0: वेदर और हेल्थ, इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि बढ़े हुए तापमान में हम हाइड्रेट कैसे रह सकते हैं। तो बनिए रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आकाशवाणी उदयपुर।
1: तो क्यों ना एक खूबसूरत से गीत के साथ शुरुआत किया जाए।
2: उड़ गए, उड़ गए, रे उड़ गए, अरे उड़ गए।

बाहुबली वार किया, जीना दुश्वार किया, तेरे मेरे रास्ते में खड़ी दीवार किया, है ना, है ना। प्रेम के थाने में मैंने दिल का FIR किया, तूने मुझे प्यार किया, मैंने तुझे प्यार किया, है ना, है ना।

0: बिल्कुल तात्या तात्या करते हुए हमने एक नए दिन की शुरुआत कर दी है।
1: जी
0: श्रोताओं नमस्कार, उदयपुर कार्यक्रम में अब आप हमको उदयपुर शहर में इन दिनों क्या कुछ खास हो रहा है और आज की क्या लेटेस्ट अपडेट है वो हम आपको बता देते हैं। हमारे शहर में है ना, झीलों की नगरी में अमित, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नए इलेक्ट्रिक बसों से अपग्रेड किया जाएगा और वो भी एक दो नहीं 50 नए इलेक्ट्रिक बसों का वो को लिया जा रहा है। इससे क्या होगा ना, बढ़ते ट्रैफिक, महंगे पेट्रोल और डीजल और प्रदूषण की समस्या के बीच शहरवासियों को जो है जून के पहले चरण में 10 रूट पर ये इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी और बाद में यात्री भार और जरूरत के अनुसार बढ़ाकर 15 रूट तक इसे कर दिया जाएगा। जहां यात्रियों की संख्या अधिक होगी वहां संचालन को प्रेफरेंस भी दिया जाएगा। 45 बसें छोटी 9 मीटर की होगी, जो हमारे उदयपुर शहर का जो पुराना शहर है, अंदरूनी इलाका जहाँ पर बहुत नैरो रोड्स है, वहाँ पे इसे चलाया जाएगा और शहरवासियों को इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि किराया कम लगेगा और सुविधाजनक सफर मिलेगा।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ हम बता दें कि आज बिजली बंद रहने वाली है सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक, और जो एरिया बिजली बंद से प्रभावित होंगे उसमें है डाकन कोटड़ा, आर्यों का फला गाँव, न्यू टोल टैक्स क्षेत्र, ढोल की पार्टी, हीरामान सोसाइटी, शांति हिल्स इंडस्ट्रियल एरिया, रामजी रमिया रिजॉर्ट क्षेत्र, ओड बस्ती, एकमय सर्वोदय कॉम्प्लेक्स, सागर विला और हनुमान कॉलोनी सहित उसके आसपास के एरिया में ये बिजली से आज 9:30 बजे से 2 बजे तक प्रभावित रहेंगे।
0: और इन एरियाज में जो भी रेडियो सुन रहे हैं हमें, तो अगर आपके कुछ काम है तो आप 9:30 से पहले पहले ये काम कर लें, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है मोबाइल रिचार्ज। चलो, वर्ल्ड हेरिटेज इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल जो है वो लोक कला मंडल में आर्ट पाइवट संस्था के 4 दिवसीय वर्ल्ड हेरिटेज ये फेस्टिवल का आगाज हुआ है, जिसमें कला, संस्कृति और वैश्विक रचनात्मकता का संगम देखने को मिल रहा है। इसमें चित्रकारों, मूर्तिकारों, फोटोग्राफरों, फिल्म मेकर्स और आर्टिजन्स को एक साझा मंच प्रदान किया जा रहा है, जिससे वैश्विक स्तर पर कला संवाद को मजबूती मिल सके। और अमित, एक और जानकारी हमारे श्रोताओं को जनगणना से रिलेटेड दे देते हैं। जिले में जनगणना 2027 की शुरुआत हो गई है, जिसमें प्रगणक और पर्यवेक्षक घर घर पहुंचकर जानकारी जुटा रहे हैं। सर्वे में मकान का सूचीकरण और मकान चिन्हीकरण का कार्य बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। इसमें प्रत्येक परिवार से 33 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे जा रहे हैं, जिनके आधार पर सरकारी योजनाएं, सुविधाओं और विकास का खाका तय होगा। जनगणना में कार्मिकों को पूरा सहयोग कीजिए, सतर्क रहिए और घर आने वाले जो भी प्रगणक का है उनका पहचान पत्र अवश्य देखें। साथ ही किसी भी स्थिति पे मोबाइल पर आने वाले ओटीपी को साझा न करें, केवल अधिकृत जनगणना कार्मिकों को ही इसकी जानकारी दे।
1: बिल्कुल, और साथ ही कुछ रेल की पटरियों पर काम चल रहा है, उसकी वजह से कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी, उसकी डिटेल हम अपने श्रोताओं को बता देते हैं। तो पहली ट्रेन है अहमदाबाद

0: हिम्मतनगर रेलखंड पर असरवा साबरमती, ये जो स्टेशंस हैं यहाँ से कनेक्टिविटी के कमर्शियल काम के चलते इसको कुछ ट्रेन्स को बंद किया गया है, जिसमें असरवा चित्तौड़ की ट्रेन और दूसरी जो ट्रेन है वो है असरवा कानपुर सेंट्रल। ये दोनों ही ट्रेन अपने निर्धारित समय से 2 घंटे की देरी से असरवा के लिए प्रस्थान करेंगी। तो जो भी यात्री इन ट्रेन्स में सफ़र कर रहे हैं वो थोड़ा सा अपने समय को देख लें, एक बार फिर से इंक्वायरी कर लें कि ट्रेन का टाइमिंग क्या है, और सारी जानकारी लेकर ही घर से निकलें।
1: बिल्कुल।

0: आईपीएल के चिर परिचित इस म्यूजिक से हमारे श्रोतागण समझ गए होंगे कि अब उनके रेडियो दोस्त उनको क्या बताने वाले हैं। तो आईपीएल की कल के मैच की जानकारी तो उन्हें मिल ही गई है, जो कि हैदराबाद वर्सेस सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स के विरुद्ध हुआ था और उसमें तो हैदराबाद आसानी से जीत गई।
1: जी बिल्कुल। अगर बात करें तो सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 180 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया और उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने शुरुआत में संभली हुई रही, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बहुत अच्छे से बल्लेबाजी करते हुए और रनों की गति को बनाए रखा और दोनों ही बल्लेबाजों की जो शानदार पारी रही उससे मैच का रुख पूरी ही तरह बदल गया था।
0: बिल्कुल, ईशान किशन मैन ऑफ द मैच रहे, उन्होंने बहुत ही शानदार पारी खेली और इस मैच के में को जीतने के बाद हैदराबाद है ना सीधा अब क्वालिफाई कर गई है प्लेऑफ के लिए।
1: जी बिल्कुल।
0: और आज के मैच की जानकारी दें हमारे श्रोताओं को, तो आज लखनऊ वर्सेस राजस्थान का मैच है और ऑरेंज कैप की अगर हम बात करें तो हेनरिक क्लासेन गुजरात के, वो उन्हें उनके पास है अभी ये कैप। पर्पल कैप भुवनेश्वर कुमार आरसीबी बेंगलोर के जो हैं बॉलर उनके पास है और मैक्सिमम सिक्सर्स वैभव सूर्यवंशी जी के पास है।
1: जी,
0: और देखो हमने बात करी है क्रिकेट की और आज एक बहुत ही खास दिन है, विश्व फेयर प्ले डे
1: दिवस। बिल्कुल, ये दिन खास तौर पे मनाया जाता है खेल जगत में ईमानदारी के साथ अपने काम को करने के लिए, अपनी चीज़ों को जो कहते हैं ना कंपटीशन हो लेकिन हेल्दी कंपटीशन हो, उस चीज़ पर ध्यान रखने के लिए इस दिन को मनाना शुरू किया गया है। और इस दिवस के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने जो स्पोर्ट्स मैनशिप जो है स्पिरिट जो है उसका ध्यान रखें, साथ ही हमारा जो कंपेनियन है वो हमारा कंपेनियन ही है, वो दुश्मन नहीं है।
0: बिल्कुल अमित, एकदम सही बात कही है। एकदम सीधा साधा अर्थ है फेयर प्ले का कि नियमों का पालन करना है, विरोधी खिलाड़ियों का सम्मान करना है, खेलों में ईमानदारी और डिसिप्लिन को बनाए रखना है और जीत जब मिले तो विनम्रता रखिए और हार जब मिले तो धैर्य
1: रखिए। बिल्कुल सही बात है। और इसका क्योंकि हर वर्ष की एक थीम होती है तो इस वर्ष की जो थीम है वो है कि निष्पक्ष खेल, सभी के लिए सम्मान, समावेश और ईमानदारी। इस चीज़ पर ध्यान दिया गया है 2026 के इस पूरे वर्ष में और बहुत ज़रूरी है क्योंकि खेल में कई बार जैसे हम छोटे थे और बचपन में खेलते थे तो थोड़ी बहुत चीटिंग हम कर लेते थे, लेकिन ईमानदारी होना अपने आप में
0: एक लेवल पर, जैसे स्टेट लेवल खेल रहे हैं आप, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल, तो वहाँ पर जा करके आपको फेयर प्ले का बहुत ज़्यादा जो ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो आपके पॉइंट्स कट जाते हैं, आपको स्पोर्ट्स से जो जिस भी स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उससे बाहर तक कर दिया जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और अगर अभी जो हम आईपीएल की बातें कर रहे हैं तो आईपीएल में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि कौन सी टीम फेयर प्ले के सभी जो उनके नियम हैं उन्हें फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, और इस बात का ध्यान जो फील्ड में जो अंपायर्स होते हैं वो रखते हैं और वो टीम को 10 पॉइंट में से पॉइंट्स दिया करते हैं। और अभी की अगर हम बात करें तो अभी बहुत कड़े मुकाबले चल रहे हैं, चेन्नई सुपर किंग्स नंबर 1 पर है फेयर प्ले के मुकाबले में, गुजरात टाइटंस पीछे फॉलो कर रहे हैं और नंबर 3 पर है कोलकाता नाइट राइडर्स। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि अगर आप अपना अनुशासन बनाए रखते हैं और फेयर प्ले में नंबर 1 आते हैं, है ना, तो बस आप इस तरह से देखिए कितनी इम्पॉर्टेंट ये दिन है, विश्व फेयर प्ले दिवस।
1: जी,

0: अरे क्या देख रहे हो? हाँ?
1: आपको
0: जाओ जाओ अपना व्यायाम करो, चलो चलो चलो। इसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं। इसे कपड़े में डालकर किसी के नाक पर रख दिया जाए तो वो बेहोश हो जाता है।
2: वो क्लोरोफॉर्म मैं गेट पर खड़े गार्ड्स पर इस्तेमाल करूंगा और फिर अंदर जाके सारे बैरक्स को बाहर से बंद कर दूंगा।
3: तब तक मैं एएफआई आर्मरी पर खड़े गार्ड को अंग्रेज होने का चकमा देकर आर्मरी का दरवाजा खुलवा लूंगा।
2: और ये सब बिना कोई गोली चलाए।
4: गोली सिर्फ तब चलेगी जब हमारी जान को खतरा हो। अब तक तीन ही बम बने हैं।
5: पर ताराकेश्वर दा, ये हाथ में तो नहीं फूटेगा ना?
4: ठीक रहा, उसका कान ठीक होता ना तो तुम्हारे सर पर ये बम फोड़ता।
6: क्या?
4: अरे टेगरा कह रहा है कि अब गोरो का सर नहीं बचेगा,

0: सब तैयारी हो गई? कहीं कुछ छूटा तो नहीं?
1: नहीं, नहीं, नहीं?
0: कल सब कुछ हमारे प्लान के अनुसार होना चाहिए।

0: करोगे? कहाँ जा रहे हो? कब लौटोगे?
1: शाम को।
0: अब जल खबर तो खाई जाए मांगशो।
1: फिकर मत कर माँ,

0: उन्होंने अपने शांत व्यक्तित्व और निष्पक्ष कार्यशैली से देश की राजनीति में एक अलग ही पहचान बनाई। आज हम उनकी जयंती पर उन्हें याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
1: बिल्कुल, और साथ ही आज पुण्यतिथि है प्रसिद्ध साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। आज जो साहित्यकार हैं उन्होंने काफ़ी सारे निबंध लिखे हैं, आलोचनाएं लिखी हैं और वो बहुत अच्छे चिंतक भी रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के क्षेत्र में ऐसे व्यक्तित्व थे जिनकी लेखनी से भारतीय संस्कृति, इतिहास और मानवीय मूल्यों की नई दृष्टि श्रोताओं के समक्ष रखी गई थी।
0: बिल्कुल, वे विशेष रूप से हिंदी साहित्य, संस्कृति, इतिहास और भारतीय परंपराओं पर अपने गंभीर लेखन के लिए प्रसिद्ध हुए। उनकी प्रमुख रचनाओं में बाण भट्ट की आत्मकथा, आनंद मठ, अशोक के फूल और कबीर जैसी कृतियां शामिल हैं।
1: और उनकी अगर हम बात करें तो वो काफ़ी सरल और प्रभावशाली उनका व्यक्तित्व रहता था, ज्ञान से भरपूर था, जो कि पाठकों को नई नई किताबें पढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते थे।
0: बिल्कुल, हिंदी साहित्य की दुनिया में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे नक्षत्र थे जिनकी लेखनी में ज्ञान, संस्कृति और संवेदनाओं का अद्भुत संगम दिखाई देता है। उनकी रचनाएं आज भी साहित्य प्रेमियों को प्रेरणा देती हैं।
1: उनकी पुण्यतिथि पर आकाशवाणी परिवार की ओर से हम नमन करते हैं।

0: अमित नमस्कार। उदयपुर कार्यक्रम में आज की तारीख 19 मई को हम ऐसे व्यक्तित्व को याद करेंगे जिन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया है और बहुत ही हम उनको कह सकते हैं बहुत ही श्रद्धा से हम उन्हें याद कर सकते हैं। भारत के छठे राष्ट्रपति रहे नीलम संजीवा रेड्डी, आज उनकी जन्म तिथि आती है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में उनका जन्म हुआ था। वे भारतीय राजनीति के एक सरल, ईमानदार और अनुशासित नेता माने जाते हैं।
1: बिल्कुल, और स्वतंत्रता के बाद उन्होंने भारतीय राजनीति में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। वे आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने, बाद में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अपनी कार्यशैली, निष्पक्ष कार्यशैली के लिए सराहे गए और 1977 में वे भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हुए। वे देश के ऐसे पहले राष्ट्रपति बने जिन्हें निर्विरोध चुना गया था।
0: बिल्कुल, सादगी, अनुशासन और लोकतांत्रिक वो मूल्यों के प्रतीक रहे नीलम संजीवा रेड्डी, भारतीय राजनीति का एक सम्मानित नाम थे।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर, आकाशवाणी उदयपुर के मीडियम वेव और एफएम बैंड दोनों ही चैनल पर एक साथ। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।

जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच सहमति के बाद अब राज्य रीजनल रैप

0: रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से जुड़ेगा। इससे दिल्ली से अलवर के बीच नमो भारत ट्रेन का संचालन हो सकेगा। प्रदेश में पश्चिमी गर्म हवाओं से दिन और रात का पारा बढ़ा। आज 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट। और राज्य में जनजातीय क्षेत्र के पात्र वंचितों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए 25 मई तक जनजाति गरिमा उत्सव का आयोजन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। इससे पहले श्री मोदी ने कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। क्राउन प्रिंस हॉकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद निवेश में हुई बढ़ोतरी की सराहना की।
1: रिसर्च एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, AI, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: प्रधानमंत्री श्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। श्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। 2 दिन की ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में रुकावट के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। कल नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
2: कमर्शियल LPG की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने PNG कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: राजस्थान देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS नेटवर्क से जुड़ने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच सहमति बनने के बाद अब राजस्थान नमो भारत नेटवर्क से जुड़ेगा। इससे दिल्ली से अलवर के बीच नमो भारत ट्रेन का संचालन हो सकेगा। प्रस्तावित दिल्ली गुरुग्राम SNB अलवर कॉरिडोर नई दिल्ली के सराय कालेखां से शुरू होकर गुरुग्राम होते हुए खैरथल, अलवर, नीमराना, बहरोड और सोतानाला तक पहुंचेगा। परियोजना के तहत कुल 196 किलोमीटर लंबा नेटवर्क विकसित किया जाएगा जिसमें 22 मुख्य स्टेशन प्रस्तावित है। राज्य में ये कॉरिडोर 91 किलोमीटर लंबा होगा और 6 स्टेशन बनाए जाएंगे। RRTS ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी जिससे दिल्ली NCR राजस्थान के बीच आवागमन तेज होगा। राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने की घटना की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। पश्चिमी मध्य रेलवे के महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह की ओर से गठित 6 सदस्यीय विशेष समिति कल कोटा पहुंची। उन्होंने घटनास्थल का दौरा कर लूनी रिच्छा स्टेशन पर खड़े प्रभावित कोच का निरीक्षण किया और अग्निकांड से जुड़े तमाम पहलुओं की जानकारी ली। गौरतलब है कि ट्रेन के AC कोच में लगी आग की घटना के बाद रेल कर्मियों की तत्परता और आपातकालीन प्रबंधन से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। राजस्थान पुलिस की ओर से प्रदेश भर में 2 दिन का मेगा नाकाबंदी अभियान चलाया गया। इसके तहत कुल 810 नाकाबंदी पॉइंट्स लगाकर 47,000 से ज्यादा वाहनों की जांच की गई। वहीं 274 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह ने बताया कि इस अभियान के दौरान बीकानेर, जोधपुर और जयपुर रेंज के सभी प्रमुख मार्गों पर सघन चेकिंग की गई। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई, साथ ही तस्करों और असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर मामले दर्ज किए।

0: गए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। समूचा राज्य भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। पश्चिमी गर्म हवाओं के असर से पारे में उछाल आया है। लू के थपेड़ों के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। झुलसाती धूप को देखते हुए लोग दिन के समय घरों से निकलने में बच रहे हैं और सड़कों पर आवाजाही कम देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार कल दो शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार दर्ज हुआ, वहीं 10 स्थानों पर रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। 46.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ चित्तौड़गढ़ और पिलानी सबसे गर्म रहे। वहीं जालौर, बीकानेर, फलौदी, जोधपुर, बाड़मेर और जयपुर सहित कुछ स्थानों पर रात का तापमान 30 डिग्री से ऊपर मापा गया। आज सरहदी जिलों और दक्षिणी पूर्वी भागों में हीट वेव चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट बताया है। इन जिलों में दिन का पारा 42 से 47 डिग्री के बीच रह सकता है। कुछ स्थानों पर अगले 4-5 दिनों तक धूल भरी हवाएं चलने की आशंका है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से चिन्हित ग्राम पंचायतों में जनजाति गरिमा उत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जा रहा है। इसमें संतृप्ति कैंप आयोजित हो रही हैं। जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कल इस संबंध में 17 विभागों की बैठक ली। इस दौरान जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा ने शिविरों में होने वाली गतिविधियों की जानकारी दी। उधर जनजाति जिले डिंगोरपुर में जिला कलेक्टर देशल दान ने अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके तहत जनजातीय क्षेत्र के पात्र वंचितों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
1: जिला कलेक्टर देशल दान ने सभी विभागों को दायित्व सौंपते हुए इस अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचकर जरूरतमंद लोगों को योजनाओं से जोड़ा जाए ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित नहीं रहे। अभियान के अंतर्गत 17 विभागों की ओर से 25 तरह के कार्य किए जाएंगे। चिंतन जोशी, आकाशवाणी समाचार, डूंगरपुर।
0: राज्य सरकार ने विभिन्न खेलों के पदक विजेता युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आउट ऑफ टर्न नियुक्ति नीति को मजबूती से लागू किया है। इसके तहत अब तक 186 खिलाड़ियों को राज्य की सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी गई है। इनमें क्रिकेट, शूटिंग, घुड़सवारी और कबड्डी सहित कई खेल शामिल है। सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले 1786 खिलाड़ियों को लगभग 40 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान स्वीकृत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच सहमति के बाद अब राज्य रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से जुड़ेगा। इससे दिल्ली से अलवर के बीच नमो भारत ट्रेन का संचालन हो सकेगा। प्रदेश में पश्चिमी गर्म हवाओं से दिन और रात का पारा बढ़ा। आज 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट। और राज्य में जनजातीय क्षेत्र के पात्र वंचितों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए 25 मई तक जनजाति गरिमा उत्सव का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: समाचारों के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर में। मैं हूं आपका रेडियो समेत
3: और मेरे मैं साथ कविता। श्रोताओं, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 101.9 मेगा हर्ट्ज पर आप हमें सुन रहे हैं, आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। और हमारा ये सेकेंड सेगमेंट है, इसमें हम अमित श्रोताओं को क्या क्या बताने वाले हैं। देखो, सोशल पल्स के अंतर्गत विद्यालयों में अब राजस्थानी भाषा और सामाजिक बदलाव

0: जो जागरूकता होनी चाहिए उसमें है साइबर बुलिंग से
1: जी
0: बचाव कैसे किया जाए, वेदर और हेल्थ में हम आज बातें करेंगे, बढ़े हुए तापमान में कैसे रहें हाइड्रेटेड। एक सुंदर सा गीत सुनाओ हमारे श्रोताओं को।

0: श्रोताओं, अब बारी है जागरूकता की, अवेयरनेस की। और आज अमित, हम हमारे श्रोताओं को किस बारे में अवेयर करना चाह रहे हैं?
1: बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और वो है साइबर बुलिंग। क्योंकि

0: जैसे हम देखते हैं कविता, इंटरनेट आने से बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए सुविधाजनक हो गई है। बहुत सारी जानकारियां अब हमारे फ़ोन पर, हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर पहुंच जाती है, लेकिन साथ ही हम एक सोशल मीडिया के साथ भी डील कर रहे हैं, हम इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं। और यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम सामने आती है वो है साइबर बुलिंग, क्योंकि पहले किसी को अगर आपको बुलिंग करनी थी तो फेस टू फेस बात करनी होती थी, लेकिन अब कोई भी कहीं भी किसी भी शहर में बैठ के अपनी स्क्रीन से आपकी फोटो पर या आपके वीडियो पर कुछ भी कमेंट कर सकता है और आपको
1: बिल्कुल
0: परेशान कर सकता है।
1: एक आस मतलब बहुत ही सरल सा यह शब्द है साइबर बुलिंग,
0: जी
1: इसको हम साइबर फ्रॉड के साथ मिक्स ना करें,
0: हाँ जी बिल्कुल।
1: है ना?
0: क्योंकि देखिए, हर इंसान की अपनी पसंद होती है, चॉइस होती है, और उसको देखकर नीचे गंदी गंदी बातें लिखना या कुछ भी ऐसी चीज़ लिखना जो सामने वाले को आहत करे, हर्ट करे,
1: हाँ बिल्कुल
0: उसे साइबर बुलिंग के अंदर हम लोग रखते हैं।
1: बिल्कुल। इंटरनेट या सोशल मीडिया पर परेशान होना, डराना और अपमानित करना, इससे बचने के लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है, सतर्क रहना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि अपनी निजी जानकारी, मोबाइल नंबर्स, पता, आपका जो एड्रेस है, जो पासवर्ड्स है, वो हमें किसी के साथ साझा नहीं
0: नहीं
1: करना
0: करने हैं।
1: चाहिए। सोशल मीडिया अकाउंट की प्राइवेसी और उसकी सेटिंग्स को ज़रूर आपको सुरक्षित रखना होगा। किसी भी अपमानजनक मैसेज या पोस्ट का जवाब गुस्से या आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में ना दें।
0: जी
1: गलत मैसेज, फोटोज़ या चैट्स का स्क्रीनशॉट को सुरक्षित रखें।
0: बिल्कुल। और सबसे खास बात यह है कि अगर आप छोटे हैं, आप एज में कम हैं, तो अपनी माता पिता से, अपने जो गार्जियन हैं उनसे ज़रूर बात करें कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो बात नहीं करती, फिर वो डिप्रेशन में जाती है, फिर वो कुछ
1: हाँ,
0: गलत कदम
1: ये
0: उठाती
1: बहुत
0: है।
1: बड़ा एक इसका रिजल्ट होता है कि
0: जी
1: साइबर बुलिंग की जिसके भी साथ हो रही है, हो रहा है, वो इससे उभर ही नहीं पाता है
0: बिल्कुल
1: और वो डिप्रेशन के फेज में चला जाता है। गलत मैसेज, फोटोज या चैट्स का स्क्रीनशॉट, जैसा कि हमने कहा, सुरक्षित रखें। परेशान करने वाले व्यक्ति को आप तुरंत ब्लॉक कर दें, है ना?
0: बिल्कुल
1: और इसके बारे में जरूर आप लोगों को बताएं, आपके जो भी आपके निजी है, जो आपके संपर्क में हैं, उन्हें बताएं। और अगर ऐसा से भी बात ना बने तो पुलिस में जरूर आप कंप्लेन करें।
0: बिल्कुल। और इसी के साथ में एक और चीज़ जो पेरेंट्स को ध्यान रखनी है कि वो बच्चों की सोशल आईडीज पर नज़र रखें कि वो किससे बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं, क्योंकि साइबर बुलिंग के साथ में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पर फेक साइबर आईडीज के थ्रू
1: बिल्कुल
0: जालसाजियाँ भी हो रही हैं, तो उनसे भी बचना बहुत ज़रूरी है।
1: ये तो पूरा एक मकड़ जाल है अमित। अगर मतलब कोई भी इसमें अगर फंस जाता है, कुछ थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है या कुछ भी होता है, तो वाकई में इससे बचना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पहले जागरूक बन जाइए, पहले ही अवेयरनेस रहना होना बहुत ज़रूरी है। देखो, पिछले पिछले दिनों बॉलीवुड में एक फिल्म आई थी हैक्ड,
0: हाँ
1: वो ये
0: जी
1: इस पर ही बनी थी। तो क्यों ना हमारे श्रोताओं को इसी फिल्म का एक गीत सुनाया जाए।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: और अब नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और समाज की नब्ज़ सोशल पल्स के बारे में बात करेंगे और आज का हमारा इसमें टॉपिक है राजस्थानी भाषा का जो समावेश विद्यालयों में हुआ है इससे क्या सामाजिक बदलाव आएगा अमित
2: जी ना? बिल्कुल क्योंकि राजस्थानी भाषा जो है वो अभी 8वीं भाषा की सूची में सम्मिलित नहीं की गई है लेकिन ये एक बहुत ही बेहतरीन कदम है कि विद्यालयों में इसको एज अ चैप्टर एज अ एजुकेशन फॉर्मेट में इसे पढ़ाया जाएगा इस पर बात की जाएगी सबसे बड़ी जो लड़ाई है राजस्थानी भाषा के साथ वो ये है कि हम संगठित भाषा नहीं है हमारे यहाँ पे अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग भाषाएं अलग अलग बोलियाँ चलती रहती हैं प्रचलित
1: हैं जैसे कि अगर मेवाड़ की बात करें बागड़ की बात करें मारवाड़ की बात करें लेकिन अब अमित हर क्षेत्र के जो भाषाएं हैं उन सभी को उनके हिसाब से उनके क्षेत्रों के हिसाब से लिया जाएगा
2: जी।
1: उन सभी को विद्यालयों में मतलब मान्यता दी जाएगी राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के प्रयास सामाजिक बदलाव की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और अपनी मातृभाषा से जुड़ाव बच्चों में संस्कृति परंपरा और स्थानीय पहचान के प्रति सम्मान पढ़ाता है ना और इससे क्या होगा लोक साहित्य लोक गीत लोक कथाओं को समझना आसान होगा इसके साथ साथ अपनी जड़ों से भी गहराई से
2: जुड़ पाएंगे बिल्कुल और सबसे खास बात यह है जो एक भाषा के साथ बच्चों का जो कम्युनिकेशन होता है क्योंकि घर पे वो मेवाड़ी या मारवाड़ी इस्तेमाल करते हैं और स्कूल में आते ही हिंदी या इंग्लिश का जो दबाव बनाया जाता है वो थोड़ा सा बच्चों के ऊपर कम होगा कि जब आप रीजनल लैंग्वेज में बात करेंगे तो कम्युनिकेशन बच्चों के साथ थोड़ा ईजी हो सकता है
1: हाँ कई बार ऐसा होता है भाषा के साथ बच्चे सहज नहीं होते हैं और वो इंट्रोवर्ट्स हो जाते हैं ना इतनी बोलने की जो क्षमता है वो बहुत कम पड़ जाती है तो ऐसा उनके लिए इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा अगर जो उनकी खुद की मातृभाषा है उसी में अगर वो कम्युनिकेट कर सके उसी में अगर वो पढ़ाई करे तो वो बहुत इसमें सहजता महसूस करेंगे और बदलते समय के साथ अब विद्यालयों में राजस्थानी भाषा की खुशबू भी महकने लगी है अपनी बोली अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को संजोने की यह पहल समाज में सकारात्मक बदलाव का संदेश दे रही है।

0: देखो राजस्थानी भाषा का ये कितना मधुर गीत अभी तुमने हमारे श्रोताओं को सुनवाया। और अब स्वास्थ्य की बात करेंगे, मौसम की बात करेंगे, और बढ़ते हुए तापमान में किस तरह से हाइड्रेटेड रहें इसकी थोड़ी सी टिप्स हमारे श्रोताओं को जाते जाते दे जाते हैं कि बढ़ते हुए तापमान को खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत ही ज़रूरी है। तेज़ गर्मी और लू से बचने के लिए हमें पानी, तो हमारे शरीर को पानी की कमी ना हो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। खूब सारा पानी पिए, घर से बाहर निकलें तो पानी की बोतल अपने साथ लेकर के जाएं, तरल पदार्थों का सेवन करें।
1: बिल्कुल, और साथ ही साथ छाछ, केरी पानी, नींबू पानी, गन्ने का रस, ये कुछ ऐसी अल्टरनेटिव चीज़ें हैं। अगर पानी नहीं पिया जा रहा है तो इन चीज़ों का आप सेवन करें। और नारियल पानी बहुत खास और बहुत ही पौष्टिक भी है इस पर्टिकुलर गर्मी के मौसम में।
0: और अभी अबंडेंस में तरबूज, खीरा, खरबूजा आ रहा है, ये भी आप इसका भी पूर्ण सेवन करें, इससे भी आपको आपके शरीर को पानी मिलता है। तो श्रोताओं, ये तो हो गई जागरूकता की बात और हेल्थ की बात, और अब हमारे जाने का वक्त हो रहा है। तो गर्मी का बढ़ता पारा शरीर से ऊर्जा और पानी दोनों को कम कर देता है, ऐसे में खुद को रखें हाइड्रेटेड ताकि सेहत भी बने रहे और दिन भर ताजगी भी। इसी मैसेज के साथ अब हम लेते हैं आपसे इजाजत। आज मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त कविता,
1: और मैं अमित।
0: नमस्कार।

मस्कार उदयपुर। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। 9:30 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: डंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
4: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
3: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
4: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
3: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
4: नमस्ते।
3: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
4: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
3: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
4: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है, चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
3: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं, ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया। परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
4: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
3: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
4: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि यह कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
3: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
4: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहां अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
3: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहाँ वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं, या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
4: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहां साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
3: जी,
4: और जहां हर समय नमी पाई जाती है और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है
3: जी। एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहां वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षा वन तो ऐसे भी हैं जहां साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
4: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
3: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
4: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
3: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं
4: जी,
3: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
4: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है, जो भाप आकाश में जाकर बादल

0: बनाती है
1: जी।
0: और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
1: लेकिन श्रोताओं, जरूरी नहीं है कि सभी वर्षा वन भूमध्य रेखा के पास ही हों। इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
0: तो श्रोताओं, एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है।
1: जी।
0: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं। वर्षा वन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए।
1: जी, यही कारण है अजीत जी कि चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है, उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है
0: जी।
1: और इससे पूर्व भी आदि मानव और जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात।
0: जी विमृषि, श्रोताओं, एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं, उतने कहीं और नहीं पाए जाते।
1: जी।
0: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं विमलेश जी से।
1: जी श्रोताओं, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षा वनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षा वनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, और हाँ, ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी वर्षा वनों की। श्रोताओं, वर्षा वन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो
1: जी,
0: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
1: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें।
1: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
0: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर, और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
3: बादल, बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
2: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।

0: सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
1: नहीं, मैं तो पीला हूं।
0: कौवे कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं नहीं, मैं तो काला हूं। गुब्बारे गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
1: नहीं, मैं तो लाल हूं।
0: घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो हरी हूं।
1: बेचारा जोजो।
0: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
3: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोता और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
4: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
3: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
2: लाटा गांव के ग्रामीण खेतीबाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर

0: आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
2: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
3: अरे इस बार भी नहीं लगी।
4: अरे
2: नहीं लगा ना, लाओ लाओ। रुको रुको रुको,
4: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो। अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
2: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
4: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
3: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
4: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
2: बड़ी आई रोकने वाली।
1: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
0: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
1: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थीं। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
0: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
5: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
6: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
5: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
0: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
5: आप तो काम करती है ना?
0: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
5: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
1: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
0: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
1: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए

0: लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
1: नहीं करने देंगे,
2: बिल्कुल नहीं करने देंगे।
3: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
0: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
3: और तभी

0: रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
1: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
2: गौरमा,
3: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
2: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
3: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
2: गौरमा,
3: हाँ,
2: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
3: क्या?
2: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
3: अच्छा, तो ये बात है। बहनों, चलो हम सब तैयार हो जाएं।
4: बिल्कुल,
3: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
5: हाँ, हाँ, सब तैयार हैं।
4: नहीं कटने देंगे,
2: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
0: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ओज था।
3: ये है जंगल के उपकार,
6: मिट्टी पानी और बयान,
3: मिट्टी पानी और बयान,
6: जिंदा रहने के आधार।
7: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
3: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
8: आगे बढ़ो।
4: अरे कहां से?
8: दो मिनट की बातों में मत आओ। मैंने तुम्हें पेश की थी है, पेश की इस काम के लिए। बोलो शुरू, कहां
4: पे? चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे।
3: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आज
2: नहीं लगाने देंगे।
3: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
6: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
8: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
0: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
7: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांव से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
8: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
0: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
7: इस घटना ने गौरा देवी को

0: चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
1: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
0: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
2: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
1: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। अभी 10 बज चुके हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

विशाल ददलानी और शंकर महादेवन की आवाज़ में अभी एक नगमा जो आपने सुना वो है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म से शंकर एहसान लॉय का संगीत। और अगला नगमा जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है रेखा भारद्वाज की आवाज़ में, साथ में जावेद अली और अनुराधा श्रीराम की आवाज़, ए आर रहमान का संगीत। फिल्म का नाम है रावण।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैक चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले ले आ गया नया किडबैक।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
6: Oh, lovely. Well done.
7: Business loan approved.
8: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
9: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
10: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ।
11: समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
12: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
13: आप कौन?
3: RBI कहता है
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

अभी जो नगमा आप सुन रहे थे वो था फिल्म यस बॉस से, जतिन ललित का संगीत, अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़। और अगला नगमा जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है फिल्म दिल्ली सिक्स से, एआर रहमान, बेनी दयाल और तन्वी शाह की आवाज़ों के साथ एआर रहमान का संगीत।

फिल्म का नाम था हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी। शांतनु मोइत्रा का संगीत और स्वानंद किरकिरे की आवाज़ में अभी आपने एक नगमा सुना। अगला नगमा है एआर रहमान के संगीत से सजा हुआ, सुखविंदर सिंह और कमर सूफी की आवाज़ के साथ। फिल्म का नाम है रांझना।

0: जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आप भी अपने उत्पाद का विज्ञापन आकाशवाणी पर कीजिए और अपने व्यापार को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी के लिए नजदीक के आकाशवाणी केंद्र से संपर्क करें या हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।

फिल्म राजनीति से। अगला नगमा है उदित नारायण और मधुश्री की आवाज़ से एआर रहमान के संगीत के साथ। फिल्म का नाम है किसना।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

सुरमई से अंधेर की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां

अभी आप सुन रहे थे वीर ज़ारा फिल्म से ये नगमा, मदन मोहन का संगीत और सोनू निगम की आवाज़ के साथ। अब फिल्म संगीत के इस भाग का आखिरी नगमा हम आपके लिए छोड़े जाते हैं, वो है प्रीतम के संगीत के साथ और सोहम की आवाज़। फिल्म का नाम है लाइफ इन अ मेट्रो।

आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी उदयपुर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राग जौनपुरी पर आधारित बंदिश। गायक कलाकार है पंडित वेंकटेश कुमार। तबले पर संगत कर रहे हैं भरत कामत और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं अजय जोगलेकर।

0: बड़ी बहू
1: ये तुम्हारे नाम,
0: इतनी भी क्या जल्दी थी।
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम,
2: और ये
3: मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो क्या।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
8: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
9: बन गया बजट?
10: हाँ
9: 5,000 बच गए।
10: तो नई साड़ी ले ले।
9: ना
10: पिछले महीने तो ली थी।
9: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
10: बढ़ी गई, जाओ भाई।
5: RBI कहता है
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
11: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
12: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
11: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी उदयपुर से। आपने सुना राग जौनपुरी पर आधारित ये बंदिश। गायक कलाकार थे पंडित वेंकटेश कुमार। तबले पर संगत कर रहे थे भरत कामत और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे अजय जोगलेकर।

नमस्कार आदाब, आकाशवाणी उदयपुर से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। इस जिंदगी की भागदौड़ में सुकून के कुछ पल चुरा लेने का दूसरा नाम है गजल। तो आइए गजल के ही शहनशाहों से सुनते हैं कुछ चुनिंदा नज़्में।

अभी आपने सुनी जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में ये खूबसूरत सी नज़्म। क्या ढूंढते हो पलकों के आंसू, किधर गए आँखों में समंदर के समंदर उतर गए। चुप हो तो लगे सारा बदन बात कर रहे हैं, सिमटे तो यूं लगे कि पूरा बिखर गए हैं। मैं चलती फिरती मानिंद रह गया, वो हौसले जो दिल के थे पल भर में रह गए। जिस शेर में था अक्स उसी के ख्याल का, सब हर्फ उसके चांद की सूरत निखर गए।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले
3: ले आ गया नया किडबैग।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में अभी आपने ये खूबसूरत सी गजल सुनी। आइए सुनते हैं एक संदेश और फिर आपको लिए चलेंगे सुगम संगीत के इस सुरीले सफरनामे पर।

सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से, और अब आप हमारी प्रोग्राम्स इंस्टॉल करके ऐप वहाँ भी सुन सकते हैं जिसका नाम है न्यूज़ ऑन एयर ऐप, और OTT प्लेटफॉर्म पर भी जिसका नाम है वेव्स, यहाँ पर भी आप हमारे हर कार्यक्रम एंजॉय कर सकते हैं। कहने को है मेरी जबान पर बोलता कोई और है, मेरी सोच अब न मेरी रही इसे सोचता कोई और है, मेरी ज़िंदगी का ये वाक्या किसी और को ना कभी मिले, मुझे खो दिया किसी और ने मुझे ढूंढता कोई और है, मैं गज़ल का वो एक शेर हूँ जिसे सबने अपनी ढब सुना, मुझे बांधता कोई है मुझे खोलता कोई और है, मेरे नाम से वाकिफ है सब किरदार से पर बेखबर, मुझे जानते हैं सभी मगर मुझे मानता कोई और है।

0: रखिएगा अश्क आँखों में अपनी संभाल के, रखते हैं हम गज़ल में दिलो जा निकाल के, रहना है हमें खाली पेट रोज़ की तरह, बहला रही है माँ यूं ही पत्थर उबाल के, अब कोई नया जख्म हमें सोच के देना, ये घाव अभी तक भी हरे पिछले साल के, है मेल जोल प्यार दुआ सब्र सुकून चैन, इस दौर में भी रखी ये दौलत संभाल के। आप सुन रहे हैं सुगम संगीत आकाशवाणी उदयपुर से, और ये आखिरी पेशकश आप तक पहुंचा रहे हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन,
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड,
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला

जगजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने सुनी ये गज़ल। सच कहें तो पुराने हो या नए, गज़ल जितनी बार सुना जाए उतनी ही बार वो जहन में थोड़ी और ज़्यादा उतरने लगती है। चलते चलते बशीर बद्र साहब का एक खूबसूरत शेर आपके नाम करते हैं। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 12 बज चुके हैं।

इस तपते जलते दिन दोपहर में आइए कुछ फिल्मी गीतों से मन को शीतल बनाए। आइए सुने कार्यक्रम फिल्म संगीत। और सबसे पहला जो गीत हमने आपके इस समय के लिए और दिन के 12 बजे के लिए चुना है वो है फिल्म सत्या से। आवाजें हैं आशा भोसले सुरेश वाडेकर की। आनंद लीजिए इस तपती जलती गर्मी में इस प्यारे से गाने का।

फिल्म संगीत में भी आपने सुना सत्या इस फिल्म का गाना। आवाज़ें थी आशा भोसले और सुरेश वाडेकर की, संगीत दिया विशाल भारद्वाज ने और गीत गा रहे गुलजार। 20वीं शताब्दी में फिल्मों की लोकप्रियता से कौन भला परिचित नहीं है। भारत में फिल्म के आगमन से काफ़ी पहले इसका जन्म विदेशों में हो चुका था। फिल्म नाटकों की परंपरा की एक विकसित कड़ी है, फिर भी वो नाटक मात्र नहीं है। तकनीकी विकास के युग में ही फिल्म का जन्म और विकास संभव था। कुछ बातें भी होती रहेंगी इस फिल्म संगीत के दौरान, फिलहाल वक्त है अब एक अगला गीत आप तक पहुंचाने का। तो आइए सुनते हैं फिल्म चाइना गेट से अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में ये गाना, जिसे उर्मिला मातोंडकर पर फिल्माया गया था।

0: अनु मलिक के संगीत से सजा और समीर के कलम से लिखा ये जो गाना था आपने सुना फिल्म चाइना गेट से। आवाज़ अलका याग्निक और शंकर महादेवन की थी साथ में साथियों की। फिल्म संगीत का ये कारवां चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक संदेश का।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत,
3: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
3: लेकिन झुमकों का क्या,
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

ताल। इसका अभी आपने ये गाना सुना आवाज आशा भोसले और आदित्य नारायण के साथ साथियों की थी। एआर रहमान ने इसे संगीत से सजाया। बातें करें फिल्मों की और उनकी यादों की, तो संगीत की जब रचना होती है फिल्मों में तो माना जाता है कि काव्य की रचना से कुछ उसमें फर्क होता है। कविता एक बार बन जाए तो कुछ दिनों के बाद भी वो अच्छी लगती है। धुन या संगीत एक बार बना लेने के बाद भी रिकॉर्डिंग के समय कभी कभी अटपटा सा महसूस होने लगता है, तब रचना को उसके हिसाब से संगीत के हिसाब से ढाल लिया जाता है और ये एक मिला जुला सा सतत प्रयास होता है। एक गीत को रचा जाता है तब कई उसे गतिविधियों से गुजारा जाता है। एक गीत अधूरा रहने से रचना की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि धुन पहले तय हो जाती है और गीत को बाद में लिखा जाता है। आजकल तकनीक के साथ ये जो गीतों की रचना है इसमें भी कई तरह से तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जो हमारे पुराने गीत हुआ करते थे वो शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय रागों पर भी आधारित होते थे, जो आज भी हमारे पास जिंदा है। चलते हैं अगले गीत की तरफ और अब सुनते हैं फिल्म गुलाम का ये गाना जो बहुत प्रचलित हुआ था। इसे आवाज़ दी है आमिर खान और अलका याग्निक ने।

फिल्म संगीत का दौर जारी है आकाशवाणी उदयपुर चैनल पर, और ये चैनल साथ में हमारा एफएम रेडियो लेक सिटी, ये दोनों ही चैनल के प्रोग्राम्स आप तक पहुंच सकते हैं न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से, जो आप अपने मोबाइल पर ले सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और ले भी आपने लिया होगा और आनंद ले रहे होंगे फिल्म संगीत का। अब जो अगला गीत है वो हमने चुना है फिल्म दिल का रिश्ता से। इसे समीर ने लिखा है और जतिन ललित का संगीत है। आवाज़ इस गीत में है अलका याग्निक की। इस गीत को फिल्माया गया था ऐश्वर्या राय पर।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: भारत में बोलती फिल्मों के जन्म से ही गीत संगीत उनके साथ लगा आ रहा है। आरंभ में जब निर्माताओं का ध्यान क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों पर ज्यादा था, उस समय भी गीत नृत्य फिल्म का आकर्षण केंद्र माना जाता था। लेकिन जब हिंदी फिल्मों का निर्माण बढ़ा तो नाच गाना उसकी प्रमुख शक्ति बन बैठा। ग्रामोफोन रिकॉर्ड और रेडियो ने सिनेमा हॉल से बाहर भी फिल्म के गीतों को सुनने की सुविधा जुटा दी। इससे फिल्मी गानों की ताकत लगातार बढ़ती गई और जल्दी ही उन्होंने अपनी निजी और स्वतंत्र सत्ता सी स्थापित कर ली। यहाँ पर इतनी भी बात आगे बढ़ी कि लोग कभी कभी तो सिर्फ गानों के लिए ही फिल्म देखने जाते थे। आइए सुनते हैं अगला गीत। आवाज़ है अलका याग्निक और साथियों की। फिल्म है सिर्फ तुम।

सिर्फ तुम, इस फिल्म का ये गाना अभी आपने सुना अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में। नदीम श्रवण ने इसे संगीत से सजाया और समीर ने इस गीत को लिखा था। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी उदयपुर से और अगला गीत है फिल्म फिजा का। आवाज़ें हैं सुनिधि चौहान और कृष्णा सरगथिया का।

फिजा फिल्म का ये गाना भी आपने सुना, सुनिधि चौहान की आवाज़ में, संगीत इसे सजाया था ए आर रहमान ने और गीत के बोल लिखे शौकत अली ने।

0: बीवी नंबर वन, इस फिल्म का गाना अभी आपने सुना अनु मलिक और समीर की रचना में, आवाज़ें थी हेमा सरदेसाई और शंकर महादेवन की।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

0: फिल्म संगीत का ये सुरों से सजा सफ़र यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय वक्त हो चला है समाचारों का। आपको जोड़ते हैं आकाशवाणी जयपुर के साथ और यहां से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा में आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का ये दौरा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी के दौरे को लेकर प्रवासी भारतीय के साथ स्थानीय इटालियन कारोबारियों में उत्साह है। वे भारत में व्यावसायिक अवसरों पर चर्चा के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर एक अहम बैठक ली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान राजस्थान को कोयले की निर्बाध आपूर्ति, तकनीक आधारित खनन और खनिजों के बेहतर दोहन सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। इससे पहले केंद्रीय मंत्री श्री रेड्डी ने कल राजसमंद जिले के राजपुरा दरीबा में हिन्दुस्तान जिंक संयंत्र का जायजा लिया। उन्होंने राजस्थान में प्रौद्योगिकी आधारित भूमिगत खनन, एकीकृत धातु गलाने की प्रक्रियाओं और सामुदायिक विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जिंक का परिचालन विकसित भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। 11 लाख टन से अधिक परिष्कृत उत्पादन क्षमता के साथ ये संयंत्र आत्मनिर्भर औद्योगिक इकोसिस्टम का उदाहरण पेश करता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपये है। इधर राजधानी जयपुर में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 108.94 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है, वहीं डीजल 94.17 रुपये प्रति लीटर हो गया है। बढ़ी हुई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई। ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद ये बढ़ोतरी की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से लावारिस श्वानों को हटाने के अपने पहले के आदेश में किसी भी तरह की राहत देने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में बदलाव की मांग करने वाली याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। अदालत ने अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के निर्देश दिए। अस्पतालों, स्कूलों और अन्य स्थानों पर कुत्तों के हमलों की घटनाओं को बेहद चिंताजनक बताया गया है। इनका हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि निर्देशों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अदालत ने राज्यों

0: केंद्र शासित प्रदेशों को पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने, रेबीज रोधी टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और रेबीज से संक्रमित या खतरनाक कुत्तों की इच्छा मृत्यु सहित कानूनी रूप से अनुमत उपाय करने के भी निर्देश दिए। जयपुर विकास प्राधिकरण ने पारदर्शिता की पहल को आगे बढ़ाते हुए भूमि आवंटन का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि साल 2014 से 2026 तक जमीन के बदले जमीन से संबंधित मामलों में आवंटित भूमि का विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। इस जानकारी में संबंधित जोन, योजना का नाम, भूखंड संख्या और आकार सहित अन्य जरूरी ब्यौरा शामिल किया गया है, जिससे आम लोगों और संबंधित पक्ष को किसी प्रकार की भ्रांति नहीं रहे और आसानी से समुचित जानकारी मिल सके। ये पहल प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में अहम मानी जा रही है। प्रदेश में ईंधन बचत मुहिम के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में झुंझुनू जिले की चिड़ावा नगर पालिका में अनुकरणीय पहल देखने को मिल रही है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सहित सभी कार्मिक साइकिल से दफ्तर पहुंचकर ईंधन बचत का संदेश दे रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जॉयंट्स से होगा। ये मैच जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आईपीएल मैच को देखते हुए जयपुर में यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। कई मार्गों पर यातायात डायवर्ट रहेगा। उधर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। वहीं मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जॉइंट्स मुकाबले से बाहर है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर। इस समय दोपहर के 1:05 हुए हैं। ये वक्त होता है हमारी सभी सखियों का मनपसंद कार्यक्रम सुनने का, सहेली यारी बाड़ी।

0: राम राम उपासना जी, राम राम।
1: राम राम अनुश्री भाई सा, राम राम।
0: सहेलियारी बाड़ी कार्यक्रम हुणवा वाली आपानी हंगली बेना ने और जो भी भाई लोग हुणीरा वेवणा ने भी आपानो
1: राम राम, राम सा।
0: तो देखो भाई सा, कार्यक्रम रो टेम व्यो है और आपा बात बात री जानकारिया, रूपाला रूपाला गीत और योजनावा और मौसम संबंधी कोई जानकारी वेवे तो सब लेन आपा आवा आपाने बेना रे वास्ते। अगर कोई मौसम संबंधी कोई रेसिपी वे तो वा भी लेन आवा। तो देखो आज आपा आपानी बेना सब पहली बात करा कि जो आपानी बेना है वणारी पर्यावरण रे संरक्षण में कई भूमिका वे सके है।
1: हाँ सा, भाई देखो प्रकृति और नारी ई दो जीवन री आधारशिला है सा। क्योंकि देखो प्रकृति वना तो आपने आप ही कहवा अपनो जीवन रो कई अस्तित्व ही नहीं वे वे
0: बिल्कुल सा।
1: और अनिस तरीका अगर परिवार रो आधारशिला री बात करा तो महिला रे बिना परिवार रो आधार ही नहीं है सा।
0: बिल्कुल सही बात कह रहा। देखो मानव जीवन जो है वो अगर आप प्रकृति की बात करी ना, प्रकृति और नारी, तो मानव जीवन पूरी तरह पर्यावरण पर निर्भर है। स्वच्छ हवा, शुद्ध जल, हरियाली और प्राकृतिक संसाधन आपने जो आपनों जीवन है विने सुरक्षित और संतुलित बनाए रखे। पर आज बढ़ता तक का प्रदूषण, रूकड़ा री कटाई, जल संकट और पर्यावरण ने गंभीर खतरा में नाकी दीदो है। अच्छा समय में आपने पर्यावरण संरक्षण में आपने जो बेना है बनारी भूमिका घनी महत्वपूर्ण वेवे है।
1: हाँ सा, देखो अपनी जी बेना है भी यूँ कह सका कि प्रकृति रे सब ज़्यादा निकट रहे वे है। घर परिवार की जिम्मेदारियाँ रे हाथे हाथे भी ज पानी री, भोजन री, पशुपालन री, खेतीबाड़ी री या स्वच्छता री सब बातों जुड़ी थकी वे और अना सबरो संबंध जो है वो प्रकृति में वे है साम। अभी आपने गाँव री बात करा हाँ तो गाँव में देखो औरता जो है वे पानी लावाने जावे, कटे डांडा चोपारी देखभाल करे है, कटे पेड़ पौधा री सुरक्षा करे है, बागवानी करे है, खेतीबाड़ी करे है। तो अणी तरीकाओं जो है अपनी बेना है भी पर्यावरण रे पास में रहे और अणी वास्ते भी पर्यावरण ने बहुत अच्छी तरह वंडा महत्व ने समझ सके है सर।
0: हाँ जी बात है सा। और

0: को आपने जो भारतीय संस्कृति है वणी मीने तो आप नारी और प्रकृति रो एक खास संबंध बतावे है कि धरती ने आप धरती माता कहवा, नदियाँ जो है वणा ने भी आप माँ कहन पुकारा। तो अणियों कही है कि जो महिला है वणा ने समय समय पर आप पर्यावरण संरक्षण के वास्ते प्रेरणा दे सका। हाँ, अगर आप बात करा देखो कि बेनारी है पर्यावरण संरक्षण में भूमिका रही, तो उत्तराखंड रो एक प्रसिद्ध आंदोलन भी हो चिपको आंदोलन अंडो एक मोटो उदाहरण है जटे बेना जो है अपना रूकड़ा ने काटवा मचावर वास्ते वणो चिपकिन वंडो विरोध की दो हो।
1: हाँ जी बात है सा। और 19 तारीख को राजस्थान री धरती भी देखो पर्यावरण रा संरक्षण रा इतिहास में स्वर्ण अक्षर में दर्ज है सा। सन 1730 री बात है सा, जदी जोधपुर निकट में खेजरली गांव में अमृता देवी बिश्नोई जी 363 विष्णोई स्त्री पुरुष जो हा वणा सब मिलने खेजड़ी रा पेड़ ने बचावरे वास्ते अपने प्राणारो बलिदान दीदो हो सा।
0: बिल्कुल सा। और देखो पेड़ा रे लिप्टिन जो अपने बेना ही वे आना यूं क्यों कि सर सांटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। केवल मतलब यो इसे है कि माँ तो कट जा पर पेड़ मच जावे तो यो सो दस सस्तो इसे। और यो बलिदान आज भी अपना पूरा देश में पर्यावरण संरक्षण रो संदेश देवे है।
1: हाँ जी बात है साहब। भी देखो आज भी जो औरता है भी पर्यावरण ने बचावर वास्ते अपनो महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। भी घरारे महीने पानी और बिजली री बचत कर रही है, प्लास्टिक रो उपयोग कम कर रही है, रसोई रा कचरा रो सही प्रबंधन कर रही है और पर वृक्षारोपण जैसा काम करने भी वाणी माध्यमों समाज ने भी जागरूक बनाई रही है साहब।
0: बिल्कुल भाई साहब। और देखो कुल मिले ना आप यू इस कही सका कि पर्यावरण री रक्षा री जिम्मेदारी केवल जिम्मेदारी नहीं है बल्कि अपनी आवा वाली पीढ़ी रे भविष्य री सुरक्षा भी है।
1: हाँ
0: मान काम ने अपनी जो बेना है वनारी भूमिका घनी प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण वे तो अपनी बेना ने अपन यू इस कहनो है कि आप जागरूक वे वो क्योंकि आप जागरूक वो ला तो परिवार जागरूक वेला और परिवार जागरूक वेला तो समाज जागरूक वेला और अगर समाज जागरूक वेला तो अपना पर्यावरण हमेशा सुरक्षित रहेला।
1: हाँ सा। देखो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो स्वच्छ हवा और स्वच्छ हवाओं आप ही स्वस्थ रहवांगा और आप ही स्वस्थ रहवांगा तो अपनो मन खुश रहेगा और गीत संगीत सुनारो मन करेगा सा।
0: बिल्कुल सा। आप इशारों में समझ गई हूँ आप चाह रहा हो कि आपने बेना ने और आपना जो श्रोता लोग है वना ने आप एक बढ़िया सो गीत सुनावा और आपा भी सुना सा।
1: हाँ सा।

0: तो अनुश्री भाई सा देखो तो बढ़िया सो गीत सुनायो सा। और अबे देखो आप ही आपने कार्यक्रम रे महीने बहुत सारी बढ़िया बढ़िया सी जानकारियाँ देता ही रहे वहाँ सा। तो भाई एक जो ऐप चले है वो है मौसम ऐप, तो आज वणी रे बारे में जानकारी कराओ वहाँ सा।
1: बिल्कुल भाई सा, देखो अपना कार्यक्रम में आप डिजिटल साक्षरता भी ले आवा। तो देखो आज तकनीकी युग में आप मोबाइल फोन केवल बातचीत रो साधन नहीं रियो है, बल्कि यो अपनी रोजमर्रा जी जिंदगी है वणी मीने महत्वपूर्ण साथी बनी गयो है। अणि उपयोगी सुविधा में एक सुविधा है मौसम ऐप। आज आप वंडी से बात करी रहा हाँ कि मौसम ऐप कही है। देखो पहली कही वे तो कि लोग मौसम रो अनुमान प्रकृति रा संकेतों लगाता, किसान बादलारी चाल देखिन वर्षा रो अंदाज लगाता, कटी हवारी दिशाओं मौसम रो पहचान करियो जातो, तो कटे आपा विज्ञान और तकनीकी मौसम की जानकारी आपने हथेली पे आज पहुँचाई दी दो है। आज मोबाइल में मौजूद मौसम ऐप आपने कुछ ही सेकंड में तापमान, बरखा, आंधी, हवा, गति और अनार्य वेवा वालों जो मौसम कशो आवेला अंडी जानकारी दे देवे है।
0: हाँ सा, देखो मौसम ऐप जो है वो उपग्रह रे रडार और मौसम विभाग द्वारा जुटाया गया आंकड़ा रे आधार पे काम करे है। भारत जो है वो मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD भी समय समय पे मौसम संबंधी चेतावनियां जारी करते रहे है, जणियो तरह तरह रा जो ऐप है वी जो है वी तुरंत लोगों तक पहुंची जावे और अणियों लोगों ने पहला सावधान वेवा में मदद मिल जावे है सा।
1: बिल्कुल भाई साहब, और अगर देखो आप राजस्थान की बात करा तो अट्टे मौसम की स्थिति कई बार तेजियों बदले है। गर्मी में तेज लू, धूल भरी आंधिया और घणो तापमान सामान्य बात है। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जैसा क्षेत्र में तो तापमान हमेशा ही ऊंचो ही रेवे है। ऐसा समय में आप देखा हाँ कि मौसम ऐप जो है लोगों ने गर्मी की चेतावनी, तेज हवा और वर्षा की संभावना की जानकारी दें सुरक्षित रेवा में सहायता कर सके है।
0: हाँ सा, देखो राजस्थान रा किसान भाई जो है वणारे लिए भी मौसम ऐप जो है बहुत ही उपयोगी साबित हुई रो है। खेती बाड़ी में आप ही कहवा तो पूरी तरह खेती बाड़ी जो है वह मौसम पे निर्भर करे है, और अगर किसान भाइयों ने पहला पतो चल जावे कि भाई बारिश कदी वेगा या ओलावृष्टि वेगा कि नहीं वेगा या पछे मौसम कणी तरीका रो रेवा रा वालो है, तो वणी रे आधार पे भी अपनी जो फसल है या खेती रा जो काम है वणारी योजना वणाई सके है सा।
1: बिल्कुल भाई साहब, मौसम ऐप रे द्वारा दीदी तक जो चेतावनियाँ वे वणियों के एक लोगों ने सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभावे, बटे पर्यटन की दृष्टि में भी मौसम जानकारी उपयोगी है। क्योंकि आप देखा हाँ कि ज़्यादातर अगर राजस्थान की बात करना तो राजस्थान में मोटी संख्या में पर्यटन आवे तो वे यात्राओं पहली मौसम की जानकारी लेने योजना बेहतर बनाई सके। हालांकि देखो आपने यो भी समझना चाहे कि मौसम रो अनुमान हमेशा 100% सही नहीं वेवे, कई बार मौसम में अचानक बदल भी जावे। यानी वास्ते मौसम ऐप ने एक सहायक माध्यम तो मानना है पर अंतिम सत्य आपने नहीं मानो, क्योंकि तकनीकी आपने जीवन ने अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक तो बनाई रही है लेकिन आपने भी पे बिल्कुल निर्भर नहीं रहना है।
0: हाँ जी बात है सा, भाई आपनों यही कहना है कि भाई मौसम ऐप जो है वह आधुनिक तकनीक रो एक ऐसा साधन है जणियों मौसम री जानकारी ने अपनी सरल और सुलभ तरीकों प्राप्त कर सका। हाँ तो खास तौर अपने राजस्थान रे महीने जटे मौसम जो है वो यूँ कहवा अपने किसान भाइयों ने बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करे है, तो अनिवास्य वंडी उपयोगिता तो है पर पूरी तरह मने सत्य नहीं माननो है सा।
1: बिल्कुल अंडी उपयोगिता अपने निभावनी है और अपने और अगर किन्हें इनके बारे में जानकारी नहीं है तो मने जानकारी भी देनी है। और भाई सा देखो अबे आप के हो तो एक बढ़िया सो गीत और सुनाई दा सा।
0: हाँ सा।

0: तो अनुश्री भाई साहब देखो बढ़िया सो गीत सुनायो आपी। और देखो कार्यक्रम में जानकारियां तो बहुत सारी है अणी वास्ते, अब एक आपी एक और जानकारी री शुरुआत कर दा सा।
1: बिल्कुल भाई साहब, आप पानी जो बिना है जनारो खेतीबाड़ी में भी जेको काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहे है, तो वड़ा ना आप बात करा कि ऑर्गेनिक खेती आप आए किस तरह कर सका। हाँ देखो, आज रा टेम में ना कही कि खेती खाली परंपरा नहीं रही बल्कि रोजगार और आय रो महत्वपूर्ण साधन बनी गई है। बदलता दौर में आपने जो किसान बेना है या पचे किसान भाई है, अबे असी खेती री आड़ी बढ़ी रहा है जिमें कम लागत में अच्छी आमदनी वे, भूमि री उर्वरता भी बनी रहे वे, तो अणि दिशा में ने लोकप्रिय वेरी है आज रे टाइम में ऑर्गेनिक खेती यानी कि जैविक खेती।
0: हाँ सा, देखो ऑर्गेनिक खेती रो मतलब है असी खेती जन्ने महीने रासायनिक खाद और जहरीला कीटनाशकों रो उपयोग कम वेवे या बिल्कुल नी वेवे। अंडे जगह पे गोबर री खाद, कंपोस्ट, जीवामृत या हरी खाद और प्राकृतिक उपाय जो है वी किया जावे है, जानियो कही वे मिट्टी री गुणवत्ता भी बनी थकी रहे और फसल भी ज़्यादा सुरक्षित मानी जावे है सा।
1: बिल्कुल भाई साहब, देखो आज रा बाजार में ऑर्गेनिक उत्पादारी वांग बढ़ी रही है, लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गया है, बिना रसायन वाली सब्जियां, अनाज, दाला, फल खरीदवानो वे पसंद कर रहा है। यो इस कारण है कि ऑर्गेनिक उत्पाद जो है सामान्य फसलारी तुलना में ज़्यादा कीमत पे बिके और अणियों कही है कि आपने किसान भाई आय बढ़ जावे है।
0: हाँ जी बात है साहब। भाई देखो आपने राजस्थान री बात करा तो अटारा बहुत सारा जो किसान है भी अभी जैविक खेती री तरफ का आगे बढ़ रहा है साहब। खास तौर अपना जो क्षेत्र है उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, जैसलमेरिया और आसपास रा जितना भी क्षेत्र है वहाँ में तो यो अभी देखवा में आई रो है कि भाई सब जना ऑर्गेनिक खेती रा प्रयोग कर रहा है साहब। और राजस्थान में गोवंश आधारित खेती री परंपरा जो है वह पहलाऊ वीरी है अणि वास्ते अटे जैविक खाद और प्राकृतिक संसाधन आसानी उपलब्ध भी वही जावे है साहब।
1: और देखो बात करें अगर ऑर्गेनिक खेती दी, तो देखो भाई साहब शुरुआत में थोड़ी मेहनत और अटे धीरज री आवश्यकता है क्योंकि मिट्टी ने रसायन मुक्त वेवा में टेम लागे है, क्योंकि लंबा टेम अपनी मिट्टी रासायनिक खाद ले रही है, लेकिन धीरे धीरे लागत कम वेवा लागे क्योंकि किसान भाई ने बार बार महंगी खाद और दवाइयाँ खरीदवारी जरूरत में नहीं पड़े। अणि कही है कि खेती रो खर्च घटे है और बचत बढ़ती जावे।
0: हाँ जी बात है साहब। और अंडे अलावा सरकार जो है वह भी जैविक खेती ने बढ़ावा देवारे लिए तरह तरह की योजना चलाई रही है, किसाना ने प्रशिक्षण दे रही है, वणा ने प्रमाण पत्र भी दे रही है और बाजार उपलब्ध करावा रो भी प्रयास कर रही है। बहुत सारा किसान जो है भी समूह वणाई ने और अपना उत्पाद ने सीधा शहरा में और ऑनलाइन बाजारा में पहुँचाई रहा है, जणियों वणा ने बहुत ही अच्छी कीमत मिल रही है।
1: सही बात है सर, देखो ऑर्गेनिक खेती केवल आय रो साधन नहीं है बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण री सुरक्षा रो माध्यम भी है। कुल मिले ना पाई यो कह सका कि ऑर्गेनिक खेती केवल एक खेती पद्धति नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन और बेहतर भविष्य री दिशा में उठाए गयो अस्यो महत्वपूर्ण कदम है, जण्यो आपणे किसान भाइया ने अच्छी आय रे साथे साथे आपा प्रकृति री जो है वंडी भी रक्षा कर सका। हाँ
0: हाँ साहब, भाई देखो किसान भाई तो प्रकृति में जुड़िया थे का ही है, आप ही सब भी जुड़िया थका। हाँ अपनी सब री जिम्मेदारी है अणि वास्ते आप ही सब जना मिलने पर प्रकृति री सुरक्षा रखा। देखो प्रकृति सुरक्षित है तो आप ही सब

0: सुरक्षित हासा, और प्रकृति खुशहाल है तो आप ही सब भी खुशहाल हासा।
1: बिल्कुल सा। और अगर आपा खुशहाल हाँ तो फिर खुशियाँ भी बढ़े ही है, और खुशियाँ बढ़े तो देखो गीत संगीत री दुनिया में जावरो जीव करे से, तो आपा चाला सा और बढ़िया सो गीत और सुन ला।
0: हाँ सा।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: ओके सैलरी। नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: तो उपासना भाई सा देखो, आप बढ़िया सो गीत सुनियो, और गीत सुनिन पाचा कार्यक्रम में आया। अब आपने कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा, और देखो आपने जो वृक्षारोपण है वह मंडो मंडे बारे में जानकारी दें कि वृक्षारोपण और संरक्षण कई चीज है।
5: हाँ सा, देखो प्रकृति री वापी बार बार बात कर रहा। हाँ कि देखो प्रकृति जो है वह मानव जीवन री सबों बड़ी धरोहर है, और पेड़ जो है भी प्रकृति रो एक अमूल्य उपहार है। पेड़ केवल हम छाया ही नहीं देवे है, बल्कि अपने जीवन के लिए जरूरी, सबों ज़्यादा जरूरी एक तो शुद्ध वायु प्राण वायु देवे है, और जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन मनावा में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभावे है सा। और आज यदि देखा भी देख, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहे है, जलवायु परिवर्तन वही रो है, और घटता वन और मानव जीवन रे लिए चुनौती बने थको है, वही टाइम पे वृक्षारोपण और वृक्षरो संरक्षण अंडी बहुत ही ज़्यादा जरूरत हुई गई है सा।
4: सही है भाई सा, देखो वृक्ष आपने जीवन रो आधार है। आप सांस ले तो ऑक्सीजन आपने रुकड़ों से मिले, रुकड़ा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर पर्यावरण ने संतुलित बनावे। अंडे अलावा जो रुकड़ा है वो बरसात ने आकर्षित करे, मिट्टी का कटाव ने रोके, भूजल स्तर बनाए रखवा में सहायक हुए। अगर धरती पे वृक्ष नहीं रहे तो जीवन की कल्पना आप कठिन कर सका। हाँ
5: हाँ सर, देखो आज तेजी बढ़ता थे का शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण बहुत बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई हुई रही है, जंगल जो है भी कम बेता जा रहा है, और अंडो प्रभाव जो अपने मौसम पे भी दिख रही है सा। कटे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और कटे अनियमित रूप बारिश आई रही है, कटे सूखारी स्थिति बनी थकी है, और ऐसे समय में वृक्षारोपण जो है वो केवल एक अभियान नहीं है, बल्कि आवा वाली पीढ़ियाँ के लिए अपनी जिम्मेदारी भी बन गई है सा।
4: बिल्कुल भाई सा, और देखो अगर राजस्थान की बात करें तो अट्टे तो रोकड़ा रो महत्व और भी ज़्यादा है। राजस्थान रो जो एक मोटो भाग है वो शुष्क है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, जटे हरियाली जीवन रो आधार माने जावे। अटे लोग सदियों रुकड़ा ने बचावारी परंपरा निभाई है। राजस्थान में आप देखा हाँ कि खेजड़ी जैसा जो वृक्ष है वनारो भी विशेष महत्व है। यो पेड़ कम पानी में भी जीवित रहे।

0: है और पशुओं के लिए चारों लोग वास्ते छाया और भूमि री उर्वरता प्रदान करे है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में आज भी लोग अणि वृक्ष ने परिवार सदस्य की तरह संरक्षित राखी रखा है।
1: हाँ जी बात है साहब। ये देखो केवल पेड़ लगानो ही पर्याप्त नहीं है बल्कि वनडो संरक्षण भी वतरो ही जरूरी है। कई बार आप ही देखा कि अभियान चले और अभियान रे दौरान आप ही जो पौधा लगावा वनारी अगर आप ही पूरे सही समय पे देखभाल नहीं करा तो भी सूख जावे। और अणिज वास्ते जरूरी है कि हर एक व्यक्ति जो भी पौधों लगाई रो है वनडी सिंचाई और सुरक्षा रो पूरा ध्यान विने खुद ने ही राखनो है।
0: सही बात है साहब, सही बात कह रहा हो कि पेड़ लगावा में तो खूब सारा लगाई देवे लोग, वृक्षारोपण करी ना करी फोटो भी खींचाई देवे, लेकिन वनडी संरक्षण वनडो पाचो नहीं वेवे तो वो पेड़ खत्म वे जावे। देखो आपा स्कूल या सामाजिक संस्था या ग्राम पंचायत वे वणा ने वृक्षारोपण रे वास्ते आप लोगों ने जागरूक करना चाहवे, और अगर हर व्यक्ति अपना जीवन में कम उकम एक पेड़ लगाए वनडी देखभाल करवारो संकल्प लेवे तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मोटो परिवर्तन वे सके। और अगर बात करना देखो अपना माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वना भी आपने एक बार मन री बात में यह बात की है कि एक पेड़ आपने माँ रे नाम पे लगावनो है, तो यह बात आपने ध्यान रखनी है कि कम से कम आपने जीवन काल में एक वृक्ष तो लगावा ही लगावा।
1: हाँ जी बात है अनुश्री भाई साहब। देखो अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण दिन भी आवे जैसे कभी आपने जन्मदिन आवे कभी आपने घर में टावर जन्म लेवे बहुत खुशी रा मौका नरे सारा आवे। और ऐसा खुशी रा मौका पे आप ही अगर एक पेड़ लगेदा और वंडी देखभाल करता रेवा तो वो यादगार जो है अपनी वणी दिन रहते वंडी यादा जुड़ जावे और हाते हाते देखो अपने जीवन में वो रही रही ने खुशियाँ फैलातो रेवे है साहब।
0: बिल्कुल भाई साहब, कुल मिले यो कह सका कि जो वृक्ष है वो केवल प्रकृति की शोभा नहीं है बल्कि जीवन का रक्षक है। तो वृक्षारोपण संरक्षण के माध्यम आप आवा वाली पीढ़िया ने स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण दे सका। हाँ
1: हाँ जी बात है साहब। भाई देखो ऐसो है कि अपनी जिम्मेदारी है कि आप ही खुशियाँ फैलावा और खुशियाँ फैलावा अंडे वास्ते आप ही भी अटू कार्यक्रम रे महीने बढ़िया बढ़िया सा गीत हुणावा और खुशियाँ फैलावा। हाँ सा
0: बिल्कुल सा। और देखो आप वृक्ष री बात करी रहा और तावड़ा री बात करी रहा कि वृक्ष अगर आप रोपी रहा तो बढ़िया है, और अगर वृक्ष नहीं रोपिया तो पछे तो देखो जनान तावड़ो पड़ेला तो आप यो इसके वाला कि तावड़ो मंदरो पड़ जा।
1: हाँ साहब भाई तो होना ही था सो बढ़िया सो एक और गीत।
0: बिल्कुल सा।

0: मिक्सर में नाकिन वन में चीनी और गुड़ मिलन अच्छी तरह पीस लेवा। हाँ
1: हाँ सा, और वंडे बाद वंडे महीने कालो नमक भुने तो को जीरो और थोड़ी सी पुदीना री पत्तियां डाल देने, और जरूरत वे तो ठंडो पानी और मिलाई लेनो। तो ये देखो और अच्छी तरह बनाने हिलाई ने गोल बनाई लेनो। और अगर चावा तो अंडे महीने बर्फरा टुकड़ा भी डाल सका, तो बनियो कहिए कि आम पन्नो जो है ठंडो ठंडो और स्वादिष्ट बन जाएगा सा।
0: बिल्कुल भाई साहब। और देखो अणी आम पन्ना ने बनावा, और एक तरीको और भी है कि अगर आप केरिया ने उबालनो नहीं चाहो तो वनारा छोटा छोटा टुकड़ा करीन पानी डालीन आप वनान मिक्सर में बढ़िया पीस सको हो, और वटा बाद वनाने छानी लेवो, और वनी मीने आप चासनी मिलाइन, अगर वनी मीने चासनी मिलाइन रख देवा तो वना आप आगे भी आप 5-6 महीना तक वने वापरी सका। हाँ
1: हाँ सा, तो भाई देखो यो आम पन्नो जो है स्वाद में भी घणो बढ़िया वेगा, और अपनी जो यूँ कहवा कि अटारी जो प्रकृति है आणी प्रकृति रे हिसाब अपने लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक वेगा सा।
0: बिल्कुल भाई साहब। और देखो बाता करवारो जीव तो घणो ही चावे है कि आपा आवा हाथ यूं लागे कि बात करिए ही जावा जावा ही नहीं, पण एक समय सीमा वेवे हर कार्यक्रम री। और अगर आप रेडिया पे बैठा हाँ तो अट्टे तो समय री पाबंदी ऐसी वेवे कि एक मिनट भी आपा ऊपर नहीं निकाल सका। तो देखो अबे आपने घड़ी आड़ी देखा तो आपने चालवारो टाइम वे गयो, तो चाला सा
1: हाँ सा,
0: राम राम सा।
1: राम सा।

0: हमारी सभी सखियों का अपना पसंदीदा कार्यक्रम सहेली यारी बाड़ी अभी उन्होंने सुना। आप बने हुए हैं आकाशवाणी उदयपुर के साथ मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:45 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम अब से बस कुछ ही पलों में।
1: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर हम उपस्थित हैं और सबसे पहले आप सुनेंगे उदित नारायण की आवाज़ में ये गीत फिल्म जहर से।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी कसे क्लिक में, अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

फिल्म संगीत में अभी आपने सुने कुछ नए तराने, नए फिल्मों के तराने। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 2:10 हुए हैं। अब बातें विकास चर्चा की। आज विकास चर्चा का विषय है अटल पेंशन योजना।

विकास चर्चा में आज हम बात करेंगे अटल पेंशन योजना के कुछ मुख्य बिंदुओं पर। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बेहद लोकप्रिय सामाजिक सुरक्षा ये योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के नागरिकों को बुढ़ापे में या वरिष्ठ जब वो नागरिक हो जाते हैं उस आयु में नियमित आय प्रदान करना है। इस योजना को हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा वित्तीय वर्ष 2030-31 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 1000 से लेकर 5000 रुपए तक प्रति माह की गारंटीड न्यूनतम पेंशन योजना रखी गई है।

अटल पेंशन योजना के लिए जो मुख्य योग्यता और नियम रखे गए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। अटल पेंशन योजना में खाता खुलवाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए। आयु सीमा आवेदन के लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बैंक खाता आवेदक के पास किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक एक्टिव बचत खाता या सेविंग्स अकाउंट होना अनिवार्य है जो आधार से लिंक हो। अक्टूबर 2022 के नए नियमों के तहत कोई भी व्यक्ति जो आयकर दाता या इनकम टैक्स पेयर है वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। योजना के तहत कम से कम 20 वर्ष तक योगदान करना आवश्यक है, यानी 60 वर्ष की आयु होने तक। योजना के जो प्रमुख लाभ है वो भी 3 स्तरीय सुरक्षा के रूप में है। 60 वर्ष के बाद सदस्य को जीवन भर मासिक पेंशन इस योजना के तहत मिलती रहेगी। सदस्य की मृत्यु के बाद उसके पति या पत्नी को समान पेंशन मिलती रहेगी, और अगर दोनों की ही मृत्यु के बाद पूरा जमा फंड नॉमिनी को एकमुश्त वापस कर दिया जाएगा। ऑटो डेबिट सुविधा, पेंशन का प्रीमियम आपके बैंक खाते से मासिक, तिमाही या छमाही आधार पर अपने आप कट जाएगी। इस योजना में किए गए निवेश पर आयकर की धारा 80 CCD 1B के तहत अतिरिक्त टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है।

उदाहरण के तौर पर अगर आपके जुड़ने की उम्र 18 वर्ष है तो आपको अपने 42 वर्ष की उम्र तक जमा करना है। मासिक प्रीमियम सबसे कम दर पे 210 रुपये रखी गई है और 60 वर्ष के होने के बाद आपको पेंशन के रूप में 5000 रुपये

0: प्राप्त होंगे। और अगर हम लें उदाहरण के तौर पर 25 वर्ष की अगर आपकी उम्र है तो आपको 35 साल तक जमा करना होगा एक मुश्त के रूप में, जिसमें आपको 336 रुपये मासिक प्रीमियम के रूप में मिल सकते हैं। और उस प्रीमियम के बाद में आपके जमा करने के बाद 60 वर्ष के बाद जो आपको पेंशन मिलती रहेगी वो होगी 5000 रुपये प्रति माह। आवेदन कैसे करना है? आवेदन की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार है। ऑफलाइन विधि, आप अपने नज़दीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस की शाखा में जाकर APY आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अपने साथ आधार कार्ड और बैंक पासबुक की कॉपी होना ज़रूरी है। ऑनलाइन विधि के माध्यम से आप नेट बैंकिंग अगर आप करते हैं तो बैंक के मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग पोर्टल के जरिए सीधे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। विकास चर्चा में आज आपने सुनी अटल पेंशन योजना के बारे में कुछ प्रमुख बिंदु। आकाशवाणी उदयपुर है ये, और अब चलेंगे हम आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप सुनेंगे समाचार कुछ ही पलों में।
1: मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार। और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लू का येलो अलर्ट जारी किया। IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्यूल फ्रॉस्टडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारे संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
2: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
1: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
3: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी

0: का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद हैं। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशनल लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि, सतत राष्ट्र विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
3: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इंफॉर्मेशन कंट्रोल
4: ऑपरेशन

0: सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझकर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
1: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया, ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रूपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रूपये है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रूपये और डीजल 94.08 रूपये प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रूपये और डीजल की 96.07 रूपये दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रूपये और डीजल की 96.11 रूपये प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
2: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
3: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहां हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई।

0: अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451 जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण परिवारों और किसान भाई बहनों के लिए जानकारियों के साथ राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम कृषि जगत।
2: राम राम अनुश्री भाईसा।
3: राम राम उपासना भाईसा। राम राम।
2: कृषि जगत कार्यक्रम होनवा वाला सगलाई जना ने भी आपण हो राम राम, राम, राम सा। भाई कार्यक्रम रे महीने जानकारियां रे हाते बढ़िया बढ़िया सा गीत है तो कार्यक्रम री शुरुआत करा और सबों पहली जानकारी करावा कौशल योजनाओं आत्मनिर्भरता कणी तरीका आवे है साहब।
3: बढ़िया जानकारी लेने आया सा भाई सा। देखो कौशल विकास जो है एक आदमी ने आत्मनिर्भर बना वाली दिशा में सब महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि कोई भी मनक अगर अपना महीने मौजूद कुशलता और योग्यता और हुनर ने अच्छी तरह बढ़ावे और वणी कुशलता ने रोजगार के लिए काम में लेवे तो वो निश्चित रूप आत्मनिर्भर बन सके है और आत्मनिर्भर बनवा रहे साथ साथ सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी बहुत सारा लाभ लावे है।
2: हाँ सा देखो अणी योजना रो प्रमुख पहलुआरी बात करा तो अणी में सबो पहलो जो पहल है वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वह निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर आप रोजगार और स्वरोजगार नया अवसर पाई सको हो सा।
3: बिल्कुल। और यह योजना है जो केवल आत्मविश्वास से नहीं बढ़ावे बल्कि आर्थिक रूप भी मजबूत बनाए सफलता और रास्तों खोले है और अणियों कही है कि एक व्यक्ति जो है आत्मनिर्भर बन जावे और आत्मनिर्भरता बनेऊ कही है बन आर्थिक स्वतंत्रता भी आवे है।
2: हाँ सा देखो आर्थिक स्वतंत्रता आवा पे आदमी जो है वो अपनी आवश्यकता सभी चीजा खरीद सके है अपने व्यवसाय ने बढ़ावा लिए पूंजी लगाई सके या पछे कोई नयो व्यवसाय भी शुरू कर सके है।
3: बिल्कुल भाई साहब। देखो कौशल विकास योजना में जो प्रशिक्षण दियो जावे है वणियो प्रशिक्षण प्राप्त करवा वाला ने यो लाभ मिले है कि वन्ने कंपनियां में जो दूसरी कंपनी आवे वन्ने वन्ने प्राथमिकता दी जावे नौकरी में वन्ने पहलो अवसर दियो जावे और वन्ने अच्छा वेतन भी वन्ने दिया जावे है।
2: हाँ सा और देखो कौशल योजना में नई तकनीका और आधुनिक कार्य प्रणाली जानकारी भी दी जावे है। कौशल विकास के लिए सरकारी तरफ जी भी योजना चलाई जा रही है जिस तरह की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना है और स्वयं सहायता समूह है तो कि जो भी भाई लाभ लेना चाहे और अपना हुनर ने आगे बढ़ाना चाहे भी अपना कहीं भी नज़दीकी कौशल केंद्र पर जाने अपनी रुचि के अनुसार वो कोर्स रो चयन कर सके और वो कुशलता प्राप्त कर सके है सा।
3: बिल्कुल सा। और देखो आप यह भी बात के वहाँ कि अपन कार्यक्रम जो सुनी रहा है वणा ने अंडी जानकारी मिली है लेकिन अगर आसपास में कोई है जणा ने अंडी जानकारी की जरूरत है तो आप किसान भाई बहना ने ये राय दे वहाँ कि वो अणी योजना के बारे में अपना दूसरा जो परिचित है या अपने आसपास का लोग है वणा ने भी अणी जानकारी करावे ताकि वे भी अंडो लाभ उठाई सकें।
2: हाँ सा देखो भाई आप ही कहवा कि जियो और जीने दो रोग सिद्धांत जो है अगर वो आप ही अपनावांगा तो आप ही भी खुश रहवांगा और दूसरा जना भी खुश रह सकेगा।
3: बिल्कुल।
2: और आप ही यदि खुश रहेंगा यदि आपने अड़े भड़े वाला खुश रहेगा तो अणिज वास्ते अपनी पूरी कोशिश या वेणी चाहे कि आप ही भी खुश रहा और दूसरा भी खुश रहे और अणिज वास्ते अपने कार्यक्रम रे महीने भी आप

0: फसल प्रबंधन और नई तकनीक ने मुफ्त में या पछे बहुत कम दाम पे प्रशिक्षण मिल जावे है।
1: हाँ सर, कुल मिला ही नहीं यूँ कह सका कि FPO किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अंडी मदद हूँ किसान भाई जो भी कम लागत में ही उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक और मशीनरी खरीद सके है और सीधा बाजार तक वनारी पहुँच भी जावे। और FPO जो है वो बैंक को लोन भी दी देवे, वणी जटे FPO है वटे वणाने लोन आसानी मिल जावे। और सरकार री जी बहुत सारी तरह तरह री सब्सिडियाँ हैं और योजना है, वनारो लाभ भी मिलते तो जावे है सा।
0: बिल्कुल भाई साहब, तो आपने यही सही है कि FPO का लाभ आप आपने किसान भाई ने बताया। हाँ, तो वे भी अगर आपने आसपास एक संगठन बने ने FPO तैयार करे तो बनाने फ़ायदो मिलेला। जो किसान भाई छोटा किसान भाई है बनाने आने बारे में जानकारी नहीं है तो वे भी अनेरो संगठन बनाई सके और अनेर सब अनेर जो जो भी लाभ है ये लाभ उठाई सके। और देखो भाई साहब, आप कार्यक्रम में आवा हाँ तो आपने कार्यक्रम में जानकारी रे साथ साथ आप किसान भाइया ने अपना श्रोतावा ने मनोरंजन रो लाभ भी देवा। हाँ
1: हाँ
0: तो
1: सर
0: आप के वो तो अब एक बढ़िया सो गीत और सुनाई दा सा।
1: बिल्कुल हुणावा सा।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: ओके सैलरी, आओ नहीं झुमके
2: ना, पहले बचत,
1: पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: तो अनुश्री भाई साहब, देखो अतरी बढ़िया सी जानकारी आपकी दीदी, गीत हुनायो ना हते हते संदेश भी हुनाई दीदो, सान पाछा जानकारी देवाई यहां सा।
6: बिल्कुल सा, आपां लावाई जानकारी रो खजानो, आपां एक पिटारो भरीन लावा हां जानकारी। तो अबे देखो, गर्मी गणी पड़ी रही है भाई साहब, और आपाने जो किसान भाई है वणा ने आपां बतावा कि गर्मी में गहरी जुताई करवा रो कई फायदो वे सके है।
5: हां सा, भाई देखो गर्मी रा दना में अगर जुताई

0: बीमारियां नियंत्रण भी सके, क्योंकि मिट्टी जो है वाने उथल पुथल करवाऊँ जो है कि जतरा भी रोग रहा कीटाणु वे भी नष्ट हो जावे है।
1: और देखो अंडला लारे गहरी जुताइयों खरपतवार प्रबंधन भी वे है। खरपतवार प्रबंधन और खरपतवारों कई है कि जो लोग अपने कई के अपनी जो फसल है वह बढ़िया वे सके
0: हाँ
1: हैं।
0: सा देखो आणियों कही है कि मिट्टी वेरा स्वास्थ्य में भी सुधार वेवे है और जल संचयन क्षमता में भी बढ़ोतरी वेवे है।
1: बिल्कुल भाई साहब, देखो गहरी जुताई करा तो आपने जो पौधा ने आगे आवा वाला टाइम में ने अगर पौधा बोई रहा तो वना महीने भी जल अच्छी तरह उपजावेला। और जो पौधा आप गहरा बोवा, क्योंकि गहरी जुताई करा तो आप कही है कि बढ़िया पौधा बोई, जो पौधा बोवा वना महीने आप बढ़िया जल दे सका।
0: हाँ
1: हाँ
0: अच्छी बात है सा। और हाते हाते देखो वना में पोषण तत्व जो है वी भी वना ने पूरी तरह मिल सकेगा और भूमि री जो उर्वरा शक्ति है उपजाऊपन है वो भी बढ़तो जाएगा सा। और अबे देखो अपने किसान भाई ने आप यो भी बताई था कि भाई आ वाला समय में गर्मी खूब तेज पड़वा वाली है, 25 तारीख को लीने 2 तारीख तक तो नौ तपा आवा वालो है सा। तो भाई गहरी जुताई तो करनी हुए तो अब आर कर लो या पछे पछे नौ तपा जदि आवे वधी तो नीच करनी है, वधी तो आपने खुदरो बचाव करनो है सा।
1: बिल्कुल सा, बचाव करनो है और गर्मी से रहनो है।
0: हाँ सा। और अबे कार्यक्रम महीने आप किसान भाई ने एक और गीत होना सा।
1: बिल्कुल सुनावा।

0: कृषि जगत। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर इस समय दिन के 3 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओरपो, आइसलैंड के प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टोन फ्रॉस्टडॉटर और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टोन म्योल फ्रॉस्टडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओरपो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। नॉर्वे से और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता संगीता गोडबोले।
2: नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
1: भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। श्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। और ब्यौरा रोम में मौजूद हमारे संवाददाता सुपर्णा भाटिया से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
1: रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे किउल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट के लिए 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि यह प्रोजेक्ट हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर की क्षमता को बढ़ाएगा। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए भी 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को भी मंजूरी दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजे हैं, हमारे सांध्यकालीन प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा की शुरुआत में हमारे युवा श्रोता सुनेंगे अपना प्रिय दैनिक कार्यक्रम युववाणी। इसका प्रसारण हमारे FM रेडियो लेक सिटी चैनल पर भी किया जाएगा।

0: गुड इवनिंग दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो युवाणी और मैं हूं आपके साथ निकिता और मेरे साथ है
1: हर्षित।
0: आज के शो में हम बात करेंगे विज्ञान की दुनिया के एक अनोखे रहस्य की, जानेंगे इतिहास के कुछ खास पन्ने, सुनेंगे मनोरंजन और खेल जगत के ताज़ा अपडेट्स और

0: एक कप चाय सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि भारत की पहचान है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों के साथ शाम की बातें या फिर देर रात की पढ़ाई, हर जगह चाय मौजूद होती है।
1: जी हाँ, और आज का विषय है उभरता भारत और भारतीय चाय उद्योग।
0: भारत दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक देशों में शामिल है। हर साल भारत में लगभग 1.3 बिलियन किलो से ज्यादा चाय का उत्पादन होता है।
1: और सिर्फ उत्पादन ही नहीं, भारत दुनिया के सबसे बड़े टी कंज्यूमर्स में भी शामिल है। दुनिया की करीब 20% चाय भारत में ही पी जाती है।
0: निकिता, असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी और कांगड़ा की चाय दुनिया भर में मशहूर है। दार्जिलिंग टी को GI टैग भी मिला हुआ है।
1: जी हाँ, यानी कि उसकी गुणवत्ता और पहचान पूरी दुनिया में अलग मानी जाती है। भारत की चाय आज 25 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट की जाती है।
0: अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो इंडियन टी इंडस्ट्री दुनिया के टी ट्रेड में एक मजबूत हिस्सेदारी रखती है। भारत हर साल करोड़ों डॉलर की चाय एक्सपोर्ट करता है।
1: और UK, रूसिया,

0: UAE और ईरान जैसे देशों में इंडियन टी की डिमांड तो लगातार बढ़ती ही जा रही है।
1: लेकिन अब टी इंडस्ट्री सिर्फ पारंपरिक नहीं रही, इसमें स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी का भी बड़ा खेल दिख रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा, आज की युवा पीढ़ी ग्रीन टी, हर्बल टी, ऑर्गेनिक टी और फ्लेवर टी को तेजी से पसंद कर रही है।
1: सोशल मीडिया पर टी कैफेज और टी ब्रांड्स काफी ट्रेंड पर चल रहे हैं, कई युवा अपने टी स्टार्टअप्स की शुरुआत भी कर रहे हैं।
0: हाँ, क्योंकि इसमें कम इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाता है, ये बिजनेस आज करोड़ों के मार्केट में बदल चुका है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का टी मार्केट आने वाले वर्षों में और तेजी से बढ़ने वाला है।
1: डिजिटल इंडिया का असर इस इंडस्ट्री पर भी साफ दिखाई देता है, अब लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अलग अलग तरह की चाय खरीद रहे हैं।
0: यानी कि अब मेड इन इंडिया टी सीधे विदेशों तक पहुंच रही है, इंडियन ब्रांड्स इंटरनेशनल मार्केट में अपनी मजबूत पहचान भी बना रहे हैं।
1: टी इंडस्ट्री रोजगार का भी बड़ा स्रोत है, लाखों लोग सीधे और परोक्ष रूप से इससे जुड़े हुए हैं।
0: और हर्षित, सबसे खास बात यह है कि टी गार्डन्स में महिलाओं की भागीदारी काफी ज्यादा है, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है।
1: बिल्कुल, लेकिन इंडस्ट्री के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है, क्लाइमेट चेंज का असर चाय की खेती पर लगातार पड़ रहा है।
0: जी हाँ, बढ़ता तापमान और बदलता मौसम टी प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों को बड़ी तेजी से प्रभावित करता है।
1: इसलिए निकिता, अब ऑर्गेनिक फार्मिंग और सस्टेनेबल टेक्निक्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है,
0: और साथ ही मॉडर्न प्रोसेसिंग और इको फ्रेंडली पैकेजिंग जैसी तकनीकों का भी इस्तेमाल बढ़ रहा है।
1: अब टी टूरिज्म भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, लोग आसाम और दार्जिलिंग के टी गार्डन्स में भी पहुंच रहे हैं।
0: यानी कि चाय अब सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि कल्चर, टूरिज्म और लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है।
1: तो दोस्तों, एक छोटी सी चाय की प्याली के पीछे छिपी है मेहनत, रोजगार, इनोवेशन और भारत की बढ़ती ताकत,
0: और यही दिखाता है कि कैसे पारंपरिक उद्योग भी नई सोच और युवाओं की ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकते हैं।

0: कल्पना कीजिए, अरबों प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष के किसी अंधेरे कोने से अचानक एक तेज रेडियो सिग्नल आता है, इतना शक्तिशाली कि कुछ मिली सेकेंड में ही सूरज कई दिनों में जितनी ऊर्जा छोड़ता है उतनी ऊर्जा पैदा हो जाती है और फिर सब कुछ शांत।
1: ना कोई चेतावनी, ना कोई तय समय, बस एक रहस्यमय सिग्नल जिसे वैज्ञानिक कहते हैं फास्ट रेडियो बर्स्ट यानी FRB।
0: FRB अंतरिक्ष से आने वाले बेहद तेज रेडियो सिग्नल्स होते हैं। इनकी अवधि सिर्फ कुछ मिली सेकेंड की होती है, लेकिन इनकी ताकत वैज्ञानिकों को आज भी हैरान कर देती है।
1: और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिग्नल्स हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से नहीं बल्कि करोड़ों और अरबों प्रकाश वर्ष दूर दूसरी गैलेक्सी से आते हैं।
0: फास्ट रेडियो बर्स्ट पहली बार साल 2007 में खोजा गया। वैज्ञानिकों को जो पुराने टेलीस्कोप डेटा का अध्ययन कर रहे थे तभी उन्हें एक सिग्नल, काफी अजीब सा सिग्नल मिला।
1: शुरुआत में कई लोगों को लगा कि शायद ये कोई तकनीकी गड़बड़ी है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे और सिग्नल मिलने लगे और रहस्य और गहराता गया।
0: अब सवाल ये था आखिर ये सिग्नल्स आते कहाँ से हैं?
1: कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मैग्नेटार्स से आते हैं। मैग्नेट्स ऐसे न्यूरोन स्टार्स होते हैं जिनका मैग्नेटिक फील्ड बेहद शक्तिशाली होता है।
0: जब इन मैग्नेटार्स में जबरदस्त ऊर्जा का विस्फोट होता है तब शायद फास्ट रेडियो बर्स्ट पैदा होते हैं।
1: हर्षित, लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। कुछ साइंटिस्ट ब्लैक होल्स, सुपरनोवा एक्सप्लोजन और कोलाइडिंग स्टार्स को भी इसका कारण मानते हैं।
0: और इंटरनेट की दुनिया में तो कुछ लोग इसे एलियन कम्युनिकेशन तक मान चुके हैं।
1: हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन इतना ज़रूर है कि FRBs आज भी स्पेस साइंस की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है।
0: निकिता, साल 2020 में वैज्ञानिकों ने पहली बार हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में एक मैग्नेटार से FRB जैसा सिग्नल रिकॉर्ड किया।
1: जी हाँ, इस खोज ने मैग्नेटार थ्योरी को काफ़ी मजबूत कर दिया, लेकिन अभी भी हर FRB को पूरी तरह समझा नहीं जा सका।
0: कुछ FRBs सिर्फ एक बार दिखाई देते हैं और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं।
1: वही कुछ FRBs बार बार लौटते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है FRB 121102।
0: ये रिपीटिंग फास्ट रेडियो बर्स्ट बार बार एक ही जगह से सिग्नल भेजता है और यही बात वैज्ञानिकों को सबसे ज़्यादा हैरान करती है।
1: क्योंकि अगर सिग्नल बार बार आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसका सोर्स अभी भी एक्टिव है।
0: आज दुनिया के बड़े बड़े रेडियो टेलीस्कोप जैसे काइम और फास्ट टेलीस्कोप लगातार आसमान पर नज़र बनाए हुए हैं
1: ताकि इन रहस्यमय सिग्नल्स को समझा जा सके और शायद

0: ब्रह्मांड के किसी बड़े रहस्य से पर्दा उठ सके।
1: निकिता, एफआरबी सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं है, ये वैज्ञानिकों के लिए यूनिवर्स को समझने का एक नया तरीका भी बन चुका है।
0: जी हाँ, और इन सिग्नल्स की मदद से साइंटिस्ट गैलेक्सीज के बीच मौजूद इनविजिबल मैटर और स्पेस मैग्नेटिक फील्ड्स का अध्ययन कर रहे हैं।
1: यानी कुछ मिलीसेकंड्स के ये सिग्नल्स हमें अरबों साल पुराने ब्रह्मांड की कहानी सुना रहे हैं।
0: और शायद आने वाले समय में यही फास्ट रेडियो बर्स्ट स्पेस साइंस की सबसे बड़ी खोजों में से एक साबित हो।
1: ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ बाकी है जानने के लिए,
0: और शायद अगला सिग्नल किसी एक नए रहस्य का दरवाजा खोल दे।
1: दोस्तों, ये बात थी हमारी कुछ मिस्ट्रीज के बारे में। अगली बार हम आपको ऐसी ही और कुछ मिस्ट्रीज के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: बादलों को चीरती हुई बर्फ से ढकी गगनचुंबी चोटियां, घने रहस्यमय जंगल और एक ऐसा सन्नाटा जिसे सिर्फ हवा की सरसराहट तोड़ती है। ट्रैवल डायरीज में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के एक ऐसे स्वर्ग में जिससे यूनेस्को ने अपनी मिक्स्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिक्किम की शान खानचेनजंगा नेशनल पार्क की।
1: बिल्कुल हर्षित, और इस पार्क का नाम दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट खानचेनजंगा कंचनजंगा के नाम पर रखा गया है। यह सिर्फ एक नेशनल पार्क नहीं है बल्कि एडवेंचर के शौकीनों, नेचर लवर्स और फोटोग्राफर्स के लिए एक जीती जागती जन्नत है।
0: सोचिए निकिता, लगभग 1784 स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह पार्क अपने अंदर कितने गहरे राज छुपाए बैठा है। यहाँ एक तरफ आपको दुनिया के सबसे ऊंचे ग्लेशियर्स में से एक जेमू ग्लेशियर्स देखने को मिलता है, तो दूसरी तरफ यहाँ की अजीबोगरीब वाइल्ड लाइफ आपको हैरान कर देगी।
1: वाइल्ड लाइफ से याद आया हर्षित, क्या आप जानते हैं कि यहाँ कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो दुनिया में और कहीं आसानी से नहीं दिखते हैं, जैसे कि बेहद खूबसूरत और शर्मिला स्नो लेपर्ड, हिमालयन तहर, कस्तूरी हिरन और यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण रेड पांडा।
0: वाओ, रेड पांडा! रेड पांडा को उनके प्राकृतिक घर में देखना अपने आप में एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता। वैसे निकिता, जो लोग बर्ड वॉचिंग के शौकीन हैं उनके लिए भी यह जगह किसी खजाने से कम नहीं है। ब्लड फीजेंट और सेटी ट्रेगोपिन जैसे दुर्लभ पक्षी यहाँ की वादियों में चहचहाते हुए मिल जाते हैं।
1: जी हाँ, यह तो हुई इस पार्क की खूबसूरती की बात, लेकिन जो दोस्त इस वक्त हमें सुन रहे हैं उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यह आ रहा होगा कि यार सब ठीक है पर इस खूबसूरत जगह तक हम पहुँचेंगे कैसे।
0: बिल्कुल निकिता, बिल्कुल इस सही पॉइंट, ये बिल्कुल एकदम सही पॉइंट रहा। तो चलिए हमारे लिसनर्स की मुश्किल आसान कर देते हैं और यह बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन यानी यहाँ तक पहुँचने के रास्ते कैसे हैं। अगर आप हवाई सफ़र चुनना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है सिक्किम का अपना पायगोंग एयरपोर्ट यानी जो गैंगटोक के पास है, लेकिन वहाँ के लिए फ़्लाइट्स थोड़ी सीमित होती है।
1: हाँ, इसीलिए सबसे बेस्ट और सबसे बड़ा कमर्शियल एयरपोर्ट है पश्चिम बंगाल का बागडोरा एयरपोर्ट। बागडोरा देश के लगभग सभी बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। बागडोरा से खानचेनजंगा नेशनल पार्क के एंट्री पॉइंट की दूरी लगभग 160 से 170 किलोमीटर ही है, जिसे आप टैक्सी या जीप से खूबसूरत वादियों को देखते हुए तय कर सकते हैं।
0: और जो लोग ट्रेन से सफर का मजा लेना चाहते हैं उनके लिए सबसे पास का बड़ा रेलवे स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी। एनजेपी स्टेशन भी देश के हर कोने से कनेक्टेड है। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको गैंगटोक या सीधे युकसोम के लिए प्राइवेट और शेयर टैक्सीज आराम से मिल जाती है।
1: और हर्षित, जो लोग रोड ट्रिप के दीवाने हैं उनके लिए सिलीगुड़ी या गंगटोक से यहाँ का सफर एक एडवेंचर जैसा है। नेशनल हाईवे 10 से होते हुए तिस्ता नदी के किनारे किनारे गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और है। बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि सिक्किम के घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाने का अच्छा अनुभव होना बेहद जरूरी है।
0: बिल्कुल सही बात, लेकिन निकिता, खानचेनजंगा नेशनल पार्क की एक और खास बात है जो इसे बाकी पार्कों से अलग बनाती है। यहाँ गाड़ी से घूमना मना है, यहाँ की असली खूबसूरती को महसूस करने के लिए आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती है।
1: जी हाँ, सच्चा एडवेंचर तो यही है ना हर्षित। यहाँ का सबसे मशहूर ट्रैक है गोएचाला ट्रैक। इस ट्रैक पर चलते हुए जब सुबह सुबह कंचनजंगा चोटी पर सूरज की पहली किरण पड़ती है और वो सोने की तरह चमकती है, उस नज़ारे को शब्दों में बयां करना नामुमकिन है।
0: सुनकर ये रोंगटे खड़े हुए, लेकिन हमारे उन दोस्तों के लिए एक ज़रूरी सलाह जो यहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि यह एक प्रोटेक्टेड आदेश है और बॉर्डर के पास है, तो इसलिए यहाँ जाने के लिए इनवर ट्रैवल परमिट या स्पेशल परमिट की ज़रूरत होती है जिसे आप गैंगटोक या युकसोम से आसानी से बनवा सकते हैं।
1: बिल्कुल, और यहाँ जाने का सबसे सही समय है मार्च से मई के बीच, जब यहाँ के जंगलों में रोडोडेंड्रोन के फूल खिलते हैं और पूरा जंगल लाल गुलाबी रंगों से भर जाता है। या फिर आप सितंबर से नवंबर के बीच भी जा सकते हैं जब आसमान एकदम साफ होता है और चोटियाँ शीशे की तरह चमकती है।
0: तो देर किस बात की है दोस्तों, अपना बैग पैक कीजिए, टिकट बुक कराइए और निकल पड़िए प्रकृति के इस महारहस्य और अपनी आंखों से देखने के लिए।
1: जी हाँ, खानचेनजंगा की ये वादियाँ आपका इंतजार कर रही है। ट्रैवल डायरीज के आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे किसी नई जगह, नए रास्तों और नई कहानियों के

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों अब बात करेंगे एक ऐसे अभिनेता की जिन्होंने साबित किया कि अगर जुनून सच्चा हो तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं होता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की।
4: दोस्तों सोचिए एक ऐसा लड़का जो यूपी के छोटे से शहर

0: मुजफ्फरनगर के एक साधारण किसान परिवार से आता है। ना फिल्मी बैकग्राउंड, ना कोई गॉडफादर, बस एक सपना था अभिनेता बनने का।
1: जी हाँ, लेकिन ये सफर इतना भी आसान नहीं था। मुंबई आने के बाद नवाजुद्दीन को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। कभी छोटा सा रोल, कभी बैकग्राउंड आर्टिस्ट, तो कभी कई सालों तक तो उन्हें काम भी नहीं मिला। उन्होंने थिएटर किया, NST यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से सीखा और खुद को हर दिन निखारा।
0: कई बार ऐसा भी हुआ जब उनके पास किराया देने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और फिर आया वो वक्त जब उनकी मेहनत रंग लाई।
1: जी हाँ, फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में फैजल खान का किरदार हो या द लंच बॉक्स में एक साधारण लेकिन दिल को छू लेने वाला रोल, नवाजुद्दीन ने हर किरदार को जिंदा कर दिया।
0: दोस्तों, आज नवाजुद्दीन सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वो उन लाखों लोगों की उम्मीद है जो छोटे शहरों से बड़े सपने लेकर आते हैं।
1: जी हाँ, और उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि सफलता जल्दी नहीं मिलती, लेकिन अगर मेहनत सच्ची हो तो वो ज़रूर मिलती है।
0: और दोस्तों, अब उनके अवार्ड्स की बात करते हैं। बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर गैंग्स ऑफ वासेपुर केन्स फिल्म फेस्टिवल में उनकी फिल्म को भी काफ़ी सराहना मिली।
1: तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी कोई सपना है तो उसे छोड़िए मत, क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कहानी कहती है, सपने वही सच होते हैं जिनके पीछे इंसान पूरी ईमानदारी से लग जाता है। इसी के साथ अब बात करेंगे एंड्रिया पिर्लो की। ये नाम है फुटबॉल की दुनिया का, फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े एलिगेंट और इंटेलिजेंट मिडफील्डर में से एक। उनका काम स्टाइल, पिन पॉइंट पासिंग और लेजेंडरी फ्री किक उन्हें द आर्किटेक्ट का निकनेम दिलाते हैं।
0: इनका जन्म 19 मई 1979 को इटली में हुआ। जो पिर्ली हैं, पिर्ली की पोजीशन की बात करें तो ये डीप लाइंग फ्लेम केयर मिडिल ऑर्डर में थी।
1: पिर्लो ने अपने करियर में यूरोप के टॉप क्लब्स के लिए खेला, एसी मिलान दो बार, UEFA चैंपियंस लीग भी जीती। ये टीम के सबसे इम्पोर्टेंट खिलाड़ी में से एक रहे और जुवेंटस की बात करें तो लगातार चार बार सीरी ए खिताब 2011 से 15 तक जीता। इन्होंने अपनी टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
0: इंटरनेशनल करियर की बात करें तो इटली इंटरनेशनल में टीम में इनके लिए खुले और 2006 के फीफा वर्ल्ड कप में जीतने वाली टीम का ये हिस्सा रही हैं।
1: और पिर्लो की खास बात यह थी कि वे तेज दौड़ने या ताकत से नहीं बल्कि अपने दिमाग से खेलते थे। लंबी और सटीक पासिंग, शानदार फ्री किक्स, पूरे मैच की गति को कंट्रोल करना, उनका हर पास ऐसा लगता था जैसे कोई कलाकार पेंटिंग बना रहा हो। रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने खेलना नहीं छोड़ा, वह जुवेंटस के मैनेजर बने। एंड्रिया पिर्लो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि फुटबॉल के कलाकार थे। उनका शांत स्वभाव और शानदार खेल आज भी लाखों फैंस के दिलों में बसा हुआ है।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक भारी और गूंजती हुई आवाज, मंच पर बिखरी हुई रहस्यमय रोशनी और एक ऐसा अभिनय जो देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दे। जब भी भारतीय थिएटर का इतिहास लिखा जाएगा, यह नाम सबसे ऊपर सुनहरे अक्षरों में चमकेगा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अभिनय और निर्देशन के असली जादूगर शंभु मित्र की।
4: जी हाँ, शंभु मित्रा सिर्फ एक एक्टर या डायरेक्टर नहीं थे हर्षित, वे तो अपने आप में थिएटर की एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी थे। उन्होंने हमारे पुराने रंगमंच को पारंपरिक ढर्रे से बाहर निकाला और उसे एकदम मॉडर्न, रियलिस्टिक और मीनिंगफुल बनाया। तो चलिए आज उनके इस पूरे जादुई सफर को हम करीब से जानते हैं।
3: इस सफर की शुरुआत होती है 22 अगस्त 1915 से, जब कलकत्ता में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही उन्हें लिटरेचर और एक्टिंग का बेहद शौक था, लेकिन उनका असली सफर 1940 के दशक में शुरू हुआ। यही वो दौर है जब वे इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से जुड़े हुए थे और रंगमंच की दुनिया को हिलाकर रख दिया।
4: बिल्कुल, और इप्टा के साथ मिलकर साल 1944 में आया उनका नाटक नबन्ना, जो कि इतिहास का मील का पत्थर बन गया। यह नाटक बंगाल के भीषण अकाल पर आधारित था, जिसे उन्होंने बीजों

0: भट्टाचार्य के साथ मिलकर डायरेक्ट किया था। इस नाटक ने राजा रानियों की काल्पनिक कहानियों को छोड़कर आम जनता के असली दर्द को स्टेज पर दिखाया।
1: इस कामयाबी के बाद साल 1948 में उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अपना खुद का ग्रुप बनाया जिसका नाम था बहरूपा। इस ग्रुप के बैनर तले उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के नाटक रक्तकरबी और राजा जैसे कई आइकॉनिक नाटक किए जो आज भी मिसाल बन माने जाते हैं।
0: जी हाँ, और सोफोकल्स का नाटक राजा एडिपस तो कोई भूल ही नहीं सकता, जिसमें उनके अभिनय को देखकर लोग दंग रह गए। शंभू जी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे स्टेज पर लाइटिंग और साउंड का जैसा साइकोलॉजिकल इस्तेमाल करते थे, वो उस दौर के हिसाब से बहुत एडवांस और जादुई था।
1: दोस्तों, थिएटर में तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं था, लेकिन सिनेमा की दुनिया में भी उन्होंने काफ़ी काम किया था जो अमर हो गया। राज कपूर साहब की सबसे बेहतरीन और आइकॉनिक फिल्मों में से एक है जागते रहो, जो कि 1956 में आई थी, और बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मास्टरपीस फिल्म का डायरेक्शन शंभू मित्र ने ही अमित मित्रा के साथ मिलकर किया था।
0: यह फिल्म उस दौर के समाज के पाखंड और लालच पर एक बहुत बड़ा और करारा तमाचा थी। इसके बंगाली वर्जन एक दिन रात्रि का डायरेक्शन भी शंभू जी ने ही संभाला था। सिर्फ यही नहीं, साल 1946 की मशहूर फिल्म धरती के लाल की स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही लिखी थी और उसमें एक बेहतरीन किरदार भी निभाया था।
1: इतने शानदार और अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें देश और दुनिया से बहुत सारे प्रतिष्ठित अवार्ड मिले। शुरुआत हुई साल 1957 में, जब उनकी फिल्म जागते रहो को कॉलर वी वेरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिव में सर्वोच्च सम्मान यानी क्रिस ग्लोब मिला, जो इंटरनेशनल लेवल पर भारत के लिए बहुत गर्व की बात थी।
0: और इसके बाद साल 1959 में उन्हें थिएटर डायरेक्शन के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया, और फिर साल 1970 में भारत सरकार ने उनकी कला का सम्मान करते हुए उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया।
1: अवार्ड्स का सिलसिला यही नहीं रुकता। साल 1976 में तो उन्हें एशिया का नोबल पुरस्कार कहा जाने वाला रेवन मैग्सेस अवार्ड भी मिला। यह सम्मान उन्हें पब्लिक सर्विस और कम्युनिटी लीडरशिप के क्षेत्र में कला के माध्यम से बड़ा बदलाव लाने के लिए दिया गया था।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। और आगे चलकर साल 1983 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप दी गई, जो इस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने भी उन्हें प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान से नवाजा। इतने सारे बड़े सम्मान मिलने के बाद भी वे हमेशा एक बेहद सादे और जमीन से जुड़े रंग कर्मी बने रहे।
1: उनका हमेशा से मानना था कि कला सिर्फ पैसों के लिए नहीं या मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि समाज को गहरी नींद से जगाने के लिए है। 19 मई 1997 को शंभू जी इस दुनिया से शारीरिक रूप से चले गए, लेकिन अपनी बेमिसाल कला और नाटकों के जरिए वे आज भी हमारे बीच पूरी तरह अमर है।
0: तब तक के लिए रेडियो सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।

जाने किसकी तलाश उनकी आंखों में थी, आरजू के मुसाफिर भटकते रहे। जितने भी वो चले उतने ही बिछ गए राह में फासले। ख्वाब मंजिल थे और मंजिलें ख्वाब थीं, रास्तों से निकलते रहे रास्ते, जाने किस वास्ते आरजू के मुसाफिर भटकते रहे।

कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे, आओ चल के बीते दिनों की छाओं में बैठें, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें कोई फूल खिला था, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी आवाज की चांदी खनक उठी थी, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी की नजरों के मोती बरसे थे। कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे।

0: सच तो ये है कसूर अपना है, चांद को छूने की तमन्ना की, आसमां को जमीन पर मांगा, फूल चाहा कि पत्थरों पे खिले, कांटों में की तलाश खुशबू की, आरजू की कि आग ठंडक दे, बर्फ में ढूंढते रहे गर्मी, ख्वाब जो देखा चाह सच हो जाए, इसकी हमको सजा तो मिलनी थी, सच तो ये है हुसूर अपना है।
1: दोस्तों, बात करते हैं आकाशवाणी के हाइलाइट्स की। आकाशवाणी के 90 ईयर्स कंप्लीट होने के उपलक्ष में आकाशवाणी उदयपुर द्वारा एक वॉकेथॉन ऑर्गेनाइज की गई। इस वॉकेथॉन का स्टार्टिंग पॉइंट था फतेह सागर ओवरफ्लो पॉइंट, जहां पर सुबह के 6 बजे से सभी पार्टिसिपेंट्स का आना शुरू हो गया था। आकाशवाणी उदयपुर द्वारा दी गई कैप्स टी शर्ट्स में सभी पार्टिसिपेंट्स वॉकेथॉन के लिए काफ़ी एक्साइटेड नजर आए। 7 बजते ही डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल और क्लस्टर हेड श्री राजेंद्र नाहर जी और असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियर श्री निर्मल पुरोहित जी ने पार्टिसिपेंट्स को हरी झंडी दिखाकर इस वॉकेथॉन की शुरुआत की। वॉकेथॉन का सफर FS ओवर यानी फतेह सागर ओवरफ्लो पॉइंट से शुरू होकर UIT सर्कल, उपकार स्टोर्स और पंचवटी सर्कल से होते हुए आकाशवाणी उदयपुर पहुंचा। यहां पहुंचते ही सभी पार्टिसिपेंट्स खुल के ढोल के संगीत पर नाचे और उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने पार्टिसिपेंट्स को एड्रेस किया और उसके बाद कुछ पार्टिसिपेंट्स ने वॉकेथॉन पर अपने विचार साझा किए। लास्ट में सभी पार्टिसिपेंट्स ने ब्रेकफास्ट का लुफ्त उठाया और वॉकेथॉन को सफल बनाने में अहम योगदान दिया।

0: दोस्तों अब नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन 1961 में गोवा मुक्ति आंदोलन के दौरान पुर्तगाली शासन के खिलाफ संघर्ष तेज हुआ और 1961 में आज ही के दिन असम के सिलचर में भाषा आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में 11 लोगों की मौत हुई। इसे आज भाषा शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है।
1: दोस्तों 1971 में भारत ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम उठाए। 2010 में भारत ने राइट टू एजुकेशन यानी RTE कानून को लागू करने की दिशा में काफ़ी सारे कदम आगे बढ़ाए।
0: अब जानते हैं स्पोर्ट्स के बारे में, तो सबसे पहले बात करेंगे IPL की। IPL के कल के मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया और प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली। वहीं आज का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच शाम 7 बजे शुरू होने जा रहा है।
1: दोस्तों अब आपको कुछ जानकारी देते हैं शेयर मार्केट के बारे में। निफ्टी 50 आज 31.95 अंक गिरकर लगभग 23,618 पर बंद हुआ था और सेंसेक्स आज 114 अंक टूटकर करीब 75,201 पर बंद हुआ। भारतीय रुपया भी कमज़ोर हो रहा है और $1 की कीमत लगभग 96.53 रही। आज बाज़ार में शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन बाद में बैंकिंग शेयरों में गिरावट और डॉलर के मुकाबले रुपये की कमज़ोरी के कारण मार्केट लाल निशान में बंद हुआ। IT सेक्टर में थोड़ी मजबूती देखने को भी मिली।

0: दोस्तों अब वक्त हो चला है आपको गुड बाय कहने का। मैं थी आपकी दोस्त निकिता और मेरे साथ
1: हर्षित।
0: नमस्कार।

0: हमारे युवा श्रोता अभी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। इसका प्रसारण हमारे मीडियम वेव चैनल आकाशवाणी उदयपुर के साथ साथ एफएम रेडियो लेक सिटी पर भी हो रहा था, एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय आप आकाशवाणी उदयपुर के साथ हैं। संध्या के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड के प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टन फ्रॉस्टर

0: राइटी फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओरपो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीन दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर मंडल अगले पांच वर्षों में देश का सबसे विकसित आदिवासी मंडल बनकर उभरेगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आय को 6 गुना बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने अगले पांच वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए संयुक्त रूप से एक वैज्ञानिक रूपरेखा तैयार की है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानूनों मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के लंबित मामलों की संख्या 1 अप्रैल 2024 में लगभग 5,000 से घटकर इस वर्ष 31 मार्च तक 2,600 रह गई है। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ व्हाट्सएप अपनाने की योजना बना रहा है ताकि संपर्क सुविधा को बढ़ाया जा सके। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी नेताओं अरविंद केजरीवाल और अन्य से न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में आपराधिक अवमानना मामले में उनका पक्ष पूछा है। मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज से भी उनका पक्ष पूछा गया है। न्यायालय की पीठ ने इन नेताओं को मामले के संबंध में नोटिस जारी किया। उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ। निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,618 पर आ गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। उधर जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोताओं, संध्या के ढलते सूरज के साथ आप हैं इस समय आकाशवाणी उदयपुर के साथ। आइए मन को सुकून देने वाले कुछ फिल्मी नगमों से आपका दिल बहलाते हैं। कार्यक्रम फिल्म संगीत का।
1: ये गुलशन, फूल, कलियां, बहार, वादियां, ये मौसम, खेत, हरियाली, पहाड़, बर्फ, ये कायनात, कुछ भी नहीं,
2: कुछ भी नहीं,
1: कुछ भी नहीं। गरन में वो नहीं,
2: वो है कौन?
3: कप्तान साहब, उस लड़की का कोई नाम तो होगा।
1: नाम?

जिसके आने से रंगों में डूब गई है शाम, सोच रहा हूँ किससे पूछूं उसका नाम। ये गाना फिल्म दिल जले से हमने लिया। कुमार सानू की आवाज, अनु मलिक का संगीत और जावेद अख्तर की बोल। ये बात तो सच है कि किसी पे दिल आ जाए तो फिर उससे खूबसूरत कोई और नहीं लगता। यही है सौंदर्य के मापदंड, देखने वाले की आंखों में बसते हैं।

0: जिस देश में गंगा रहता है, ये था फिल्म का नाम जिसका गाना अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी सुखविंदर सिंह और साधना सरगम की। इसका संगीत तैयार किया आनंद राज आनंद ने और देव कोहली और प्रवीण भारद्वाज के गीत थे इस फिल्म में। आप हैं इस समय आकाशवाणी उदयपुर के साथ, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: मिस सीमा
2: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा,
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

इस बेचैनी में भी एक अलग तरह का चैन होता है। ये बेकरारी एक अलग तरह का करार देने वाली होती है जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है। ये गाना हमने लिया था फिल्म दामिनी से। साधना सरगम का साथ इस गाने में दिया कुमार सानू ने, बोल समीर के और संगीत नदीम श्रवण का। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आप तक पहुंचाते हैं। इस गर्मी वाली शाम में कुछ सुकून भरे लम्हे इस संगीत के माध्यम से। फिल्म का नाम है

फिल्म का नाम है चमेली, आवाज सुनिधि चौहान की, इरशाद कामिल के बोल हैं और संदेश शांडिल्य का संगीत।

0: मन को लगाम लगा के रखिएगा। फिल्म संगीत का अगला जो कार्यक्रम होगा वो होगा रात्रि 8 बजे से, उसके पहले संध्या 7 बजे होगा ग्रामीण परिवारों के लिए कार्यक्रम खेती और घर। फिलहाल फिल्म संगीत का ये वाला कार्यक्रम अभी यही खत्म होता है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर आप इस समय हैं आकाशवाणी उदयपुर के साथ। संध्या के 6:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में जयपुर अजमेर केंद्र से हम जुड़ेंगे। सबसे पहले सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:40 पर सुनिएगा जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों से राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने से अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इस वर्ष अगस्त तक 500 ई बसें चलाई जाएंगी और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। अगले एक सप्ताह तक सीमावर्ती क्षेत्रों में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान।

0: समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान को देश भर में महत्वपूर्ण खनिजों का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करेंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी की उपस्थिति में आज मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में राज्य को कोयले की निर्बाध आपूर्ति, तकनीक आधारित खनन और खनिजों के बेहतर दोहन सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार के दूरदर्शी नीतियों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण देश के खनन क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों और निवेश अनुकूल वातावरण से राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। श्री रेड्डी ने बताया कि रक्षा, सौर ऊर्जा और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इन खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने की क्षमता राजस्थान में है। उन्होंने खनन से जुड़े मुद्दों के समयबद्ध समाधान पर जोर दिया, जिससे प्रदेश में निवेश और उत्पादन बढ़ सके। बैठक में मुख्यमंत्री ने बाड़मेर और बालोतरा के सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध रेयर अर्थ एलिमेंट्स के दोहन और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण से राज्य में चिन्हित साइट्स की जानकारी साझा करने को कहा, ताकि इस भूमि का उपयोग अन्य कामों में नहीं किया जा सके। बैठक में कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के संयुक्त उपक्रम तथा सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक और राज्यस्तरीय समन्वयक मनोज गुप्ता ने प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद राज्य के सभी टर्मिनल, डिपो और रिटेल आउटलेट पर पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। श्री गुप्ता ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस की आपूर्ति भी पूरी तरह से सामान्य है। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, HPCL सहित सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों प्रमुख तेल कंपनियां मिलकर वितरण व्यवस्था पर लगातार नजर रख रही हैं। उन्होंने आमजन से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने, घबराकर अनावश्यक खरीदारी नहीं करने और ईंधन की उपलब्धता के लिए केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने का आग्रह किया। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने आज झुंझुनू प्रवास के दौरान लोगों से ईंधन बचाने की अपील की।
1: ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी रीतें होती हैं और निश्चित रूप से मुझे ये बात कहनी, प्रधानमंत्री ने जैसा कहा कि हमें तेल बचाना है तो ये अर्थव्यवस्था की दृष्टि से राष्ट्र हित में, तो आपने देखा प्रधानमंत्री ने कितने कपड़े काफिले में कम किया है। हमारा भी बहुत बड़ा काफिला हो सकता था, लेकिन मैंने भी काफिले में मना किया, हमारी ज्यादा गाड़ियां साथ नहीं गए थे। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि राष्ट्र हित में है और ये सारी चीजें तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होती है, लेकिन फिर भी कंट्रोल करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने और राज्य सरकार ने उसके ऊपर निश्चित रूप से काम किया और आगे भी निश्चित रूप से इसका अच्छा देखने को।
0: इस बीच आज सवाई माधोपुर जिले में 11 पेट्रोल पंप्स और मापतौल में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद आज उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान एक पेट्रोल पंप पर 5 लीटर की आपूर्ति पर 30 मिलीमीटर पेट्रोल कम देना पाया गया, जिसके बाद संबंधित पंप के नोजल सीज कर दिए गए। विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए हैं और 4,500 रुपये का जुर्माना भी वसूला है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने एकजुट राष्ट्रीय कार्रवाई के तौर पर सैन्य सटीकता, सूचना नियंत्रण और कूटनीतिक संदेश तथा आर्थिक संकल्प को एक साथ पेश किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने गहराई तक वार करते हुए आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया, एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को तोड़ दिया। सेना प्रमुख ने यह बात नई दिल्ली में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि की ओर सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए कही। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारत को शांति सुनिश्चित करने, विकास की गति को तेज करने और वैश्विक माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए अपनी राष्ट्रीय शक्ति का इस्तेमाल रणनीतिक सूझबूझ के साथ करना चाहिए। सर्वोच्च

0: न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से लावारिस श्वानों को हटाने के अपने पहले के आदेश में किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में बदलाव की मांग करने वाली याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। अदालत ने अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अस्पतालों, स्कूलों और अन्य स्थानों पर कुत्तों के हमलों की घटनाओं को बेहद चिंताजनक बताया गया है। इनका हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि निर्देशों की पालन नहीं करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इस वर्ष अगस्त तक 500 ई बसें चलाई जाएंगी। इन बसों के सुचारू संचालन के लिए राज्य में 9 अत्याधुनिक ई बस डिपो बनाए जा रहे हैं। आज जयपुर में शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने ई परिवहन सेवाओं और बसों की खरीद प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सुरक्षित और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए ई बसों के संचालन से प्रदूषण में कमी आएगी और आमजन को सुगम परिवहन सुविधाएं मिलेंगी। बैठक में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में भी विस्तार करने का फैसला किया गया। बेड़े में अगस्त माह तक 144 ब्लू लाइन बसें और 30 एसी स्लीपर बसें शामिल की जाएंगी, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने आज पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर में स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल सुविधा, प्रतीक्षालय और पार्किंग सहित विभिन्न यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। डीआरएम ने अधिकारियों को सुरक्षा मानकों और रेल संरक्षा मापदंडों को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। कोटा के मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की सुरक्षा और निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए अब सौर ऊर्जा आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। वन विभाग की इस पहल से घने जंगलों में स्थित प्राकृतिक आवास और कृत्रिम जल स्रोतों पर बिना किसी रुकावट के 24 घंटे नजर रखी जा सकेगी। गर्मी के मौसम में वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शिकारियों की गतिविधियों को रोकने में यह प्रणाली बेहतर कारगर साबित होगी। अधिकारियों ने बताया कि इन अत्याधुनिक कैमरों की मदद से वन्य जीवों के व्यवहार का वैज्ञानिक डेटा जुटाने और उनकी टेरिटरी की निगरानी करने में भी मदद मिलेगी। और अब मौसम। प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों शेखावाटी क्षेत्र और कोटा संभाग में भीषण लू का प्रकोप जारी है। इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है और तेज गर्म हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ चित्तौड़गढ़ सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले एक सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहने और गर्मी में बढ़ोतरी की संभावना है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पारा 44 से 46 डिग्री के बीच रहने का पूर्वानुमान है।
1: आगामी एक सप्ताह के दौरान अभी भी मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। खासकर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अभी भी अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच जारी रहेगा। यानी वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा और दक्षिण पूर्वी भागों में यानी कोटा संभाग और भरतपुर में भी देखेंगे तो कहीं कहीं तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा अगले 3-4 दिन तेज धूल भरी हवाओं का भी प्रभाव राज्य के कुछ भागों में रहेगा। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक की
0: तेज गर्मी और हीट वेव को देखते हुए प्रदेश के सभी चिकित्सालयों और स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के

साथ ही ओआरएस कॉर्नर भी बनाए गए हैं। साथ ही लोगों को स्वास्थ्य विभाग की टीमों की ओर से जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से गर्मी से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। लोगों से दोपहर के समय अनावश्यक बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। वहीं विभिन्न स्थानों पर सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। ये मैच जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आईपीएल मैच को देखते हुए जयपुर में यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। कई मार्गों पर यातायात डायवर्ट रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों से राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इस वर्ष अगस्त तक 500 ई बसें चलाई जाएंगी। और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। अगले एक सप्ताह तक सीमावर्ती क्षेत्रों में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख अजय सिंह शक्तावत ने तैयार किया है। चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी में हम बात करेंगे हालिया खबरों की, प्रशासनिक और सामाजिक गतिविधियों की, ग्राम रथ अभियान की और भीषण गर्मी और लू से बचाव के उपायों की। चिट्ठी की शुरुआत में सबसे पहले बात क्षेत्र की प्रमुख फसल के बारे में। चित्तौड़गढ़ देश के प्रमुख अफीम उत्पादक जिलों में शामिल है। यहाँ केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN की ओर से जारी विशेष लाइसेंसों के जरिए सीमित और वैध तरीके से अफीम खेती की जाती है। हर साल किसानों की ओर से उत्पादित गुणवत्ता के आधार पर सरकारी खरीद और तुलाई केंद्र बनाए जाते हैं। खासतौर पर यहाँ दो तरीकों से अफीम पैदा की जाती है, गम और CPS पद्धति। गम पद्धति में पौधों में चीरा लगाकर अफीम का दूध निकाला और सुखाया जाता है। वहीं सेंट्रलाइज्ड पॉपी स्ट्रॉ CPS पद्धति में बिना चीरा लगाए सीधे डोडों की तुलाई की जाती है। हाल ही में जिले में अफीम तुलाई प्रक्रिया पूरी हुई। नारकोटिक्स विभाग ने 3 खंडों के 756 गांवों के करीब 16,500 किसानों से अफीम खरीदी। इनसे लगभग 1,35,000 किलो अफीम खरीदी गई। इसके लिए पहले और दूसरे खंड के किसानों को लगभग 15,67,00,000 रुपए का भुगतान किया गया। वहीं तीसरे खंड के करीब 1,000 काश्तकारों को 5,61,00,000 रुपए का भुगतान हुआ। CPS पद्धति के तहत 684 गांवों के 4,800 किसानों को 5,59,00,000 रुपए का भुगतान किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। इसमें बजट घोषणाओं, फ्लैगशिप योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कामों की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने पीने के पानी की समुचित आपूर्ति को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। उन्होंने जिले की शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की पर्याप्त और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बंद पड़े आरओ की जल्द मरम्मत करवाने, हैंडपंपों के पास सोखता खड्डे बनवाने और जल संरक्षण के कामों में तेजी लाने की बात कही। जिला कलेक्टर ने भीषण गर्मी की दौर को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रचंड गर्मी के समय लू और तापघात की आशंका रहती है। ऐसे में बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और श्रमिक वर्गों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिला कलेक्टर ने कहा कि सरदर्द, तेज बुखार होने की स्थिति में तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें। उन्होंने आमजन को तरल पदार्थों का अधिक सेवन करने की सलाह दी। जिला कलेक्टर ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की। 25 मई से शुरू होने वाले इस अभियान में जल संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और जल स्रोतों के पुनर्जीवन तथा जन जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि शहरों के साथ ही गांव ढाणियों तक जल संरक्षण का संदेश पहुंचाया जाए और इस मुहिम में लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाए। आदिवासी अंचलों में सरकारी योजनाओं की पहुंच मजबूत करने और

0: जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन दिनों देश भर में जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जा रहा है। इसे जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को जनजातीय समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए संवेदनशील प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय की समस्याओं को प्राथमिकता से सुना जाए। जिले के 7 ब्लॉकों की 76 ग्राम पंचायतों के 158 आदिवासी बहुल गांवों में ये अभियान चलाया जा रहा है। इसमें आदि सेवा केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पिछले दिनों चित्तौड़गढ़ प्रवास पर रहे। उन्होंने बेगू के जोगणिया माता मंदिर में पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। श्री बिरला ने राजपूत समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में भी शिरकत की। उन्होंने सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इससे फिजूल खर्ची पर लगाम लगती है, साथ ही एकता और भाईचारे की भावना में भी मजबूती आती है। जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से करीब 91,000 से अधिक प्रकरण निस्तारित किए गए। इनमें लगभग 11 करोड़ रुपए के अवार्ड पारित किए गए। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी कहो राज्य सरकार री साफ नीतियां राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स रा खास केंद्र रातौर सामी आ रहे है। सुप्रीम कोर्ट टीका लगायोड़ा या नसबंदी करोड़ा लावारिस कुत्ता ने आश्रय स्थला माए राखण रा पहली रा हुक्म ने पाछो लेवण नट्यो। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ने पर्यावरण अनुकूल बनावन सारू इस साल अगस्त महीना ताई 500 ई बसा चलाई जावेला। और राज्य रा घणखर हलका में जबरदस्त गर्मी और लू रो असर। आवता एक सप्ताह ताई सरहदी हलका में पारो 44-46 डिग्री सेल्सियस बीच रहवण री शंका। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रदेश ने क्रिटिकल मिनरल्स रो खास केंद्र बनावन सारू केंद्र और राज्य सरकार मिलर काम करेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी री मौजूदगी माए आज जयपुर माए मुख्यमंत्री रा रहवास माथे राखी जी आला दर्जारी मीटिंग माए ओ फैसलो करी चियो। मीटिंग माए मुख्यमंत्री बाड़मेर और बालोतरा रा सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में मौजूद रेयर अर्थ एलिमेंट्स से जुड़ियो नोडल अधिकारी नियुक्त करन रा हुकम दीना। वे भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण रा अहलकाराओं राज्य में पिछाण करीजी ठोड़ा ने जानकारी देवन बाबत कहो। इ मौके केंद्रीय मंत्री रेड्डी कहो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री आगे री सोच नीतियां और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रे कारण देश माए जमी हेटों खनिज निकालवा रा हलका माए घणो सुधार फियो है। वे कहो के राज्य सरकार री साफ नीतियां और निवेश रे अनुकूल वातावरण राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स रा खास केंद्र रा तौर सामी आ रियो है। श्री रेड्डी कहो के राजस्थान माए रक्षा सूरज री रोशनी बिजली बनावण और मोटर गाड़ियां बनावण रा हलका माए आ खनिजां री बढ़ती मांग पूरी करण रो बूतो है। वे प्रदेश माए निवेश और उत्पादन बढ़ावण सारू खनन नु जुड़िया मुद्दा रा टेम सर निपटारा माथे जोर दीनो। तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रा कार्यकारी निदेशक और राज्य स्तर रा समन्वयक मनोज गुप्ता प्रदेश माए पेट्रोल डीजल और रसोई गैस री लगातार पूर्ति रो भरोसो दिरायो है। वे बतायो कि दुनिया माए मौजूदा हालात रे कारण उपजी अनिश्चितता रे बावजूद राज्य रा सगला टर्मिनल डिपो और पेट्रोल पंप मथ तेल रो पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। श्री गुप्ता कहो कि घरेलू ग्राहकां सारू रसोई गैस री पूर्ति सामान्य है। वह जनताओं अफवाहां माथे ध्यान नी देवन री अरज कीनी। इन बीच पहली वाला केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी आज झुंझुनू जिला माए जनताओं ईंधन बचावन री अपील कीनी।
2: ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी रीतें होती है और निश्चित रूप से मुझे ये बात कहनी, प्रधानमंत्री ने जैसा कहा कि हमें पेड़ बचाना है।

0: अर्थव्यवस्था की दृष्टि से और राष्ट्र हित में तो आपने देखा प्रधानमंत्री ने कितने कपड़े काफिले में कम किया है। हमारा भी बहुत बड़ा काफिला हो सकता था लेकिन मैंने भी काफिले में मना किया, हमारी ज्यादा गाड़ियां साथ नहीं गई। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि राष्ट्र हित में है और ये सारी चीजें तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होती है, लेकिन फिर भी कंट्रोल करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने और राज्य सरकार ने उसके ऊपर निश्चित रूप से काम किया और आगे भी निश्चित रूप से इसका अच्छा देखने को।
1: इन बीच सवाई माधोपुर जिला में पेट्रोल पंप माथे कम तेल देवन री शिकायतों पाछे नापतौल विभाग रा जांच दल जिला रा 11 पेट्रोल पंप री जांच कर जरूरी कार्रवाई कीनी। आ पेट्रोल पंप माथे कम तेल देवनो मिल्या पाछे संबंधित पंप रा नोजल सीज कर दिया चिया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहो है कि ऑपरेशन सिंदूर रा तहत एकजुट राष्ट्रीय कार्रवाई रा तौरों फौजी सटीकता सूचना नियंत्रण कूटनीतिक संकेत और माली संकल्प ने एक साग पेश करी चिया। सेना प्रमुख नई दिल्ली में सुरक्षा से समृद्धि की ओर सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर मुद्दा माथे राखी जा सेमिनार में बोल रहा है। वह कहो कि ऑपरेशन सिंदूर रा तहत गहराई ताई वार करता थका आतंकी ढांचा ने नेस्तनाबूद करिया पाछे सोच समझ हर एक मकसद रा तहत रोकी चियो। जनरल द्विवेदी कहो कि शांति तय करण विकास री रफ्तार तेज करण और दुनिया माए माहौल ने आपरा पक्ष माए करण सारू देश री ताकत रो इस्तेमाल रणनीतिक सूझबूझ सागे करनो चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जनता री आवन जावन री ठोणाऊ लावारिस कुत्ता ने हटावन रा लारला हुकम माय किणी भांत री राहत देवन नटक्यो है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ री सदारत वाली पीठ अदालत रा ई बारा माय नवंबर 2025 माय दिया जया हुकम माय बदलाव री मांग करण वाली अर्जियां आज खारिज कर दीनी। अदालत एड़ा कुत्ता ने आश्रय स्थला माय राखण रा हुकम दीना। अस्पतालां स्कूलां और दूजी ठोणा कुत्ता कानियों हमला करण रा वाकया रो हवालो देता थका पीठ कहो कि हुकम री पालना नी करण वाला अहलकारा ने अदालत री अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई रो सामो करनो पड़ सके है। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर रो सुन रहा हो। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ने बेहतर और पर्यावरण अनुकूल बनावन सारू अगस्त महीना ताई 500 ई बसा चलावन रो प्रस्ताव है। इसारू मुख्य सचिव वी श्रीनिवास री सदारत माय आज जयपुर माय समीक्षा मीटिंग राखी जी जिनमाय ई परिवहन सेवावा और बसा री खरीदी रा काम री प्रगति रे बारा माय चर्चा करी जी। मीटिंग माय बताई जियो के अगस्त महीना ताई राजस्थान रोडवेज ने 144 ब्लू लाइन बसा और 30 एसी स्लीपर बसा मुहैया करावन री ई जानकारी दी री जी। बसा चलावन सारू प्रदेश माय 9 नुआ ई बस डिपो ई बनाया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे माय जोधपुर मंडल रा रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन रो दौरो कर और व्यवस्थावां री जानकारी लीनी। वह स्टेशन परिसर माय साफ सफाई री व्यवस्था पीवन रा पानी प्रतीक्षालय और गाड़ियां उभीकरण रिठौड़ समेत मुसाफिरा ने मुहैया कराया जावन वाला न्यारा न्यारा सुबीतां रो बारीकी जायजो लीनो। DRM पाली मारवाड़ जोधपुर बीच विंडो ट्रेलिंग री जांच कर और न्यारा न्यारा टेसना माथे हिफाजत जुड़िया कामा रोई जायजो लीनो। कोटारा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व माय जनावरा री हिफाजत और निगरानी तंत्र ने मजबूत बनावन सारू अब सूरज री रोशनी मड़ी बिजलियों चालन वाला CCTV कैमरा लगाया जा रहा है। इनु घना जंगला माय पानी रा कुदरती और इंसान कानियों बनाई जा स्रोता माथे 24 घंटा बिना रुकावट नजर राखी जा सकेला। अहलकारा ने मुजब आ नुआ कैमराओं वन विभाग रा फील्ड स्टाफ ने जनावरा रा व्यवहार जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी हासिल करण और हमारा इलाका री निगरानी माय मदद मिलेला। प्रदेश री महिलावां ने गर्भाशय रा कैंसर री बीमारियों बचावन सारू चलाया जा रहा टीका लगावन रा अभियान रा तहत कोटपुतली बहरोड़ जिला रा मेड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माथे हाल ताई 65 टाबरियां रे टीका लगा दिया चिया है। अहलकारा ने मुजब गांव हलका माए स्वास्थ्य विभाग रे टीमा लगातार काम

कर रही है। इनु बत्ती तादाद माए टावरिया रे टीका लगाया जा रहा है। जयपुर जिला माए हर महीनारी 5 और 20 तारीख ने आयुष्मान आरोग्य मंदिरा रा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों री ओरों सवारे 8 और 9 बजे ताई ग्राम पंचायता और सरकारी स्कूलों माए खास शिविर लगाया जावेला। आम आए जनता ने योग प्राणायाम और कसरत रो अभ्यास करायो जावेला। इसा गई ANM और आशा कार्यकर्ताओं री मदद मौसमी बीमारियों बचाओ सही खान पान और साफ सफाई रा बारा माए जानकारी दी जावेला। अरब मौसम प्रदेश माए पाकिस्तान नु लागते सरहद कने रा हलका शेखावाटी हलका और कोटा संभाग माए जबरदस्त लू बाज रही है। आ हलका माए पारो 45 डिग्री सेल्सियस ने पार कर क्यो है। मौसम विभाग रे मुजब 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान सागर चित्तौड़गढ़ सब 19 ठौर रहो। इनके अलावा श्रीगंगानगर माए 45.9, अलवर माए 45.8,

0: और कोटा संभाग में जबरदस्त लू बाज रही है। आ हल्का माए पारो 45 डिग्री सेल्सियस ने पार कर क्यों है। मौसम विभाग ने मुजब 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान सागर चित्तौड़गढ़ सब उन्नी ठौड़ रहे हो। इनके अलावा श्री गंगानगर माए 45.9, अलवर माए 45.8 और पिलानी माए 45.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज करी चियो। राजधानी जयपुर माए आज पारो 43.2 डिग्री सेल्सियस ताई पूग कियो। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि आवता एक सप्ताह माए राज्य रा आतुणी हल्का माए सरहद कने तापमान 44-46 डिग्री सेल्सियस बीचे रहवन रा आसार है। वे बतायो कि आवता 3-4 दिन ताई प्रदेश रा कुछ हल्का माए आंधी चालन री संभावना है।
1: आगामी एक सप्ताह के दौरान अभी भी मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। खासकर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अभी भी अधिकतम तापमान 44-46 डिग्री सेल्सियस के बीच जारी रहेगा। यानी वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में तापमान 42-43 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा और दक्षिण पूर्वी भागों में यानी कोटा संभाग और भरतपुर में भी देखेंगे तो कहीं कहीं तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा अगले 3-4 दिन तेज धूल भरी हवाओं का भी प्रभाव राज्य के कुछ भागों में रहेगा। इस दौरान 20-30 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवाएं भी रिकॉर्ड हो सकती है।
0: तेज गर्मी और लू न ध्यान रखता थका प्रदेश का सगला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र माए खास इंतजाम करी चिया है। अस्पताल माए मरीजा सारू बिस्तर रखने सा गई ORS कॉर्नर ही बनाई चिया है। इस आगे जनता ने गर्मियों बचाव रे बारा माए जानकारी दी जा रही है। न्यारी न्यारी थोड़ा सड़का माथे पानी रो छिड़काव करावन सागे लोगों दोपहरा री भगत जरूरी फेवन री सूरत माई बाहर जावन री अरज करी जा रही है। IPL क्रिकेट होड़ रा तेत आज जयपुर रा सवाई मानसिंह स्टेडियम माई राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स पीछे मुकाबलो फैला। वो मैच अब थोड़ी देर पछे 7:30 बजे शुरू फैला। अंक तालिका माए फिलहाल 5वां नंबर री टीम राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ दौर माए पुगण सारू वो मैच जीतनो जरूरी है जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स अंक तालिका माए आखिरी छोड़ माथे है। आखिर माए खास समाचार एक कर फेर सुन ले रहो। केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी कहो राज्य सरकार री साफ नीतियां राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स रा खास केंद्र रा तौर सामने आ रहे है। सुप्रीम कोर्ट टीका लगायोड़ा या नसबंदी करोड़ा लावारिस कुत्ता ने आश्रय स्थल माए राखन रा पहली रा हुक्म ने पाछो लेवण नट्यो। प्रदेश माए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ने पर्यावरण अनुकूल बनावण सारू ई साल अगस्त महीना ताई 500 ई बसा चलाई जावेला। राज्य रा खणखर हल्का माए जबरदस्त गर्मी और लू रो असर। इंसागई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। संध्या के 7 बजे हैं। हमारे ग्रामीण श्रोता भाई बहन अब सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती और घर।

0: राम राम उपासना भाई सर, राम राम।
1: राम राम नंदू भाई, राम राम।
0: खेती और घर हुणो वाला हंगले किसान भाई बहना ने भी अपनो
1: राम राम सा।
0: देखो उपासना भाई साणी कार्यक्रम में आपी रोज आवा सा और आपने किसान भाई बहना वाते भात भात री जानकारी लेना आवा सा। चाहे देखो नया नया कृषि क्षेत्र में आविष्कार बेहतर है वे वंडी जानकारी भी लावा, समसामयिक मुद्दा पे जानकारी भी लावा। अंडे अलावा देखो कणान कणान अपने स्टूडियो में आप कृषि विशेषज्ञ ने भी बुलावा और हाँ वनों भी बातचीत अपने किसान भाई बहन हुणावा सा।
1: हाँ सा, और हाथे हाथे बढ़िया सा राजस्थानी गीत होना ही ने सबरो मनोरंजन भी करावा। हाँ
0: बिल्कुल आप ठीक ही रहा हो ना। देखो आज सबों पहले अपने कार्यक्रम में आपकी चौपाल री बात करा कि देखो आपने टाइम धीरे धीरे बदल तो जाइ रो है और टाइम बदल तो जाइ रो है तो देखो कृषि रे क्षेत्र में भी देखो नया नया नवाचार वेता जाइ रहा है सा और नया नया आधुनिक तरीका अपनाया जाइ रहा है वणी। देखो कृषि रे क्षेत्र में देखो बहुत सारी सहूलियत भी वेरी है सा और अपनी जो है आय है वणी में भी बढ़ोतरी।

0: एरी है सा।
1: हाँ
0: तो
1: जी बात है
0: आपने
1: सा,
0: किसान भाई बहनों ने आज अना नवाचार के बारे में बतावा सा।
1: हाँ जी बात है सा। देखो समूह पहली तो आप ही बतावा कि कृषि में नवाचारों मतलब कही है। कृषि में नवाचारों मतलब है किसानी ने किसान जो है बना रहे पारंपरिक तरीका में वैज्ञानिक अनुसंधान करनो, नई तकनीक अपनानो और उन्नत प्रबंधन रो उपयोग करनो। जण्यू कही है कि उत्पादन गुणवत्ता बढ़ती जावे और वणारो लाभ भी बढ़तो जावे। और यह आधुनिक जी चुनौतियाँ हैं जिस तरह की कृषि योग्य क्या भूमि है, घटती थकी है और जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा है, ये जी समस्या है अणा सबरो समाधान करनो ही कृषि में नवाचार के बारे
0: बिल्कुल आप
1: सा।
0: ठीक रिया हो। देखो वैज्ञानिक तरीकों अगर आप खेती करा तो आपने किसान भाई बहन रे आय में बढ़ोतरी व्यवसा
1: हाँ
0: और
1: सर,
0: बनी हो गई है कि उत्पादकता में वृद्धि व्यवहार। अभी आप ही जान ही रहा कि सीमित भूमि है, संसाधन भी सीमित है और प्रति एकड़ फसल की पैदावार भी कम है, लेकिन अगर आप नवाचार ने बढ़ाई देवा तो बनी कही है कि कम भूमि में भी आपने उत्पादन ज़्यादा मिल सके। अंडे अलावा देखो बनी कही है कि नई मशीना और सटीक कृषि विधियां रो अगर आप प्रयोग करा, हाउ बीज लावा, खाद लावा, पानी और श्रम की बर्बादी ने रोका और नवाचार का तरीका अपनावा तो अणु किसान री जो लागत है वह भी कम वही जावे
1: हाँ
0: सा।
1: जी बात है सा। और देखो आणी बदलता था का मौसम में, कभी तो सूखो है, कभी बाढ़ आई रही है, असी जो आपदा आई रही है वणारो सामना करवारे वास्ते भी देखो उन्नत और संकर किस्मारो विकास नवाचार माध्यम कियो जावे है सा।
0: बिल्कुल आप ठीक रिया हूँ। देखो आधुनिक सिंचाई पद्धतियाँ जैसे कि ड्रिप है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, अणाउन अपी अपनावा तो देखो अपने पानी की भारी बचत हुए। लारिस देखो आप ही बात करा कि आजकल नवाचार में खेती जा है वन्य जैविक खेती के रूप में बजट कर दी दो है। अंडे अलावा जीरो बजट खेती जो है वन्य भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दियो जा रो है तो अणा सब ने अपनावा तो भी देखो अपनों लाभ ज़्यादा हुए वैसा।
1: हाँ सा। और देखो नवाचार माध्यम न केवल उपज बढ़े है बल्कि मूल्य संवर्धन और फूड प्रोसेसिंग के जरिए किसाना ने वणारी उपज रो बेहतर मूल्य भी मिलते तो जावे है
0: बिल्कुल आप
1: सा।
0: ठीक रिया हो। अब आप ही कुछ नई तकनीकी नवाचार की बात करा तो देखो एक तकनीक है परिशुद्ध कृषि सा और यह
1: हाँ
0: एक आधुनिक कृषि प्रबंधन अवधारणा है जो कि कई एक उपग्रह का डेटा जो है वनडे आधार पर, जीपीएस रे आधार पर, सेंसर रे आधार पर है और अंडे तहत खेत रे हर हिस्सा री मिट्टी री नमी, पोषक तत्वा और तापमान री सटीक स्थिति रो आप आकलन कर सका और वनडे आधार पर आप पानी कतरो चाहिए, उर्वरक कतरो चाहिए वंडो उपयोग कर सका। अणियों कही है कि संसाधना री आपने भारी बचत वेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा सा।
1: हाँ सा। और देखो अणिस तरीकों एक और तकनीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। मण में कहिए कि देखो कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो प्रयोग तेजियों बढ़ रही है। AI संचालित उपकरण और मोबाइल एप्लीकेशन रे जो है वणों खेता में कीट और बीमारियां रे शुरुआती दौर में ही पतो लगाई लियो जावे। और अंडे अलावा मौसम री सटीक जो पूर्वानुमान है वो और मिट्टी रे स्वास्थ्य री जांच भी AI री मदद कर सका। हाँ
0: बिल्कुल
1: सा
0: उपासना वैसा अपने किसान भाई बहनों ने आप ही कहना चाहूँगा कि अंडे अलावा देखो एक नई तकनीक और आजकल उपयोग में लेवा जा रही है जाहे कृषि ड्रोन तकनीक सा। अणी कही है कि ड्रोन कृषि में क्षेत्र में जो है क्रांति आएगी है, बहुत सारा काम जो है आप ही ड्रोन तकनीक को कर सका जैसे कि कीटनाशकों और उर्वरकों रो छिड़काव सा। अणी
1: हाँ
0: कही है कि अपना टाइम भी बचे और जहरीला जितना भी रसायन है वणारे संपर्क में आवा में भी आप ही वंची जावा और अंडे
1: हाँ
0: अलावा ड्रोन अगर अपनी रासायनिक जीवी उर्वरक है और दवाइयाँ है वनडो छिड़काव करा तो पूरा खेत में जो है एक ही का सामान्य तरीकों वनडो छिड़काव भी सके सा। अंडे अलावा ड्रोन देखो आपने पूरा खेतरी जो है आपकी निगरानी भी कर सका सा
1: हाँ
0: और
1: सर
0: फसल रे स्वास्थ्य, नमी, विकास री सटीक जानकारी भी आपकी ले सका
1: हाँ
0: सा।
1: सा। अणि सर को एक और है इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि LOT। ये जो है LOT उपकरण रे माध्यम किसान जो है अपने खेत और उपकरण ने इंटरनेट जोड़ सके है। जिस तरह की खेत में लगे तक सेंसर मिट्टी में नमी कम वेवा पे स्वचालित रूप मोटर पंप चालू कर देवे, जण्यू कहिए बिजली और पानी दोयारी बचत हुई जावे।
0: बिल्कुल उपासना वैसा। अंडे अलावा देखो संरक्षित खेती भी देखो आजकल रो नवो नवाचार है सा। अणि में कही है कि मौसम री अनिश्चितता वंचवारे बात कही है कि किसान भाई बहन पोली हाउस और ग्रीन हाउस जैसी खेती रो नवाचार करे सा और यो सफल भी रियो। अणि कही है कि तापमान है, नमी है, प्रकाश ने आप नियंत्रित कर सका। अंडे अलावा देखो अणि तकनीकों कही है कि बे मौसम सब्जियां यानी कि बड़ी मौसम में बड़ी सब्जियां नहीं वेवे, वणा ने भी आप उगाई सका और फूला ने भी उगाई सका। जणियों कही है कि किसाना ने बाजार में वणा ने बेचिन भारी मुनाफो वेवे सा।
1: हाँ सा। और एक और देखो ऊर्ध्वाधर खेती और हाइड्रोपोनिक्स जो है जो कि शहरी क्षेत्र में ज़्यादा काम में आवे, जटे भूमि की कमी है वटे वर्टिकल फार्मिंग या नवाचार जो है वो वरदान रूप में साबित हुई है। अण में बहुमंजिला इमारत या कम जगह में दीवारा पे फसला उगाई उगाई जावे है। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी तकनीक है जणियू मिट्टी रे बिना सिर्फ पानी और पोषक तत्वारी मदद पौधा उगाया जावे और अणमें 90% तक कम पानी री खपत वेवे है।

0: बिल्कुल उपासना भाई साहब, आपने तो अपने किसान भाई बहनों ने यू इस कहना है कि देखो किसानी में जो है नई नई तकनीक आ रही है, नवाचार वेरा है, अंडो अगर अपने किसानी में प्रयोग आपकी किसान भाई बहन करे तो देखो वना ने लाभ भी ज़्यादा वेगा सा, और लाभ भी ज़्यादा वेगा, घर में आय भी ज़्यादा वेगा, घर रे देखो खुशहाली समृद्धि भी आएगा सा।
1: हाँ जी बात है सा। और अपने कार्यक्रम ने महीने भी आप ही देखो बढ़िया बढ़िया सा गीत होना, इन खुशहाली लावा सा।
0: बिल्कुल सा,
1: हुनावा एक बढ़िया सा गीत
0: हुनावा सा।

0: तो उपासना भाई से यो हुणियो आप ही राजस्थानी लोकगीत
1: हाँ
0: और
1: सर,
0: देखो कार्यक्रम में आप ही आगे बढ़ा तो मौसम री जानकारी जो है अपने किसान भाई बहना वास्ते गणी महत्वपूर्ण व्यवसाय,
1: हाँ
0: क्योंकि
1: जी,
0: देखो आप ही कतरी दान देखा कि मौसम री जानकारी रे अभाव में देखो किसान भाई बहना ने कतरो ही नुकसान कतरी बार झेलनो पड़े।
1: हाँ सर,
0: और अगर किसान भाई बहना ने मौसम री जानकारी पहली समझ जावे तो वनडे आधार पर अपना जितना भी कृषि कार्य है वनारो प्रबंधन कर लेवे तो कतरो ही जो नुकसान वना रहे या फसलारो खराब हो वे तो वे वण्यू भी वंची जावे सा।
1: हाँ जी बात है
0: और अब आप
1: सर,
0: ही मौसम की जानकारी की बात करा तो देखो मौसम विज्ञान विभाग जयपुर प्राप्त सूचना के आधार पर बात करा तो आवा वाला दना में जो है मौसम शुष्क रहवारी संभावना है। हवारी गति की बात करा तो 2-6 किलोमीटर प्रति घंटा रे वेगू दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम चलेगा सा। और अधिकतम तापमान 42-44 डिग्री और न्यूनतम 25-27 डिग्री रहवारी संभावना है। लारे लारे देखो सापेक्ष आर्द्रता की अपनी बात करा तो न्यूनतम 22-34% और अधिकतम जो है 9-12% रहवारी संभावना ऐसा।
1: हाँ सर। तो भाई देखो, आवा वाला दना में जो मौसम बताया है वणी रे आधार पे किसान भाई ने या जानकारी आपकी दीदी है, तो भी ध्यान रखे भी मिट्टी री नमी वणावारे वास्ते पत्तिया रे बीज सूखी घास या फसल रा अवशेष है जो वणारो उपयोग कर लेवे, और गर्म हवाओं बचावारे लिए खेतारी जो सीमा है वहाँ पे विंड ब्रेक स्ट्रिप्स या पचे जूटरी जालियाँ लगाई देवे।
0: बिल्कुल उपासना भाई साहब, अबे आपने गेहूं री फसला में किसान भाई बहन आगे आवा वाला दिना में कई कई कर सके वनडे बारे में बात करा तो देखो अनाज ने जो है भंडारण में रखवा हूँ पहली आपने भंडार घर री अच्छी तरह सफाई करनी है। अनाज ने अच्छी तरह हुकई लेनो है और कूड़ा कचरा ने है आपने जलाई लेनो है या कटे भी दबाई नष्ट कर देनो है। दाणा में जो गहूं री बात करा तो बड़ी में नमी रो प्रतिशत 12% तो ज्यादा नहीं बहनो चाहे। भंडार गृह री जा छत है वंडी दीवार है फर्श है वंडो एक भाग जो है मेलाथियान 50 EC रो 100 भाग पानी में मिलाइन छिड़काव करनो है। यदि पुरानी बोरियां रो अपने किसान भाई बहन प्रयोग कर रहा है तो वना ने एक भाग मेलाथियान और 100 भाग पानी रे घोल में 10 मिनट तक वना बोरिया ने भिगोनी है पचे छाया में सुखावनी और पचे वना बोरिया रो प्रयोग करनो है सा।
1: हाँ सा, देखो भाई मूंग री फसल रे वास्ते भी किसान भाई ने अबार सलाह दी जावे कि अणि टाइम पे जो है मूंग री फसल जो फूल आवा वाला या फल आवारी अवस्था में वे, तो वणी टाइम पे नमी री कमी रे कारण पैदावार घट सके है, तो अणि वास्ते हल्की सिंचाई जरूर कर लेवे, और गर्म मौसम में थ्रिप्स रो प्रयोग बढ़ सके है, अणि वास्ते नियमित रूप निगरानी करता रहे।
0: बिल्कुल, अबे आपी कपास री बात करा तो देखो अणि सप्ताह में किसान कपास री बुआई रे वास्ते खेता ने तैयार कर लेवे और गुणवत्तापूर्ण बीज जो है गणी बढ़िया विश्वसनीय स्त्रोत या दुकानों से लावे सा।
1: हाँ
0: अबे
1: सर,
0: बेल वाली सब्जियां री बात करा तो देखो मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखवा वास्ते फसल ने अपने नियमित रूप हल्की सिंचाई अणि टाइम पे अपना किसान भाई बहन देवे। बेला ने सहारो अणि टाइम पे देनो जरूरी है। फलारी मक्खियां या पाउडरी मिड्यूल री नियमित रूप निगरानी किसान भाई बहन करे और आवश्यकता अनुसार जा भी अनुशंसित कीटनाशक है वंडो छिड़काव भी किसान भाई जरूर करे सा।
1: हाँ सा, देखो जायद मूंगफली में खरपतवार रा प्रकोप ने नियंत्रित करवा रहे वास्ते और उचित पेगिंग रे लिए इंटरकल्चर ऑपरेशन और हाथ गुड़ाई री जरूरत भी वे है सा, और भिंडी री भिंडी में यदि फल रो आकार 5 इंच लंबा वे जावे तो वहाँ री तुड़ाई कर लेवे, और तुड़ाई रे बाद भिंडी री फसल में 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर यूरिया डाल देवे हैं।
0: बिल्कुल उपासना बेसान, अबे आप ही ग्रीष्मकालीन हरा चारा री बात करा तो देखो गर्मिया रे महीना में हरा चारा री जो कमी है वह काफी आम वेवे है। अंडे वाते हरा चारा वाली जितनी भी फसलां हैं जैसे कि ज्वार है बाजरो है मक्का है लोबियो है अना सब री बुआई अणि टाइम पे अपना किसान भाई बहन जरूर करे। लारे लारे देखो अपने पशुपालन री बात करा तो देखो गर्मी रो तेज दौर चाल रो है सा और अणि टाइम में अपना पशु अपने वास्ते गड़ा महत्वपूर्ण वेवे तो वना ने भी छायादार स्थान पे बांधना है। अंडे अलावा देखो गर्म हवाओं मंचावा रे वाते वना ने

0: बोरियां है या दूसरी तरह की व्यवस्था वणा ने करनी है। लारे लारे यो भी ध्यान रखना है कि दिन में 2-3 दान वणा ने ठंडो पानी पिलानो है, अंडे अलावा देखो वणा ने गर्मिया में हपड़ाई भी 2-3 दान सका सा।
1: हाँ अच्छी बात है साहब भाई, देखो अपना ढांडा चौपा सही रहेगा तो आप ही भी सही रहेगा, अपनी खेती बाड़ी भी सही रहेगा साहब।
0: बिल्कुल सा, या तो देखो मौसम की जानकारी और आव वाला टाइम में अपना किसान भाई बहन कशा कशा कृषि संबंधी कार्य करे वंडी जानकारी आप ही दीदी सा, और अब आप ही पाचा अपने किसान भाई बहन ने मनोरंजन की दुनिया में ले चला और हुनावा यो राजस्थानी लोकगीत सा।

0: तो नंदू भाई देखो तो बढ़िया सो गीत हुनायो सा और अब टाइम है कार्यक्रम रे मायने योजना रा बारा में जानकारी देवारो
1: बिल्कुल
0: सा।
1: सा,
0: तो भाई देखो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना री जानकारी आज आप दे ही रहा सा।
1: बिल्कुल सा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करा तो देखो, भारत सरकार द्वारा संचालित यह बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय और किफ़ायती दुर्घटना बीमा योजना है। ऐसा मात्र 20 रुपया प्रति वर्ष में मामूली प्रीमियम देन आपी अणि योजना रो लाभ उठाई सका। यह योजना दुर्घटना में वृद्ध की मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख रुपया तक या आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपया तक रो आपने कवरेज देवे सा।
0: हाँ सा देखो यह योजना समाज रा कमजोर और वंचित वर्गा ने वित्तीय सुरक्षा देवारे वास्ते उद्देश्य शुरू करी गई है और कड़ी भी दुर्घटना री स्थिति में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार ने आर्थिक तंगियों बचावा रे लिए केंद्र सरकार जो है सन 2015 में अणि सामाजिक सुरक्षा योजना री शुरुआत करी ही सा। और यह एक वार्षिक नवीकरणीय और दुर्घटना बीमा पॉलिसी है जने हर साल रिन्यू कियो जावे है।
1: बिल्कुल आप ठीक किरियान। योजना रे मुख्य लाभ और कवरेज री जटे बात करा तो अणि योजना रे तहत मिलवा वाली बीमा राशि दुर्घटना रे प्रकार पर निर्भर करे सा। दुर्घटना में यदि मृत्यु हुई है तो यदि मृत व्यक्ति री दुर्घटना में मृत्यु हुई जावे तो वंडे नामांकित यानी कि वंडो जो भी नॉमिनी व्यक्ति है वन्य या कानूनी वंडो जो भी उत्तराधिकारी है वन्य 2 लाख रुपया तक री सहायता प्रदान करी जावे सा।
0: हाँ सा और देखो पूर्ण और स्थायी विकलांगता पे भी अणमें रकम दी जावे है। यदि कोई दुर्घटना व्यक्ति ने पूरी तरह या अस्थायी तौर पर या स्थायी तौर अक्षम बनाई देवे जिस तरह की कोई आँखारी रोशनी चली जावे या दो ही हाथ या दो ही पैर कट जावे दो ही आँखा चली जावे ऐसी स्थिति वे तो 2 लाख रुपया बनाने दिया जावे है
1: बिल्कुल
0: सा।
1: आप ठीक कह रहे हैं। आंशिक और स्थायी विकलांगता यानी कि यदि दुर्घटना रे परिणाम स्वरूप कही है कि आंशिक विकलांगता आई जावे, जैसे कि एक हाथ या एक आंखरी रोशनी जानो, एक पैर जानो या अन्य तरह की कई भी दुर्घटना वे तो वणी

0: व्यक्ति ने जो है 1,00,000 रुपया तक रो कवर मल्ले सा।
1: हाँ सर, और देखो अणि योजना में सरकारी तरफ जो भी का नियम है वणी रही सा, वो कौन कौन पात्र वेगा अंडे बारे में भी बताई दा सा, कि भी देखो अणि योजना रो लाभ उठावारे लिए व्यक्ति री आयु जो है वह 18 से 70 वर्ष रे बीच में वेणी चावे, और आवेदन करवा वाला रे कणी भी मान्यता प्राप्त बैंक या डाकघर में एक बचत बैंक खातो वेणो जरूरी है साहब।
0: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अंडे अलावा केवाईसी री बात करा, यानी कि आधार कार्ड ने प्राथमिक केवाईसी रे रूप में मान्यो जावे सा। एकल खाता नियम री बात करा तो यदि कणी व्यक्ति रे एक या विभिन्न बैंका में एक या ज्यादा खाता है तो वो खाली एक ही बैंक में बनी खाता रे माध्यम अणि योजना रो लाभ उठाई सके सा।
1: हाँ सा, देखो अंडे प्रीमियम और भुगतान री प्रक्रिया री बात करा तो यह योजना बहुत ही कम खर्चीली है, ताकि देश रो हर नागरिक जो है अणि अने आसानी वहन कर सके। अंडी प्रीमियम राशि री बात करा तो योजना रो वार्षिक प्रीमियम जो है वो 20 रुपया प्रति वर्ष प्रति सदस्य है।
0: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। ई 20 रुपया जो भी है वे भी ऑटो डेबिट सुविधा अणि पे उपलब्ध है, यानी कि अणि योजना रे तहत प्रीमियम री जो राशि है वनडो भुगतान जो है खाता धारक रे बैंक खाता हूँ हर साल सीधो ऑटो डेबिट यानी कि आपो आप कटी जाएगा। और अंडे बात है ग्राहक ने बार बार बैंक ने नहीं जानो पड़ेगा और खाली बनाने एकदान स्वीकृति देने पड़ेगा और वनडे आधार पर यो प्रीमियम काटियो जाएगा सा।
1: अबे देखो अणि योजना में आवेदन करवारी बात करा तो भाई बहुत ही आसान है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना रे लिए आवेदन करनो बहुत सुविधाजनक है। जना ग्राहक रे पास नेट बैंकिंग री सुविधा है भी अपने बैंक री वेबसाइट या मोबाइल ऐप रे माध्यम घर बैठा ऑनलाइन आवेदन कर सके है, और वणा ने बस इंश्योरेंस टैब में जाइने सोशल सिक्योरिटी स्कीम रे तहत PMSBY ने चुनो वेगा।
0: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। ऑफलाइन भी देखो अणि मैं आवेदन कर सका, ग्राहक अपनी बैंक शाखा में या डाकघर में जाइन अणि योजना रो फॉर्म भरीन ऑनलाइन आवेदन कर सके सा। आवेदन फॉर्म में भरीन बैंक में जमा कराना होगा और प्रीमियम री जा राशि है खाता हूँ काट ली जाएगा सा।
1: हाँ।
0: और नामांकन रो समय री बात करा तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी टाइम पे अणि योजना में शामिल हो सके। यह कवर हर वर्ष जो है 1 जून 31 मई के बीच में मान्य होगा सा।
1: हाँ सा, देखो दुर्घटना री स्थिति में क्लेम री प्रक्रिया जो है वह पारदर्शी और आसान है। बैंक ने पहली अंडे लिए सूचना देनी पड़ेगा। सबो पहलो कदम वणी बैंक शाखा ने सूचित करनो है जणी जगह आपरो खातो है और जंडे लिए पॉलिसी जुड़ी थे की है वणी खाता में आपने सूचना देनी पड़ेगा सर।
0: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। पच्चे आपने बैंक में ऑनलाइन जन सुरक्षा पोर्टल में क्लेम फॉर्म आपने जो है प्राप्त करी वनने भरनो पड़ेगा। आवश्यक दस्तावेज जो भी आपने वंडे लारे चाह रहा है वनडी कॉपी देनी पड़ेगा, FIR की कॉपी देनी पड़ेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी या विकलांगता प्रमाण पत्र देना पड़ेगा और अस्पताल की रिपोर्ट भी आपने देनी पड़ेगा। और पच्चे बैंक द्वारा वनडो सत्यापन करियो जाएगा और क्लेम री राशि जो है आपने खाता में जमा कराई जाएगा सर।
1: हाँ सर, देखो योजना रो मुख्य उद्देश्य देश रा गरीब और ग्रामीण इलाका में रहवा वाला लोगा ने सुरक्षा प्रदान करनो है। जो कणी भी दुर्घटना में अपनी आजीविका खोई देवे तो वणा ने सहायता देनो है। भारत जैसा विकासशील देश में जटे ज्यादातर लोग असंगठित क्षेत्र में काम करे वटे दुर्घटनाओं जो है पूरा परिवार जो है वो गरीबी रेखाओं नीचे आई जावे, अणि वास्ते ऐसा लोगों की मदद करवारे वास्ते यह योजना चलाई जा रही है साहब।
0: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। देखो अपनी सरकार चाहे केंद्र सरकार वो चाहे राज्य सरकार वो अपने लोगों की भलाई रे वास्ते समय समय पर अलग अलग योजना चलावे सा। और सरकार रो उद्देश्य यही है कि देखो लोग जो है वणी योजना रो ज्यादा ज्यादा लाभ उठावे और ज्यादा ज्यादा लाभ उठावे। अंडे अलावा कोई भी व्यक्ति वणारे आसपास में वे जो कि वणी योजना रो लाभ उठाई सके तो वणा लोगों ने भी वणी जानकारी टाइम पे देवे सा। या तो देखो आपी योजना री जानकारी दीदी सा और अबे आपको तो आपने किसान भाई बहना ने पाचा मनोरंजन री दुनिया में ले चला और हुणावा राजस्थानी लोकगीत सा।
1: हाँ सा।

0: नंदू भाई देखो अत्रो बढ़िया सो गीत हुनायो और देखो सा संदेश भी दी दो। और देखो अबे बात करांगा आपी, देखो कणी भी जगह अबार दुर्घटना री बात कर रहे हैं आपी, तो दुर्घटना कहीं कहीं ने नहीं आवे और अबार अत्री गर्मी पड़ रही है कि अणा दना में, तो कट्टे भी देखो तो आपी आग जनी री समस्या ज़्यादा बीच आवे।
1: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो गबरू। घनी टाइम पे देखो जगह जगह पे आप ही देखा कि गाड़िया में है, अंडे अलावा एसी में है, विद्युत चालवा वाला जितना भी यंत्र है वहां में आग लागवारी समस्या बहुत ज्यादा अवेरी है सा।
0: हाँ
1: और अणियों देखो आपने सतर्कता जो है वणियों आप ही वंची सका, और अणी टाइम पे देखो आपने त्वरित कार्रवाई भी करनी पड़े सा।
0: हाँ सा देखो अपने घर में या कार्यस्थल पे जटे भी आपका काम करो वही जगह पे अपने स्मोक अलार्म लगा देना चाहे जनियो कही वे कि भाई आग बुझावा वाला यंत्र भी बनाओ, कहिए कि देखो स्मोक अलार्म देगा तो धुआं आते ही फटाफट अपने अलार्म बज
1: बिल्कुल
0: जाएगा
1: सा,
0: तो सूचना मिल जाएगा। और ज्वलनशील पदार्थ जो है वणा दूर रखना है और आपातकालीन निकास मार्ग जो है वणा ने हमेशा खुला रखना। यूं नहीं कि भाई अगर अगर कोई आपातकालीन स्थिति है वटे दरवाजो है ना वटे बहुत सारा सामान रख दो ना आप निकल भी नहीं सको पछे, तो
1: बिल्कुल
0: पछे बहुत
1: सा,
0: ज़्यादा समस्या भी जावे साहब।
1: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो ना। अब देखो अलग अलग जगह जैसे कि आप ही सबों पहले रसोई घर की बात करा, तो देखो रसोई घर में भी अणी तरह की आग लगवारी घटना बहुत सारी वे सके सा। और वणी में देखो बहुत सारी ज्वलनशील वस्तुओं वे जैसे कि कपड़ो है, कागज है, प्लास्टिक है, तेल री बोतला है, तो अंडे वगैरह जो है वणी वो जो आग लगी सके। आपने गैस सिलेंडर भी नियमित रूपों रसोई घर में आपने जांच करानी है। गैस पाइपलाइन ने हर 2-3 साल में आपने बदलते रहना है, चेक करते रहना है कि गैस लीक तो नहीं भी रही है सा। अंडे अलावा देखो कपड़ा आप ही पहरा तो वंडो भी ध्यान रखना है कि आप ही सिंथेटिक या ढीला कपड़ा तो नहीं पहन रहे क्या है जी कि आग जल्दी पकड़ ले।
0: हाँ
1: अंडे अलावा
0: सा
1: देखो आप ही रसोई में आग बुझावा और वाते हमेशा एक फायर ब्लैंकेट जरूर रखना चावा सा।
0: हाँ सा देखो भाई विद्युत संबंधी सुरक्षा रो भी अपने ध्यान रखना है क्योंकि देखो घरे मायने भी और खेते खेत पे भी कतरी बार असो भी विद्युत चालित यंत्र वे भी है तो वणा में कई एक शॉर्ट सर्किट भी जावे वणी
1: बिल्कुल
0: वजह
1: सा,
0: आग लग जावे, तो वणा पे यो ध्यान रखना है कि भाई एक ही सॉकेट में बहुत सारा प्लग या हाई वोल्टेज रा उपकरण एक साथ नहीं लगाना है सा।
1: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। और अच्छा उपकरण और हमेशा प्रयोग करना है ISI मार्क वाला जी भी उपकरण है
0: हाँ
1: वनारो इस आपने उपयोग करना है। अंडे अलावा बिजली रा उपकरण जैसे कि हीटर, प्रेस, ओवन अंडो इस्तेमाल जनी टाइम में आप ही नहीं कर रहा वनी टाइम में वना स्विच जो है अपने बंद कर देना है, वरना भी ज़्यादा गर्म व्यवहारी वजह पचे वना में ब्लास्ट वही जाएगा
0: हाँ
1: सा।
0: सर देखो कतरी बार असो भी वे कि आप ही केवल स्विच बंद कर देवा और प्लग ने निकाला नहीं
1: बिल्कुल
0: तो भी
1: सा,
0: दुर्घटना की संभावना रे वे, तो वणा ने निकाल देवा। और एक बात और ध्यान रखना कि भाई ये जी यंत्र वे वणा रे कटे भी तार जो है वणा में कटे कटिया फटिया थे का नहीं वे,
1: बिल्कुल
0: तो
1: सा,
0: अन्य अपने जांच करते रहना चाहे सर।
1: बिल्कुल आपने ना अंडे अलावा बच्चा ने भी आग वो सुरक्षित रागना, माचिस लाइटर बनाऊ दूर रागनी, बच्चा री पहुंच में भी सब नहीं बहना चाहे, मोमबत्ती केरोसिन जैसी चीजें जो है वह बच्चा री पहुंच में नहीं बहनी चाहे
0: हाँ जी
1: सा।
0: बात है सा देखो बच्चा ने सीखा वहाँ कि आग कोई खिलौनो नहीं है और अगर लाग जावे आग तो वणी बचवारे लिए पूरी कोशिश आपने और करनी है और कणी तरीकों करनी है वो सब तरीका अपने बच्चा ने समझाई देना चाहिए
1: बिल्कुल
0: सा।
1: सान, आप भी तो किसान भाई बहन हाँ, तो देखो आपने खेता में भी आग लगवारी यानी कि आग जनेरी घटनाएं बहुत सारी भई सके सा।
0: हाँ
1: तो
0: सा
1: वनी टाइम में भी आपने ध्यान रखना है कि देखो खेता में लाग्या थका बिजली रा ट्रांसफार्मर है, खंबा है, वणी अगर चिंगारी निकलवारो हमेशा खतरो रहे तो अणियों वंचाव रहे वात, देखो ट्रांसफार्मर चारी ओर आपने 10 फीट रे दायरा में अपनी फसल कटाई करीन बटे नहीं रखनी वरना देखो फसल में आग लागी जाएगा
0: हाँ
1: सा।
0: सा देखो और अंडे अलावा खेत में जो है धूम्रपान जो है वो बिल्कुल आपने नहीं करना चाहे अणी वात्रो पूरा ध्यान रखे कणी भी खेत खलियान में देखो खाणो भी नहीं पकाणो चाहे
1: बिल्कुल
0: बटे
1: सा,
0: और अणी वात्रो ध्यान रखना क्योंकि कनाण हवारो जो को आई जाए कनाण चिंगारी उड़ जा कहीं पतो नहीं चले।
1: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अंडे अलावा अग्निरोधी मेड़ भी बनानी यानी कि पक्की थकी जब फसल है खेत रे चारों ओर कम कम 5-6 फीट री चौड़ी जगह पर अपनी फसल कटाई कर लेनी और जुताई कराया के बाद खाली मेड़ बनाई लेनी या आग रेखा ने एक जगह दूसरी जगह फैलवाऊ रोकेगा सा।
0: हाँ सा देखो मशीनों अगर कोई आग लग रही है तो बटे आपने यो ध्यान रखना है कि फसल री कटाई और मड़ाई रे टाइम पे कंबाइन या थ्रेशर जैसी मशीना है वनारो इस्तेमाल करती टाइम पे ज़्यादा सतर्क रहना है। ट्रैक्टर रो साइलेंसर हमेशा ऊपर ही तरफ रहना चाहे और मशीना ने ओवरलोड करनी करना चाहे ताकि कहीं एक घर्षण या गर्म बी ने वणाऊ चिंगारी नहीं निकले।
1: बिल्कुल उपासना भाई साहब, अपने किसान भाई बहनों ने अभी कहना चाहवांगा कि देखो अपने आपातकालीन तैयारी भी रखनी है यानी कि आगरी आपातकालीन स्थिति में निपटवारे वास्ते खेत या खलियान में कम कम 200 लीटर पानी रो ड्रम या पानी भरियो थको स्पेयर पंप जो है हमेशा वहनो चावे।
0: हाँ सा
1: खेत में ट्रैक्टर पर डिस्क हैरो या कल्टीवेटर अपने तैयार रखना, यदि आग लागी भी जावे

0: तो खेत में तुरंत आपने जुताई कर देनी और आगरे रास्ता ने रोकी लेनो सा।
1: हाँ सा, और देखो गेहूं या धान री कटाई रे बाद बची थे कि पराली या डंठल जो है बनाने आग बटे खेता में नहीं जलानो। और यो कही है कि अक्सर नियंत्रित अनियंत्रित भी जावे और आसपास रा खेता में खलियाना में पेड़ पौधा तक अंडी आग जो है वह फैलती जावे।
0: बिल्कुल, आपने किसान भाई बहना ने आप ही कहना चाहूंगा कि कटी फटी सकल जो जो फसल है वंडा गट्ठर जो है एक ही जगह पर आपने बहुत बड़ा ढेर बने नहीं रखना। यदि कहीं एक हिस्सा में आग लगी भी जा तो कही है कि अगर टुकड़ा टुकड़ा में आप ही वंडो प्रबंधन कर रहे हो तो भी बाकी री जो फसल है वह सुरक्षित रहेगा और छोटा छोटा ढेर जो है आपने अलग अलग स्थान पर जरूर बनावना।
1: हाँ सा, देखो भूसो चारों ओर कंडा रखवारी जगह जो है भने भी ध्यान रखो कि वंडे पास में कोई गरम राख नहीं जावे या पछे आग जलावा वाला उपकरण वंडे पास में नहीं रहे, अंडो ध्यान रखनो चाहे सा।
0: बिल्कुल उपासना भाई साहब, या तो आपकी जानकारी आपने किसान भाई बहना ने दी दी कि देखो अणी गर्मी रह दौर में देखो कणी कड़ी तेरे हूँ आग जनी वे सके और अणी आपकी कतर बंची सका। और अब आपको तो एक राजस्थानी लोकगीत अणी कार्यक्रम में आपने किसान भाई बहना ने और हुणावा सा।
1: हाँ सा।

0: तो उपासना भाई से यूं आप ही राजस्थानी लोकगीत।
1: हाँ सर।
0: और देखो कार्यक्रम में आप ही आगे बढ़ाना, देखो अबे कार्यक्रम में आप ही स्वास्थ्य संबंधी बात करा
1: हाँ
0: तो
1: सर।
0: देखो गर्मी रो दौर बहुत तेज चल रो है और अन्य टाइम पे अपने किसान भाई बहना ने आगे खरीफ री बुआई भी करनी है और वनडे संबंध में खेता में काम भी चल रहा है। तो आपने अपने किसान भाई बहना ने यही कहना है कि देखो खरीफ री बुआई हूँ पहले आप ही खेता में काम तो कर रहा हाँ, लेकिन देखो अपने स्वास्थ्य रो भी अपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और गर्मी री जा या लहर चल रही है अणि में अपने स्वास्थ्य संबंधी भी अपनी कई सुझाव अपने किसान भाई बहन ने दासा।
1: बिल्कुल देवा सा, और खास तौर देखो अणा दना में जो है पानी री कमी ज्यादा हुई जावे शरीर
0: बिल्कुल
1: में,
0: सा
1: ने तो अणी वास्ते कई तरीकाओं आप ही शरीर में पानी री कमी पूरी कर सका। हाँ यो बतावा सा कि भाई देखो आप ही जरूरी नहीं है कि हर वक्त सिर्फ पानी पीने ही जो कमी पूरी करवा री
0: सही है
1: कोशिश करा,
0: साहब,
1: बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जड़ों भी पानी री कमी पूरी वे सके है साहब।
0: बिल्कुल आप ठीक किरियान। एनी टाइम पे अगर आप ही दैनिक हाइड्रोजन समय सारणी बनाई दा तो यो बढ़िया रहेगा। और अणि में देखो सुबह 5 और 6 के बीच में आप ही बात करा तो देखो नींबू पानी और एक चुटकी नमक जो है वो ले ला और अंडी 1 या 2 मात्रा जो है गिलास री आप ही दिन की शुरुआत में लांगा तो देखो अणियों कही है कि आप ही इलेक्ट्रोलाइट अपने मिलेगा और अणियों अपना जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा
1: हाँ
0: साहब।
1: जी बात है साहब। भाई देखो और यूं भी कर सका कि सुबह 8 बजे तक, 8 बजे टाइम पे आप ही कोई छाछ मट्ठो ले सका। हाँ एक गिलास मट्ठो आप ही ले ला तो दिन भर जो है वणियों शरीर में ठंडक रहेगा और पाचन में भी सुधार रहेगा साहब।
0: बिल्कुल आप ठीक किरिया बच्चे, देखो 11 आप ही देखा कि 3-4 बजे आसपास तक तो ज़्यादा इस गर्मी रहे और अन्य टाइम पे देखो आप ही पानी और पानी रेला रहे देखो खीरा रो सेवन आगे कर सका 1-2 गिलास पानी ले लान प्लस एक खीरो अगर आप ही ले ला तो देखो अपने शरीर में जब पानी की कमी है वंडी वजह रुकेगा सा।
1: हाँ सा देखो दन मेरा टाइम पे 1 बजे टाइम पे आप ही सत्थू रो घोल बनाई ने ले सका, जो 1 गिलास काफ़ी है वणियों कही ऊर्जा भी रहेगा शरीर में और ठंडक भी वणी थे की रहेगा सा और शरीर में ताकत रहेगा बहुत ज़्यादा।
0: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अंडे अलावा देखो नारियल पानी है नींबू पानी रो अगर 1 गिलास दिन में आप ही ले लांगा तो अणियों इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनो रहेगा
1: हाँ
0: और
1: सा
0: अपने शरीर में पानी की कमी जो है वह दूर रहेगा। शाम रे 6 बजे तक आप ही तरबूज रो पानी है या फल तरबूज पूरो जो है वो इस ले सका
1: हाँ
0: और अणियों कही के शरीर में रिकवरी जो है अपने जब भी पानी संबंधी पूरा दिन आप ही काम की दो है ना पसीना ऊन बहो है वो सारी रिकवरी वही जाएगा सा।
1: हाँ अच्छी बात है साहब। भाई देखो यो ध्यान रखना है कि जना ने शुगर ही बीमारी वे तो भी भाई फल रो जूस नहीं लेवे ना, फल लेवे केवल,
0: बिल्कुल सर
1: क्योंकि जो जूस हो तो देखो शुगर बढ़ जाएगा, तो अंडो ध्यान रखना है। और शाम रात्रि टाइम पे भी देखो हल्की छाछ या पचे सादो पानी जो है वो 1 गिलास आप ही लेने पचे अपनी रात जो है वह आराम निकल सकेगा।
0: बिल्कुल उपासना भाई साहब अपने

0: हम भाई बहनों ने अपने कहना है कि देखो दिन में कम उगम 4 या 5 लीटर पानी एनी टाइम पे अपने शरीर में जाएगा तो इस अपना स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहेगा।
1: हाँ
0: और अंडे
1: सर,
0: अलावा देखो कुछ एनी टाइम पे कम लागत वाला जितना भी हाइड्रेटिंग खाद्य पदार्थ एनी टाइम में मले, कि जैसे आप खीरा री बात की थी तो देखो अणी में 95% 95% जो है पानी वेवे, और
1: हाँ
0: यो अंडो अगर आप सेवन करा तो अपने शरीर ने ठंडक दे। अंडे
1: हाँ
0: अलावा तरबूज री बात करा तो अणी में देखो पानी भी वेवे और प्राकृतिक शर्करा भी वेवे जो कि अपने शरीर ने तुरंत ऊर्जा देवे सा।
1: हाँ सर, देखो इस तरीके लौकी जो है वह शरीर ने ठंडो रखे और अपनी किडनी के लिए भी बहुत लाभदायक है। मूली जो है वह पानी की मात्रा ज़्यादा वेवने महीने तो और पाचन में भी सहायक वेवे। इस तरीके टमाटर जो कि इलेक्ट्रोलाइट विटामिन वेवे अन्य महीने और शरीर ने ठंडक रखवारे वास्ते खरबूजा रो इस्तेमाल भी आप ही कर सका। हाँ सर,
0: बिल्कुल आप ठीक ही रहे हो। अंडे अलावा खेत में काम करता समय आपने सुबह जल्दी जानो है और शाम रे काम आप ही कर सका। अंडे अलावा सिर जो है आप ही ढकिन राखी सका, पगड़ी है, गमछो है, टोपी रो प्रयोग कर सका।
1: हाँ
0: मिट्टी रे घड़ा रो पानी आपने पीणो है, अणी शरीर जो है अपने ठंडो रहेगा
1: हाँ भाई,
0: सा।
1: यो ध्यान रखनो है कि आप ही हो चाहे कि फ्रीज रो पानी ठंडो ज्यादा वे तो वणी ठंडक ज्यादा वेगा, या तो गलत दा उदाहरण है भाई
0: बिल्कुल सा।
1: कि भाई क्या गलत सोच वणी थे कि ये लोगारी कि देखो मटकीरा पानी जो है वणी वही अपने शरीर में ठंडक करे है और बल्कि फ्रीज रो पानी तो और नुकसान कर जाएगा।
0: बिल्कुल सान, पानी प्लस नमक प्लस नींबू प्लस छाछ यो हीट वेव यानी कि जो लू चल रही है अणियों सुरक्षा रो सूत्र है सा। हर 1 घंटा में आपने पानी पीणो है सा, छाछ और नींबू रो पानी अपनानो है और अणियों आपकी दोपहर ही गर्मी रो वंची सका सा।
1: हाँ भाई देखो नंदू भाई, एक बात और बताई दा सा कि भाई देखो अगर हीट वेव भी की है यानी लू लाग गई है तो वंडो का निशान अपने भी हेदान कहीं दिखेगा कि ज़्यादा पसीनो आएगा और चक्कर आएगा, सिर दर्द वेगा, पसीना पसीनो बंद भी जाएगा तो अपनी चमड़ी जो है वह गर्म भी जाएगा और मांसपेशा में ऐठन आवा लाग जाएगा। तो
0: बिल्कुल सर,
1: असी टाइम पे आपने ध्यान रखना है कि भाई आपने जो यही चीज़ा बताई है खावा पीवारी बनाने लेनो है और पचे अपने शरीर ने सही रखवारी कोशिश करनी
0: बिल्कुल
1: है
0: आप ठीक
1: सर।
0: रहे हो। नमक रो पानी पीणो है, छाव में आराम करनो है, हीट स्ट्रोक रो खतरो वे तो तुरंत आपने देखो चिकित्सक के परामर्श जरूर लेनो है सा।
1: हाँ सा भाई देखो अणा वाता रो ध्यान रखेगा किसान भाई तो भी खेती बाड़ी रो काम भी चालतो रहेगा ना, वणा रो शरीर भी हाउ चालतो रहेगा सा।
0: बिल्कुल सा, या तो देखो आपकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी थी सा, अबे आपको तो अन्य कार्यक्रम में एक राजस्थानी लोकगीत और हुणा मासा।
1: हाँ सा।

हमारे ग्रामीण श्रोता भाई बहन अभी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती और घर। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए कुछ देर आपको सुनवाते हैं मधुर फिल्मी गीत।

हम चुप हैं कि दिल सुन रहे हैं। हमने कहा ना कि अभी जो गीत आप सुनेंगे रात्रि 8:45 तक, उन गीतों में चुप भी रहा गया है और कहा भी गया है, और ऐसा भी कहा गया है कि बिना कहे भी बात पहुंचा दी गई है। ये गाना फिल्म फासले से हमने लिया, शिवहरी का संगीत, इसे लिखा साहिर लुधियानवी ने, और आवाज़ें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

दोनों ही एक दूसरे से ना कुछ कह पाए, फिर भी आंखें तो बोलती है ना, आंखें बोलती है और सामने वाला समझता भी सब कुछ है। यहाँ आवाज़ें थी के एस चित्रा की और हरिहरन की। जिद्दी ये था फिल्म का नाम। समीर सेन, दिलीप सेन का संगीत और समीर का लिखा हुआ ये गाना।

समय का ये पल थम सा गया है और इस पल में एक हम हैं और एक आप। हम आकाशवाणी उदयपुर से आपको सुनवा रहे हैं ये मधुर फिल्मी गीत। कुमार सानू की आवाज़ थी, आर डी बर्मन का संगीत और जावेद अख्तर के बोल। 1942 अ लव स्टोरी, इस फिल्म से हमने ये गाना लिया था। बात कहने और चुप रहने की हो रही है। आंखों को आंखों की भाषा आती है, आंखें जन्म से ही पढ़ी लिखी पैदा होती हैं।

खामोशी को खामोशी से बात करने दो, चुप तुम रहो और चुप हम रहें। ये आवाज़ें कितनी एक दूसरे के लिए बनी हो ऐसी लगती है ना। इसी को कहते हैं संगीतकार की कलाकारी। M.M. किरवानी का संगीत भी था और उनकी आवाज़ भी थी चित्रा के साथ। निदा फाजली ने इसे लिखा और फिल्म थी इस रात की सुबह नहीं। आइए अब आपको सुनवाएं चित्रा की आवाज़, जहाँ पर कहा भी जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि क्यों कहना है।

ये अनूठा सा संगीत था एआर रहमान का, आवाज चित्रा की। इसे लिखा महबूब आलम कोतवाल ने और फिल्म थी बॉम्बे। हम बात कर रहे हैं कहने और सुनने की और बिना कहे भी सुन लेने की।

आंखों के बोलने की बात हमेशा तब आती है जब जुबान चुप हो जाती है। मर्डर, ये था फिल्म का नाम। अमीर जमाल की आवाज, अनु मलिक का संगीत और सईद कादरी का ये लिखा हुआ गीत। और अब चुपके से रात की चादर तले कोई कुछ कह रहा है।

रोज सफ़र करना, रात से दिन करना, बेकरारी और किसी का इंतज़ार, ऐसा ही होता है। साथिया, ये था फिल्म का नाम। साधना सरगम, मुर्तजा और कादिर खान की आवाज़ें थी, एआर रहमान का संगीत और गुलजार के बोल। और प्रोग्राम का आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं मिशन कश्मीर फिल्म से, और यहाँ पर आवाज़ें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि रात्रि 9:30 से लेकर रात्रि 10 बजे तक और उसके बाद रात्रि 10 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक भी आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का इसी आकाशवाणी उदयपुर चैनल पर।

0: फिल्म मिशन कश्मीर के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में समाचारों के लिए जुड़ेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। पहले हिंदी में समाचार संध्या और रात्रि 9:00 सुनिएगा अंग्रेजी में न्यूज एट 9।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने

0: कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आंग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रूकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले

0: पांच सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
1: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के साथ जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
2: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
0: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 रूपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी

किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले दो से तीन दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा, ओडिशा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान

0: और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade, attends 3rd India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecasts heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: Prime Minister Narendra Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise.

0: ये जो ज़िंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। ये गज़ल राजेश रेड्डी की लिखी हुई, आवाज़ थी जगजीत सिंह की। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद दो और गज़लें हम आपको सुनवाएंगे।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1 लाख दो, बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

गुलजार की लिखी गज़ल, आवाज़ जगजीत सिंह की, और आखिर में कैफ भोपाली के बोल हैं, आवाज़ एक बार फिर से जगजीत सिंह की।

तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है। अभी आप सुन रहे थे चंद गजलें जगजीत सिंह की गाई हुई। कार्यक्रम सुगम संगीत का था। मीडियम वेव 266.66 मीटर पर हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं और रात्रि के 9:30 हुए हैं। ये समय है कार्यक्रम नई फिल्मों से का, और आज हमने चुनी है हाल ही में पिछले एक या दो साल में रिलीज़ हुई कुछ फिल्में जिनके गीत हम आपको सुनवाएंगे।

ये फिल्म थी दो दीवाने शहर में। नई फिल्मों से ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आइए आपको सुनवाएं एक और गीत।

तू या मैं, ये था फिल्म का नाम। आदर्श, गौरव और लौतिका की आवाजें थी। नई फिल्मों से इस प्रोग्राम में अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो इस साल का सबसे सुंदर गीत है और सबसे दर्द भरा भी। फिल्म आई थी बॉर्डर 2, उसी का ये गीत सोनू निगम और अरिजीत सिंह की आवाज़ें।

नए ज़माने की फिल्मों में जहाँ रोमांटिक किस्से हैं, कोई थ्रिलर मूवीज़ भी बन रही है और कपोल कल्पित कहानियों पर भी फिल्में बन रही हैं, वहीं पर हमारे भारत के वीर सैनिकों की गाथाओं पर भी फिल्में बन रही हैं। ये बॉर्डर 2 थी जो बॉर्डर 1 का रीमेक थी, जो लोंगेवाला की लड़ाई पर आधारित थी इसकी कहानी। इसके बाद सन 2025 में एक फिल्म आई थी 120 बहादुर, इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवाते हैं। ये भी एक वीर सैनिक की शौर्य गाथा थी।

श्रेया घोषाल की ये आवाज़ थी, फिल्म थी स्काई फोर्स। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, कुछ मधुर सुरीले नगमे हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 10 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक भी। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। अरिजीत सिंह और अफसाना खान की आवाज़ें, फिल्म का नाम है स्काई फोर्स।

और आइए अब आपको सुनवाएं इस प्रोग्राम का आखिरी गीत। फिल्म का नाम है परम सुंदरी, आवाज विशाल मिश्रा की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नई फिल्मों से। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में हम आपको सुनवाएंगे कुछ और फिल्मी गीत एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: Akashwani at 90.
1: आइए आज के दिन भर का सबसे आखिरी प्रोग्राम आकाशवाणी उदयपुर से हम आपके रेडियो सेट तक पहुंचाते हैं। ये प्रोग्राम है फिल्मी गीतों का और हमने चुने हैं कुछ रात से जुड़े हुए गीत, यानी अरमान भी है, सपने भी हैं, दिन भर की थकन भी है, लेकिन फिर भी रात आने की बेकरारी से छूटती हुई एक उम्मीद भी है कि बस अब ये दिन ढल चुका है, अब नींद का आगोश आना बाकी है, तो बस थोड़ी देर मन को और बहला लिया जाए, दिन भर की इस तपिश के बाद थोड़ा सा सुकून और पा लिया जाए।

कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। ये खूबसूरत से अल्फाज लिखे समीर ने, नदीम श्रवण ने इस गाने की तर्ज बनाई, कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ें थी। फिल्म थी सैनिक। रात के इस लम्हे में सुकून भरे गाने दिल को और राहत पहुंचाते हैं, और उस पर जब ये मौसम इतना सितम ढा रहा हो कि गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही और धीरे धीरे अब ये गर्मी उमस में बदलती जा रही है, ऐसे में संगीत में वो जादू होता है कि वो आपको थपकियां देकर सुला सकता है।

फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। आइए अब आपको सुनवाते हैं यह अगला गीत फिल्म मिस्टर आशिक से, जिसे गाया है कुमार सानू ने।

आसमान में चांद अगर अपनी पसंद का हो तो रात छोटी ही लगती है और नींद आंखों से कोसों दूर चली जाती है, पर हम कोशिश कर रहे हैं आपके दिलों को सुकून पहुंचाने की इस तपती चुपती जलती गर्मी से। ये गाना था फिल्म मिस्टर आशिक का, कुमार सानू की आवाज़, जतिन ललित का संगीत और इंदीवर का लिखा हुआ ये नगमा।

सीने में दिल और दिल में धड़कन और धड़कन की रिदम किसी के नाम से जब जुड़ जाती है तो प्रेम उपजता है। ये गाना लिखा था मदन पाल ने और इसे संगीतबद्ध किया जतिन ललित ने। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ें थी और फिल्म थी राजू बन गया जेंटलमैन। फिल्मी गीत आपके रेडियो सेट तक पहुंच रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से।

गुलजार की कलम जब चलती है तो आसमां के सिरे ज़मीन से खुल ही जाते हैं और आसमां आसमान में ही छलांगे मारने लगता है। ये गाना फिल्म बंटी और बबली का था, सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ें, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

अलका याग्निक और उदित नारायण की ये आवाजें थी। जतिन ललित का संगीत और आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था। फिल्म थी वही जो गीत के बोल थे, दिल क्या करे। रात के इस पहर में हम आपको इन मुश्किल सवालों में नहीं उलझाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको सुकून पहुंचाना है।

सोचा ना था। ये था फिल्म का नाम। आवाज़ें संदेश शांडिल्य की और साधना सरगम की। संगीत संदेश शांडिल्य का ही था और इसे लिखा इरशाद कामिल ने। रात का ये पहर अब ये कह रहा है कि चंद गीतों का समय और बाकी है। रात के 10:43 हो चुके हैं।

एक समय था जब फिल्में शुरू होती थी तो एक खूबसूरत सा गाना उस क्रेडिट्स के साथ चलता था, जब नाम आते हैं एक्ट्रेस एक्टर्स के और बाकी कलाकारों के और डायरेक्टर्स के, उसमें से ये एक खूबसूरत सा गाना था यस बॉस फिल्म से, जतिन ललित का संगीत, जावेद अख्तर के बोल और आवाज़ें अलका और कुमार सानू की। और ऐसा ही एक और गाना जो क्रेडिट्स के साथ चलता है, फिल्म है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।

ये आवाज़ें थी अभिजीत और अलका याग्निक की, फिल्म थी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जावेद अख्तर के बोल थे और जतिन ललित का संगीत। और अब रात जैसे धीरे धीरे और गहरी होती जाएगी, वैसे वैसे कल की कश्मकश में आप अपनी आज के सुकून को मत गंवाइएगा। हम आपको छोड़े जा रहे हैं आखिरी गीत के साथ प्रोग्राम के। ये गीत हमने लिया है फिल्म पहेली से। इसे लिखा गुलजार ने है, एमएम करीम का संगीत, और गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने।

एली के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। समाचार पहले हिंदी में और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलू पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति

0: A red alert for warm night conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha till Thursday. The weather agency has forecast heat wave to severe heat wave conditions over Delhi, Punjab, Haryana and Chandigarh for tomorrow. And with that, we end this news bulletin.
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारे आज के प्रसारण यही संपन्न होते हैं। कल सुबह 5:53 पर प्रातःकालीन प्रसारणों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।